सुप्रभात। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन बुधवार है। शक संवत 1948 के भाद्र मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 सितंबर 2026। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: जीवन सौरभ।
1: एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक लड़का रहा करता था। वो बहुत जिज्ञासु और मेहनती था, लेकिन अक्सर छोटी छोटी गलतियां कर बैठता था। गांव के लोग कहते, माधव बहुत अच्छा है लेकिन उसमें धैर्य नहीं है। उसे हर काम जल्दी करना पसंद था। अगर कभी रास्ते में कोई रुकावट आ जाती तो वो गुस्सा करने लगता और हार मान लेता। एक दिन माधव अपने स्कूल की ओर जा रहा था। रास्ते में गांव के बाहर एक छोटा पहाड़ी रास्ता पड़ता था। बरसात के बाद वहां की मिट्टी फिसलन भरी हो गई थी। चलते चलते अचानक उसके पैर के नीचे एक पत्थर आया और वो ठोकर खाकर गिर गया। उसके घुटने छिल गए, कपड़े गंदे हो गए और उसके चेहरे पर गुस्सा चढ़ गया। वो उठा और पत्थर को देखते हुए चीखा, तू मेरे रास्ते में क्यों आया? तेरे कारण मैं गिर गया। पास ही खेत में काम कर रहे एक बूढ़े किसान ने ये सब देखा। वो मुस्कुराते हुए बोला, बेटा पत्थर को दोष देने से कुछ नहीं होगा। ठोकर खाकर गिरना बुरा नहीं, हर ठोकर कुछ सिखाती है। अगर समझो तो यही पत्थर तुम्हें आगे बढ़ना सिखा सकता है। माधव ने हैरानी से पूछा, कैसे? ये तो बस एक बेकार सा पत्थर है जिसने मुझे गिरा दिया। किसान ने कहा, बेटा इस पत्थर को देखो, ये रास्ते में इसलिए है क्योंकि किसी ने इसे हटाया नहीं। अगर तुम चाहो तो इसे हटाकर दूसरों के लिए रास्ता आसान बना सकते हो, और अगर थोड़ा सोचो तो इसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके तुम उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो जहां पहले नहीं जा पाते थे। माधव को किसान की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने पत्थर को किनारे रख दिया और स्कूल चला गया। उस दिन स्कूल में सर ने एक प्रोजेक्ट दिया, जीवन में आने वाली रुकावटें और उनसे मिलने वाली सीख। माधव ने मन में सोचा, आज तो मैंने खुद एक रुकावट झेली है। घर लौटते समय उसने फिर उसी पत्थर को देखा। इस बार उसने उसे लात नहीं मारी। वो सोचने लगा, क्या सच में ये पत्थर मेरे काम आ सकता है? अगले दिन जब माधव अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उसने देखा कि उनके स्कूल के पीछे दीवार थोड़ी ऊंची थी। सब बच्चे उस पर चढ़ना चाहते थे लेकिन फिसल जाते थे। माधव को अचानक वही पत्थर याद आया। वो दौड़ कर गया और पत्थर को लाकर दीवार के पास रख दिया। अब वो पत्थर सीढ़ी की तरह काम करने लगा। बच्चे उस पर पैर रखकर दीवार पर आसानी से चढ़ गए। सब बच्चे बोले, वाह माधव, तू तो बहुत समझदार है। माधव मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि जिस पत्थर को उसने कल अपने दर्द की वजह माना था, आज वही पत्थर उसकी मदद कर रहा है। शाम को माधव फिर उस बूढ़े किसान के पास गया और बोला, आप सही कहते थे बाबा, पत्थर ने मुझे गिराया नहीं बल्कि उसने मुझे सिखाया कि कैसे गिरने के बाद उठना चाहिए। अगर मैं उसी पत्थर को सीढ़ी ना बनाता तो शायद आज अपने दोस्तों की मदद भी ना कर पाता। किसान ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा जीवन में ऐसे बहुत पत्थर मिलेंगे। कभी लोग ताना मारेंगे, कभी हालात ठोकर देंगे, कभी असफलता रास्ता रोकेगी, लेकिन जो हर ठोकर को सीढ़ी बनाना जानता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। दुनिया में कोई भी सफलता बिना ठोकर के नहीं मिलती। फर्क बस इतना होता है कि कोई ठोकर खाकर बैठ जाता है और कोई ठोकर को सीढ़ी बना लेता है। माधव ने उस दिन के बाद अपनी हर गलती से सीखना शुरू कर दिया। जब भी कोई काम गलत होता वो सोचता, इसमें मुझे क्या सीख मिल सकती है। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। पहले जो लड़का जल्दी हार मान लेता था वही अब हर मुश्किल में रास्ता ढूंढने लगा। एक बार स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता हुई। माधव ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया लेकिन आखिरी वक्त में उसकी मशीन काम करना बंद कर गई। बाकी बच्चे हंसने लगे पर माधव ने हार नहीं मानी। उसने ठोकर वाली सीख याद की और मशीन के हर हिस्से को ध्यान से देखा। थोड़ी मेहनत के बाद उसने उसे ठीक कर लिया। जब उसका मॉडल चला तो सबने तालियां बजाई। टीचर ने कहा, माधव तुम्हारा प्रोजेक्ट भले ही छोटा हो लेकिन तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। तुमने गिरकर हार नहीं मानी बल्कि गिरावट को सीख बना लिया, यही असली सफलता है। घर लौटते समय माधव ने रास्ते में वही पुराना पत्थर देखा, अब वही मिट्टी में आधा दब गया था, लेकिन माधव ने उसे वही रहने दिया। वो बोला, तू अब मेरे लिए एक याद है, उस दिन की जब मैंने गिरना सीखा और फिर उठना भी। उस दिन से माधव की जिंदगी का मंत्र बन गया, हर ठोकर मुझे और ऊंचा उठाती है। वक्त बीता, माधव बड़ा हुआ और उसने अपनी मेहनत से शहर में नौकरी पा ली। जब भी उसे किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता वो मुस्कुरा कर कहता, पत्थर चाहे रास्ते में हो या जीवन में, अगर चाहो तो उसे सीढ़ी बना सकते हो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में ठोकरें बुरी नहीं होती, हर ठोकर हमें मजबूत बनाती है अगर हम गिरने के कारण को समझकर उससे सीख लें, तो वही ठोकर हमें सफलता की ओर ले जाती है। असफलता, आलोचना, दर्द, ये सब जीवन के पत्थर हैं। इन्हें सीढ़ी बना लो, रास्ता खुद आसान हो जाएगा। गिरकर उठना ही जीत है।
0: जीवन सौरभ।
2: अभी आपने सुना जीवन सौरभ। आइए अब आपको बताते हैं आज प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम।

अब से ठीक बात सुनेगा कार्यक्रम अक्षय निधि मंडल 2 सूक्त 14 और उसके बाद सुने भक्ति संगीत। रोजाना की तरह सुबह 8 बजे सुनी का कार्यक्रम वतन का राग कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर है सुनीता सिंह का। इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:30 पर रानी दुर्गावती के युद्ध का इतिहास। डॉक्टर पूजा सक्सेना से संदीप शर्मा की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे। टेक गुरु कार्यक्रम सुनिए सुबह 9 बजे। इसमें आज का विषय साइबर क्राइम। सुबह 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम भारत विभूति की शंकर पिल्लई पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। दीपक नीमा और रानी राखबार के स्वर होंगे कार्यक्रम में।

सुबह 10 बजे का समय होगा परिक्रमा का। काव्य गुंजन सुनिए सुबह 10:30 पर। कार्यक्रम में कलाकारों के स्वर होंगे भगवती सक्सेना, संदीप शर्मा और दीपक नेमा के। हमारे वैज्ञानिक कार्यक्रम सुनिए सुबह 11 बजे। पर सुनिए युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक बने रहिए मेरे यानी रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का। और आइए अब सुनते हैं अक्षय निधि एक अंतराल के बाद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 14वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद और भार्गव शौनक। देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
2: अध्वर्यवो भरतेन्द्राय सोम मामत्रेभिः सिंचता मद्यमन्धः कामीः वीरः सदमस्य पीतिं जुहोत वृष्णे तदिदेशवष्टि। हे अध्वर्युगणों, सदैव सोमपान की कामना वाले वीर इंद्रदेव को भरपूर मात्रा में सोमरस तथा पात्रों में हर्षदायक अन्न प्रदान करें। इंद्रदेव की कामना के अनुसार सुख वर्षक सोम की आहुतियां उन्हें प्रदान करें। अध्वर्यवो यो अपो वविव्रांसं वृत्रं जघानाशन्येव वृक्षं तस्मायेतं भरत तद्वशायं एष इन्द्रो अर्हति पीतिमस्य। हे अध्वर्युगणो, जिस तरह बिजली वृक्ष को धराशायी कर देती है, उसी
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम
2: वीर इंद्रदेव को भरपूर मात्रा में सोमरस तथा पात्रों में हर्षदायक अन्न प्रदान कर।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 14वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद और भार्गव शौनक। देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
1: अध्वर्यवो भरतेन्द्राय सोम मामत्रेभिः सिंचता मद्यमन्धः कामीः वीरः सदमस्य पीतिं जुहोत वृष्णे तदिदेशवष्टि। हे अध्वर्युगणो, सदैव सोमपान की कामना वाले वीर इंद्रदेव को भरपूर मात्रा में सोमरस तथा पात्रों में हर्षदायक अन्न प्रदान करें। इंद्रदेव की कामना के अनुसार सुख वर्षक सोम की आहुतियां उन्हें प्रदान करें। अध्वर्यवो यो अपो वविव्रांसं वृत्रं जघानाशन्येव वृक्षं तस्मायेतं भरत तद्वशायं एष इन्द्रो अर्हति पीतिमस्य। हे अध्वर्युगणो, जिस तरह बिजली वृक्ष को धराशायी कर देती है, उसी तरह जिन इंद्रदेव ने जल को रोक कर रखने वाले वृत्र को धराशायी किया था, वे इंद्रदेव इस सोमरस पान के योग्य हैं। अतः उनकी कामनानुसार सोमरस प्रदान करो। अध्वर्यवो यो द्रिभीकम् जघान यो गा उदाज दप ही वलम वह तस्मा एतमंतरिक्षे न वातमिंद्रम सोमय रोर्गुणुत जूर्ण वस्त्रैहि। हे अध्वर्युगणो, जिन इंद्रदेव ने द्रिभीक राक्षस का हनन किया, जिनने बलपूर्वक रोकी गई गौवों किरणों को मुक्त कराया, उन इंद्रदेव के निमित्त आकाश में व्याप्त वायु की तरह यह सोम स्थापित करो। शरीर को वस्त्रों से आच्छादित करने की भांति इंद्रदेव को सोम से आच्छादित करो। अध्वर्यवो य उरणम जघान नव चक्वासम नवतिम च बाहून यो अर्बुदमव नीचा बबाधे तमिंद्रम सोमस्य भृथे हिनोत। हे अध्वर्युगणो, जिन इंद्रदेव ने उरण नामक राक्षस की 99 भुजाओं को काटा और उसे मारा तथा अर्बुद राक्षस को अधोमुख करके उसे पीड़ित किया, उन इंद्रदेव को सोम यज्ञ में आने के लिए प्रेरित करो। अध्वर्यवो यह स्वशनम जघान यह शुष्ण मशुसम यो व्यंसम यह पिप्रुम नमुचिम यो रुद्रिकाम तस्मा इंद्रायांधसो जुहोत। जिन इंद्रदेव ने अश्न प्रजापोषक शुष्ण बाहु रहित अहि पिप्रु नमुचि तथा रुद्रिका नामक राक्षसों का वध किया, उन इंद्रदेव को विभिन्न हविष्यान्नों की आहुतियां समर्पित करो। अध्वर्यवो यह शतम् शंबरस्य पुरो बिभेदाश्मनेव पूर्वीहि यो वर्चिनः शतमिन्द्रः सहस्र मवाप पद्भदरता सोममस्मै। हे अध्वर्युगणो, जिन इंद्रदेव ने शंबर राक्षस के 100 पुराने नगरों का अपने शक्तिशाली वज्र से ध्वंस किया, जिनने वर्चीक के 100,000 पुत्रों को धराशायी किया, उन इंद्रदेव के निमित्त सोम प्रदान करो। अध्वर्यवो यह शतमा सहस्रम भूम्या उपस्थे वपजघ्नवान् कुत्स्यास्यारो रतिथिग्वस्य वीरान् या वृणग भरता सोममस्मै। हे अध्वर्युगणो, जिन शत्रुनाशक इंद्रदेव ने हजारों असुरों को मारकर सैकड़ों बार भूमि पर बिछा दिया, जिनने कुत्स आयु तथा अतिथिगुव के द्वेषियों का वध किया, उन इंद्रदेव के निमित्त सोम एकत्रित करो।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 14वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सबके मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

छुट्टियों में अपने परिवार के साथ समय बिताने आए एक सैन्य अधिकारी को सूचना मिलती है कि दुश्मन देश घुसपैठ कर रहा है और युद्ध के आसार हैं। वो अधिकारी लौटने की तैयारी करता है। चिंता से भरकर जब उसका दोस्त उसे सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहता है तो वो जवाब देता है, तू चिंता मत कर, या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। और कुछ महीनों बाद वो तिरंगे में लिपट कर ही वापस आता है। वो साल था सन 1999। वो लड़ाई थी कारगिल युद्ध और वो अमर बलिदानी थे कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर सन 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे और माता कमल बत्रा एक अध्यापिका। बत्रा परिवार में सीमा और नूतन दो बच्चियों के जन्म के बाद दो जुड़वा बेटों का जन्म हुआ। माता पिता ने प्यार से उनका नाम रखा लव और कुश। लव यानी विक्रम बत्रा और कुश यानी उनके भाई विशाल बत्रा। विक्रम बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। पढ़ाई लिखाई में वो हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते। इसके साथ ही कराटे, क्रिकेट, टेबल टेनिस, स्क्वैश और संगीत में भी उनकी गहरी रुचि थी। विक्रम बत्रा की आरंभिक शिक्षा पालमपुर के डीएवी स्कूल में हुई। फिर उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। अपने आसपास बचपन से ही उन्होंने वर्दी पहने हुए सैन्य अधिकारियों को ही देखा था और ये वर्दी उन्हें बहुत आकर्षित करती थी। इस तरह उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया। पिता बचपन से ही उन्हें छत्रपति शिवाजी, शहीद भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की कहानियां सुनाया करते थे। इन कहानियों ने उनके भीतर देश प्रेम और बलिदान की भावना भर दी। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद विक्रम बत्रा ने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में प्रवेश लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वो एनसीसी में शामिल हो गए और एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए अर्हता प्राप्त की। बहुमुखी प्रतिभा के धनी विक्रम बत्रा के लिए भविष्य के अनेक दरवाजे खुले थे, लेकिन उनका अपना चुनाव था कि उन्हें भारतीय थल सेना में ही शामिल होना है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही मर्चेंट नेवी में जाने का अवसर भी उनके सामने आया, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने इस नौकरी से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अपनी भारत माता की सेवा करना चाहता हूँ।

स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने इंग्लिश में एमए करने की योजना बनाई ताकि चंडीगढ़ में ही रहते हुए सीडीएस यानी संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा की तैयारी कर सकें। इस परीक्षा में वो सफल हुए। 21 साल उन्होंने एक सपना देखा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए से 1.5 साल का प्रशिक्षण लिया, तब उनके कंधों पर 2 स्टार लगे। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में वो लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। सोपोर में उनकी पहली पोस्टिंग हुई। यहां कई आतंकवादियों से उनकी मुठभेड़ हुई। अपनी वीरता, पराक्रम और जोश के कारण वो अपने साथियों और अधिकारियों के प्रेम पात्र बन गए। अत्यंत हंसमुख और जीवंत विक्रम बत्रा के मन में हर किसी के लिए असीम प्रेम था। उनकी अनेक डायरियां हैं जिनमें जगह जगह लव ऑलवेज लिखा मिलता है। दूसरों की सहायता और देश का सम्मान उनके संस्कारों में था। खुद से पहले दूसरों के लिए सोचना, यही उनका व्यवहार था जो जीवन में भी दिखाई दिया और युद्ध के मैदान में भी। सन 1999 में पाकिस्तान ने भारत की सीमा में घुसपैठ शुरू कर दी। सीमा पर तनाव बढ़ने लगा। कारगिल की अनेक चोटियों पर दुश्मन ने अधिकार कर रखा था। सीमा पर भारतीय जवान भेजे जा रहे थे ताकि दुश्मन को खदेड़ा जा सके। कारगिल युद्ध के दौरान ही कैप्टन सौरभ कालिया और 5 जवानों को पाकिस्तान ने बंधक बना लिया और असीम यातनाओं के बाद उनकी लाशें भारत भेजी। देश के साथ साथ विक्रम बत्रा भी इस घटना से अत्यंत उद्वेलित थे। अब तक 13 जैकरिफ एक रिजर्व फोर्स थी। ऑपरेशन विजय जारी था। तोरोलिंग और हम्प पर भारतीय जवानों ने अपना झंडा फहरा दिया था। अब लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी ने .5140 को जीतने की योजना बनाई। उन्होंने रणनीति बनाते हुए 2 टीमें बनाई, लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल की ब्रावो कंपनी और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की डेल्टा कंपनी। तय हुआ कि दोनों कंपनियां अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ेंगी। जब तक ये फौजी चढ़ाई चढ़ेंगे तब तक तोपखाने से दुश्मन पर हमला होता रहेगा, और जब दोनों कंपनियां दुश्मन से 200 मीटर की दूरी पर होंगी तब आर्टिलरी हमला बंद होगा और आमने सामने की लड़ाई होगी। संपर्क रेडियो संदेश से बना रहेगा। पहचान छुपाने के लिए सभी के कोड नेम रखे गए। लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल का कोडनेम संग्राम और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा का कोडनेम शेरशाह रखा गया। .5140 जीतने के बाद जीत की सूचना देने के लिए विक्ट्री सिग्नल भी तय हुए। संजीव जामवाल ने अपना विक्ट्री सिग्नल रखा ओ याया, और विक्रम बत्रा ने रखा ये दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा का विक्ट्री सिग्नल देश भर में चर्चित हो गया था क्योंकि इसमें भावना छिपी थी दुश्मन के और बंकर ध्वस्त करने की और चोटियां जीतने की। इस तरह .5140 के लिए विजय अभियान शुरू हुआ।

कारगिल युद्ध इतिहास के कठिनतम युद्धों में से एक था। 17,000 फीट की ऊंचाई पर था दुश्मन, जहां से वो भारतीय सेना की सारी गतिविधियां देख सकता था। इसलिए जवानों को रात के अंधेरे में चढ़ाई चढ़कर सुबह होने से पहले दुश्मन के सभी बंकर ध्वस्त करने थे। सैनिक जब टारगेट से 200 मीटर की दूरी पर थे, तब तोपों से फायरिंग बंद कर दी गई और भारतीय जवानों ने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। विक्रम बत्रा ने पीछे से हमला शुरू किया, दुश्मनों के बंकरों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने दुश्मन के मशीन गन पोस्ट पर भी 2 ग्रेनेड फेंककर उसे खत्म कर दिया। दोनों कंपनियां जैसे दुश्मन पर टूट पड़ी थीं। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने अकेले ही गुत्थम गुत्था लड़ाई में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। वो वाकई शेरशाह थे। दुर्गे माता की जय के बुलंद उद्घोष के साथ .5140 पर तिरंगा लहरा उठा। इस जीत की खुशी पूरे देश में मनाई गई। विक्रम बत्रा को कैप्टन बनाया गया। उनकी बहादुरी को देखते हुए महावीर चक्र के लिए उनका नाम भेजा गया। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा यही नहीं रुके, वो इस कारगिल युद्ध को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए रेस्ट पर जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। अगला लक्ष्य था .4875, क्योंकि यहां से दुश्मन सीधे नेशनल हाईवे पर हमला कर रहा था और भारतीय सेना की गतिविधि को भी इस ऊंचाई से देख रहा था। 13 जैकरिफ अब .4875 के लगभग 1500 मीटर दूर फायर सपोर्ट बेस पर तैनात थी। दुश्मन पर हमला शुरू हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा को बुखार था, पिछला घाव भी अभी भरा नहीं था, लेकिन वो टॉप पर जाकर युद्ध करना चाहते थे। .5140 के संघर्ष में शेरशाह विक्रम बत्रा से पाकिस्तानी फौज रेडियो संदेश पर बात कर चुकी थी, इसलिए उनके हौसले और पराक्रम को वो पहचानती थी। .4875 की लड़ाई बहुत खतरनाक थी। इस चोटी के दोनों तरफ बड़े ढलान थे और दुश्मन की कठिन नाकेबंदी भी, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा इस युद्ध का नेतृत्व खुद कर रहे थे। वो आगे बढ़ते रहे, भीषण गोलाबारी और फायरिंग के बीच आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने 5 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। वो लड़ाई भी लड़ते रहे और अपने साथी की जान भी बचाई। गोली और बमबारी में गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर ग्रेनेड फेंके। इसी बीच उन्हें गोली लग गई। उनकी डेल्टा कंपनी के जवान इसे सह नहीं सके। वो सभी एक साथ दौड़ते हुए आए और दुश्मन के आखिरी बंकर को भी ध्वस्त कर दिया। .4875 पर तिरंगा लहरा उठा, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त हुए। तारीख थी 7 जुलाई 1999। जब तिरंगे में लिपटकर वो वापस आए तो पूरे देश का मन भीग गया। उनके सम्मान में .4875 को बत्रा टॉप नाम दिया गया। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके शौर्य, पराक्रम और बलिदान को हम शत शत नमन करते हैं। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: ग्रीन हाउस का ब्राह्मण राजदूत हनुमंत राव और बर्क की अनोखी मित्रता। 1781 की गर्मियों में लंदन के सबसे असामान्य कूटनीतिक आवासों में से एक कोई महल नहीं बल्कि बीकन्स फील्ड का एक ग्रीन हाउस यानी पौधा घर था। यहाँ के अतिथि थे हनुमंत राव, जो एक उच्च जातीय ब्राह्मण राजदूत थे। उन्हें पदच्युत मराठा पेशवा द्वारा भ्रष्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ न्याय मांगने के लिए भेजा गया था। उनके मेजबान दिग्गज और मशहूर विचारक एडमंड बर्क थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी के दुर्लभ सांस्कृतिक सम्मान का परिचय देते हुए अपने ग्रीन हाउस को ब्राह्मणों के कठोर अनुष्ठान के लिए एक अभयारण्य में बदल दिया। हनुमंत राव का दैनिक जीवन एक विदेशी भूमि पर अपनी जाति शुद्धता को बनाए रखने का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। वे फर्श पर अपना भोजन स्वयं बनाने पर जोर देते थे और कमर से ऊपर लगभग निर्वस्त्र रहते थे, भले ही अंग्रेजी ठंडी हवाएं कांच के शीशों को झकझोर रही हों। उनके प्रवास का सबसे चौंकाने वाला पहलू उनका अटूट अनुशासन था। यदि भोजन करते समय कोई गैर ब्राह्मण उन पर केवल एक नजर भी डाल देता तो वे आध्यात्मिक अपवित्रता से बचने के लिए तुरंत पूरे भोजन का त्याग कर देते थे। इन बाधाओं के बावजूद राजदूत और अंग्रेजी कुलीन वर्ग के बीच आत्मीय बंधन बन गया। हनुमंत राव बर्क और चित्रकार सर जोशुआ रेनॉल्ड्स के काफी करीब आ गए थे। उन्होंने एक दुभाषी के माध्यम से उन्हें बताया कि उनकी उपस्थिति उन्हें वैसे ही सहारा देती है जैसे एक गेंडा अपने बच्चों को केवल निहार कर उनका पोषण करता है। हालांकि वे देखने में एक विदेशी एकांतवासी लगते थे, लेकिन वास्तव में वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेंट थे। उनके द्वारा दी गई जानकारियों ने ब्रिटिश संसद को हिंदू कानूनों पर सबसे प्रामाणिक विवरण प्रदान किया, जिसने अंततः वॉरेन हेस्टिंग्स के ऐतिहासिक महाभियोग की नींव रखी। हनुमंत राव के प्रवास ने यह सिद्ध कर दिया कि एक भारतीय काला पानी पार करने के बाद भी अपनी विरासत और संस्कृति के प्रति एक अडिग चट्टान की तरह बना रह सकता है।
2: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
3: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए। टेक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे साइबर अपराध, चुनौतियां और सुरक्षा के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, हम जानते हैं कि आज हमारे एक क्लिक पर सारी जानकारियां उपलब्ध हैं और ये छोटा सा जो बॉक्स है ना, जिसे हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, वो आज हमारी ज़िंदगी बन चुका है। केवल मोबाइल फ़ोन ही नहीं, उसके अंदर जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंटरनेट की। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसके बिना हम अपने फ़ोन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को जकड़ कर रख लिया है। जी हाँ, कुछ भी काम हो हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और इस इंटरनेट ने जहाँ हमें सुविधाएँ दी हैं तो वहीं हमारे सामने चुनौतियाँ भी खड़ी कर दी हैं। क्या है साइबर अपराध, चुनौतियां क्या हैं, सुरक्षा कैसे की जाए, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने शिवेंद्र कुंभकार जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और हम उनसे जानेंगे कि साइबर अपराध क्या है, चुनौतियां क्या है, सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में।
4: आपने मुझे मौका दिया अपने पक्ष रखने का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू
3: जी। सर, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और साइबर अपराध बहुत तरीके से देखते हैं। आज हम देखते हैं कि जो इंटरनेट है वो हमारी जिंदगी में इतना रच बस गया है कि हम उसके बिना कल्पना नहीं कर पाते हैं। क्या चुनौतियां आज आपके नजरिए से देखने मिल रही हैं?
4: देखिए, दोनों तरह से अपन देख सकते हैं। इंटरनेट का होना अपने लिए बहुत फायदेमंद चीज़ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेट का हद से ज़्यादा उपयोग कहीं ना कहीं अपनी आंखों को कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट के लिए फ़ोन या टैबलेट या कंप्यूटर्स चाहिए। इंटरनेट के लिए आपको कहीं ना कहीं एक जगह बैठ के या कहीं एक चीज़ पर फोकस करना पड़ता है। तो अगर हम प्रीवियस से अगर कंपेयर करें, बिफोर इंटरनेट आफ्टर इंटरनेट, तो पहली तो बॉडी की हेल्थ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। पहले जानकारी लेने के लिए आप लाइब्रेरी जाते थे, रिसर्च करते थे, एक जगह बुक में पढ़ते थे या कहीं रिसर्च मटेरियल में पढ़ते थे। अब आज वो चीज़ आपके हाथ में तो अवेलेबल है, लेकिन उसके चक्कर में आप अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करें, कहीं जाते जाते आप फ़ोन चला रहे हैं, कोई सामने वाला गाड़ी चलाते हुए फ़ोन चला रहा है, तो उसमें रिस्क तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
3: बिल्कुल, रिस्क बढ़ चुका है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वही रिस्क की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो साइबर अपराध इस समय बहुत ज्यादा हो चुके हैं। बात करने की तो जो आजादी है वो हमें फोन ने दी है, अपराध कहाँ बन जाती है ये बातचीत?
4: देखिए, अपराध यहाँ बन जाती है जहाँ वो बातचीत जिसको आप जानते नहीं हो उसके साथ हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपका ही नंबर है, आपको पता है, मुझे पता है, अब मैं उस नंबर में एक दो डिजिट ऊपर नीचे कर दूं तो एक थर्ड पर्सन का वो नंबर आ गया।
3: बिल्कुल।
4: अब उससे मैं अगर आपसे जितना फेमिलियर हूं मैं उस लहजे में बात करूं तो वो तो जानता नहीं है। यहां तक बात करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एग्जाम्पल तौर पे हम एक दूसरे से सबको बहुत पहले से जानते हैं, तो अगर कुछ समय आप रिप्लाई नहीं करेंगे हमारा तो हम आक्रोश में आके आपको कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वही चीज जो तीसरे पर्सन को कह रहे हैं हम इग्नोरेंस में कि हमने नंबर ही गलत डाला है, तो वो अपराध की श्रेणी में चले जाता है, वो बुलिंग की श्रेणी में चले जाएगा, हैरेसमेंट की श्रेणी में चले जाएगा, जिस जो भी आपने कहा हो उस पर डिपेंड करता है वो किस श्रेणी में जाएगा। तो उस हिसाब से चीजें अवेलेबल बहुत ज्यादा हो चुकी हैं।
3: साइबर अपराध की अगर हम बात करें तो किन किन चीजों को हम साइबर अपराध की श्रेणी में ला सकते हैं?
4: सिंपल में हम बात करें, जो भी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के उससे हो उनको आप साइबर अपराध में ले सकते हैं, भले ही वो फोन का सिंपल सा मैसेज हो, इंटरनेट पे वीडियो शेयर हो रहा हो, सोशल मीडिया एप्स उनका उपयोग हो।
3: हैकिंग है, फिशिंग है, पहचान की चोरी है, इन सब के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए।
4: देखिए, हैकिंग को हम अगर आम भाषा में बताना चाहें तो हैकिंग है कि आपका डिवाइस बिना आपकी परमिशन के कोई उसको यूज कर रहा है, उसको हम हैकिंग में दे देते हैं। फिशिंग है, आप किसी ने चारा डाला, मछली फंसी तो फंसी, नहीं फंसी तो बहुत सारों को डाला, कोई एक ना एक तो मछली पकड़ में आ ही जाएगी। देखिए, आजकल AI के मामले में डीप फेक बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो पहचान की चोरी इस श्रेणी में जाएगा। लेकिन क्योंकि अपन खुद को सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा प्रेजेंट कर चुके हैं कि और आपने अपना कंसेंट दे चुका है, जैसे अभी बीच में एक बहुत अच्छा ट्रेंड चला था, गिबली ट्रेंड, जिसमें सब लोग अपनी AI में फोटोज डाल के जिबली बना रहे थे, तो उस ट्रेंड के चक्कर में आपने आपकी खुद की जो पर्सनल फोटोज हैं वो आपने AI सर्वर पे अपलोड करी और उसको बोला कि तुम इसको इस्तेमाल करके हमारी AI इमेजेस बना के दो, तो कहीं ना कहीं तो ये आपको पता नहीं था कि वो AI फोटो आप यूज कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता था वो स्टोर भी करेगा। आपने उसको पूरा एक्सेस दे दिया उसको जहां पे इस्तेमाल करना है, ट्रेनिंग डेटा में हो, टेस्टिंग डेटा में हो, किसी में भी, वो AI अब खुद के बेहतर सुधार के लिए या कहीं अपने डेटा में स्टोरेज तो है ही, उसमें वो रख के उसको कहीं ना कहीं यूज तो कर सकता है। और आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों की हम अगर बात करें तो डेटा चोरी एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जब आप आपके कंसेंट से ऐसी फोटोज देते हो, कुछ पर्सनल सीन्स भी होंगे जिनको आपने ट्रेंड में डालने के लिए किया होगा, तो वो सारी आपकी डिटेल्स विद फेस डेटा, बैकग्राउंड डेटा, कभी कभी तो अनजाने में ऐसी फोटोज भी अपलोड होती हैं जिसमें जियो लोकेशन टैग्ड हो, तो आपने बकायदा ये कि मैंने ये फोटो इस जगह इस समय इसके साथ ली, इस फोन से ली,
3: अच्छा
4: पूरा डेटा आपने AI को दे दिया,
3: अब वो जो चाहे तो इस्तेमाल करे, आपका तो उसने अभी बना के दे दिया AI वाला, लेकिन फिर वो उसका कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो परमिशन मांगी जाती है और हम देते हैं, फिर अगर वो उसका गलत इस्तेमाल करें तो क्या वो भी साइबर अपराध में आएगा?
4: गलत इस्तेमाल किसी भी चीज का अपराध की श्रेणी में आएगा, अब अगर वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा रही है तो वो साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। बात यह है कि कोई कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, इवन गवर्नमेंट इसका दुरुपयोग नहीं करती, लेकिन उसके पास जो डेटा है उसको कोई और उठा के उसका दुरुपयोग करता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: उसकी सुरक्षा करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
3: बिल्कुल, तो ये वायरस और मेलवेयर फैलाना भी एक साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, ये कैसे काम करता है?
4: देखिए, वायरस और मेलवेयर जनरली फोन्स डिवाइसेस में रहेगा, वायरस और मेलवेयर अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो अपने इसमें नहीं आएगा। वायरस अलग अलग तरह के होते हैं, मेलवेयर भी अलग अलग तरह के होते हैं। हम अगर वायरस की इसमें ही बात करें तो आपके डिवाइस को इन्फेक्ट कर देना, उसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक मान लेते हैं सबसे इजीएस्ट एग्जांपल, आपको मेल आया, आपने लिंक पे क्लिक किया, वायरस डाउनलोड हो गया, उससे अब वो वायरस किस तरह का उस पर डिपेंड करता है, या तो वो आपके फोन को स्लो कर देगा, कहीं ना कहीं डेटा यूज करने लगेगा, डेटा माइनिंग करने लगेगा, या फिर मोस्टली देखा जाता है कि बिटकॉइन माइनिंग या क्रिप्टो माइनिंग में भी कहीं ना कहीं वो आपके फोन के रिसोर्सेज को यूज करने लगता है। वायरस मेलवेयर दोनों से हो सकता है, कहीं ना कहीं वो आपका डेटा चुरा के अपने पास लॉक कर लेगा, वो रैंसमवेयर में आ जाता है, कि मतलब वायरस मेलवेयर का मिक्सचर ही रहेगा रैंसमवेयर, जिस जिसमें वो आपका डेटा को इनक्रिप्ट ऐसा कर देगा कि आपको खुद का डेटा एक्सेस करने के लिए जिसने भी डाला है उसको पैसा देना पड़ेगा।
3: अच्छा,
4: और ऐसा केसेस गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी हुए हैं, प्राइवेट एजेंसी के साथ भी हुए हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: जिसमें डिपेंड करता है आपका डेटा कैसा था, सेंसिटिव था कि नहीं था, या कितना आपके लिए जरूरी है, फिर उस हिसाब से वो रहता है।
3: साइबर स्टॉकिंग भी एक शब्द है, ये क्या होता है?
4: साइबर स्टॉकिंग मैं अब आपको समझाऊं, क्या आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो आपका कोई क्लोज रिलेटिव है उसको किसी एक थर्ड पर्सन के बारे में जानना है जो आपसे रिलेटेड है लेकिन उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो पहले उससे आपसे उनकी आईडी मांगेगा।
3: ठीक है।
4: फिर उस आईडी की पूरी पूछ जांच पड़ताल करेगा कि ये इसकी ये वाली आईडी थी, अब इससे इसकी दूसरी सोशल मीडिया लिंक ढूंढते हैं। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मैं पर्सनली अपनी चीजें ओपन नहीं करता हूँ इतनी डिटेल्स में सोशल मीडिया पे किसी भी माध्यम में, लेकिन आजकल का ट्रेंड ही है कि हर बच्चा इन्फ्लुएंसर की हम बात करें या हर एक जो भी एक ये आजकल चला रहा है सोशल मीडिया,
3: पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स भी होते हैं, वो भी अपने आप को उसमें बहुत ज्यादा बताना पसंद करते हैं कि उन्होंने क्या किया है, पब्लिक फिगर होते हैं, नेता होते हैं।
4: नहीं, हम उनकी स्टॉकिंग में हम इसलिए नहीं गएंगे जो कि वो खुद ही इतना ओपन कर लेते हैं कि वो तो जिसको जो देखना चाहे देखे। स्टॉकिंग वो होती है जो बंदा चाहे नहीं लेकिन फिर भी आप उसके पीछे पड़े रहो, उसके पूरे निकालते रहो। जैसे हम गए कहीं घूमने, हमने डाल दिया, सामने वाले ने देख लिया, अब उसका वो जो भी इस्तेमाल करे, जिस भी सेंस में उसको लेना चाहे वो ले सकता है, लेकिन हमने तो हमारे क्लोज वालों को बताया ना। हमने सब लोग के लिए थोड़ी बताया, हमने तो सिर्फ क्लोज वालों के लिए, ताकि उनको अपडेट रहे कि हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। वो क्लोज वालों के लिए था लेकिन क्योंकि उसको थर्ड पर्सन देख रहा है इसलिए वो साइबर स्टॉकिंग में जाएगा।
3: तो ये मतलब कहना चाहिए कि आपके बिना अनुमति के आपके बारे में कोई जानकारी ना ले सके, फोन की भी ना ले सके, आपके डेटा की ना ले सके, ये सारी चीजें साइबर अपराध में आती। बात तो हो गई हमारी अपराध की, चुनौतियों की तो बात हो गई, कैसे बचा जाए?
4: अभी साइबर स्टॉकिंग की बात चल रही थी तो इसी के इसमें हम देंगे। जनरली जितने भी एप्स हैं, कोई सा भी सोशल मीडिया एप्स हो, उसमें एक यूजर के पास पूरे के पूरे राइट्स रहते हैं कि वो कौन सी चीज उसकी किसको शेयर करना चाहे। बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेसी फंक्शंस ओपन रहते हैं। अब वो बाय डिफॉल्ट ओपन इसलिए रहते हैं ताकि जो कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज से अपनी जो बैकएंड की चीजें हैं, जो कि कंप्यूटर्स को चाहिए डेटा, अब वो डेटा कहाँ से लाएंगे? वो डेटा यूजर्स से ही आएगा। एक कह सकते हैं कहानी है या प्रोवर्ब है, अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है तो प्रोडक्ट वो नहीं है, प्रोडक्ट आप हो। तो आपको चीजें तो सुविधाएं तो फ्री में दे रहे हैं या चीपेस्ट रेट में दे रहे हैं, पर प्रोडक्ट वो नहीं है, प्रोडक्ट तो आप
3: हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो उससे बचने के लिए आप प्राइवेसी फंक्शंस जितने भी हैं उनमें अपनी थोड़ी जागरूक बनने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। एक मेरे हिसाब से एक ग्रेजुएट बंदा या एक 12th pass 10th pass जो भी आज की डेट में श्रेणी में आते हैं, क्योंकि एजुकेशन आज की श्रेणी में इतनी स्ट्रांग हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी कि सब कुछ अब बताते हैं ओपनली। हमारे टाइम पे तो नहीं था, आपके टाइम पे भी आई एम श्योर नहीं होगा, लेकिन आजकल 7th 8th के बच्चों को एक अच्छी कोडिंग लैंग्वेज सिखाई जा रही है एजुकेशन करिकुलम में है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं। हमारे टाइम पे वो नहीं था, तो एक आम उसको देख सकता है, लेकिन आज 5 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल डिवाइस है, उसका भी अपना एक आईडी है, तो उसके लिए तो वो सारी चीजें ओपन है। भले ही पेरेंटल कंट्रोल से हम कहीं ना कहीं लॉक लगा लें, लेकिन उसके लिए वो सारी चीजें ओपन है और वो इतना सोचेगा भी नहीं कि मैं प्राइवेसी के बारे में इतना ध्यान दूं। लेकिन जब तक वो उस चीज को लॉक करने की एज में आएगा तब तक वो अपने बारे में बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज कर चुका होगा, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है आगे की उसमें बात करें।
3: एंटीवायरस उपयोग किया जा सकता है
4: इन टर्म्स ऑफ डिवाइसेस, एंटीवायरस मोबाइल्स की बात कर रहा हूँ, तो इन टर्म्स ऑफ इसमें एंटीवायरस डालना इज मच रिस्कियर। वो कहते जरूर हैं कि जहर का तोड़ जहर होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बाय डिफॉल्ट जो आते हैं और आजकल तो वही इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अपन को डालने की जरूरत नहीं है। मैं विंडोज की बात करूंगा, विंडोज ओएस की सबसे ज्यादा आज की डेट में यूज होने वाला ओएस है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट भी हम बात करें कॉमन सेंस में हो चुका है। उसके अंदर एक है विंडोज डिफेंडर, वो डिफेंडर सबसे अच्छा एंटीवायरस को ब्लॉक कर सकता है, बहुत सारी फायरवॉल सारी सिक्योरिटीज रखता है, लेकिन अगर आप आपके डिवाइस में एंटीवायरस डालते हो तो वो उसी को ब्लॉक कर देता।
3: अच्छा।
4: तो आपने जो मेन अपना बैकबोन थी, बैकअप था, जब उसी को बंद खत्म कर दिया तो फिर ये एंटीवायरस कैसे बचा पाएगा?
3: तो मतलब कहना चाहिए सतर्कता जरूरी है,
4: नॉलेज रखना इस फील्ड में ज्यादा जरूरी है कि कौन सा एंटीवायरस कंपनी या सॉफ्टवेयर आपका क्या डेटा एक्सेस करता है।
3: तो ये तो बात हो गई एक जानकार वाले व्यक्तियों के लिए। एक जो एक आम नागरिक है जो एक आम फोन इस्तेमाल करता है 15-20 हजार का करता है, और जो कंपनियां जब इन्हें बेचती है तो बहुत सारी चीजें बताती है कि दमदार पिक्चर है, दमदार ये है और ऐसा है वैसा, ऐसे लोग साइबर की घातक अपराध से कैसे बच सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल एक सरल शब्दों में बात करेंगे।
4: मैम सरल शब्दों में उन लोगों के लिए कि एक लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लर्न तो करना पड़ेगा। बेसिक रखिए, ज्यादा डिटेल में भले ही ना जाइए,
3: बहुत सारी चीजों को डाउनलोड मत करिए अनजान। मतलब
4: अगर आपको कहीं शक हो रहा है तो अपने किसी बच्चे से पूछ लीजिए, आसपास कोई थोड़ा बहुत जानकार हो उससे जानकारी ले लीजिए। मैं ही नहीं कह रहा हूँ आप सामने वाले की 100% बात मानो, बस थोड़ी जानकारी ले लो फिर अपने हिसाब से एक्ट करो।
3: ठीक है,
4: अगर आपको लगता है कि ठीक थी जानकारी तो उस हिसाब से एक्ट करो, नहीं थी तो अपने जो भी आपको लग रहा है उस हिसाब से एक्ट करो, लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल, एक कैलकुलेटर ऐप रहता है, आपके हिसाब से क्या परमिशन लगनी चाहिए कैलकुलेटर को?
3: कुछ नहीं, बस
4: नॉर्मली रहना चाहिए कैश स्टोरेज। लेकिन अगर एक कैलकुलेटर ऐप आपकी फोन परमिशन, स्टोरेज परमिशन, मैसेज परमिशन, लोकेशन परमिशन मांग रहा है और आप उसको यस यस यस यस करे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका कंसेंट दे रहे हो कि हाँ भैया मैं ओपन हूँ, आओ कर लो हैक या आओ ले लो मेरा पूरा डेटा।
3: ठीक है,
4: तो कहीं ना कहीं देखना तो अपन को पड़ेगा कि ये वाली ऐप है इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए।
3: ठीक,
4: कुछ कुछ ऐप्स ऐसी रहती हैं जो मांगती हैं, जिनको मैंडेटरी रहता है, जो कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो एक उनके पास डेटा होना जरूरी है कि ये सही आईडी थी कि नहीं थी, ये सही एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम मेल की बात करते हैं तो अगर आपने नोटिस किया हो, आपने कहीं थर्ड कंप्यूटर में आप ही ने लॉग इन किया तो वो मेल आपको आएगा कि आपका ये वाली लोकेशन से हुआ, चाहे आप ही थे कि नहीं थे,
3: आप ही थे कि नहीं थे। बिल्कुल।
4: अब अगर आपने उसको चेक कर लिया और आपको पता है आप नहीं थे तो आप तुरंत वहां पे लॉग कर सकते हो कि नहीं है मैं नहीं हूं, इसको अपन हटा देते हैं।
3: जी बिल्कुल,
4: आप थे तो कोई बात ही नहीं,
3: बात ही नहीं। लेकिन ये अवेयरनेस भी होना चाहिए,
4: ये जानकारी अब आपको बढ़ना आना चाहिए कि ये मेरे को मिला है तो इस समय क्या इस्तेमाल कर सकते।
3: तो मतलब हमारे जितने भी फोन धारक हैं वो अगर कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं और वो अगर कोई जानकारी मांगता है तो बहुत ध्यान से पहले उसे पढ़ें, फिर उसको यस कहें और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा इस समय एक शब्द का प्रचलन और चल रहा है, क्योंकि नई चीजें जिंदगी में आई हैं तो नए नए शब्दावली भी आई हैं, वो है एक डिजिटल अरेस्ट।
4: जी।
3: ये क्या चीज है, इसे किस तरह से प्रहार होता है और किस तरह से बचना चाहिए?
4: डिजिटल अरेस्ट इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी बात करें कुछ नहीं होता,
3: कुछ नहीं होता है,
4: लेकिन अब लोगों को डर रहता है। डिजिटल अरेस्ट के अंदर होता यह है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया, ऑनलाइन का जमाना सभी करते हैं, उसी का बेस माध्यम जो हम ज्यादातर केसेस जो डिजिटल अरेस्ट में देखे गए अभी तक उसमें बता रहे हैं, तो उसमें बेस ये होता है कि आपने एक्स जगह से आपने ऑर्डर किया, आपका ऑर्डर आया, इसके अंदर कुछ भी एक अवैध पदार्थ पाया गया है, तो इसके अंदर आप कस्टडी में हो, आप वीडियो कॉल करके आपको बताया जाएगा बकायदा पूरी ड्रेस में कि ये वाला कोट है, ये है, वो है, और उसमें कह देते हैं कि आपके कंप्यूटर डिवाइस या फोन को वीडियो कॉल फुल टाइम चालू रखो, किसी से संपर्क नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते।
3: मतलब वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पे नियंत्रण किया जाता है कुल मिला के, तो ये तो कुछ भी बात नहीं हुई, मनोवैज्ञानिक रूप से एक दबाव हो गया,
4: मेंटल प्रेशर इतना डाल दिया जाता है।
3: हाँ।
4: और कहीं ना कहीं वो चीज आपने ऑर्डर करी ही होती है।
3: हाँ हाँ।
4: तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलती है।
3: हाँ,
4: तो उसके चक्कर में
3: ऐसे में क्या करना चाहिए?
4: सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है मेरे हिसाब से, ऐसे में तो अगर फोन डिवाइस है तो एयरप्लेन मोड, कंप्यूटर है तो मॉडम बंद।
3: अच्छा, ऐसे में पुलिस की कितनी सहायता लेनी चाहिए, क्या सच में बताना चाहिए? कई लोग बता नहीं पाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण की बात करूं, अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में ये बात भी आई थी कि अचानक से आपके पास एक वीडियो कॉल आता है, खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स हो गए या यंगस्टर्स होते थे तो उनके साथ आया, फिर उन्होंने अश्लील वीडियो दिखाया वहां से, तुरंत वो हो गया कि नहीं अब तो अब इसमें आप आ गए हैं, आप पैसे दीजिए या आप ये करिए तो हम आपको, नहीं तो वीडियो लीक कर देंगे। ये जो चीजें हुई हैं ये क्या है, इससे कैसे बचे हमारे श्रोता?
4: जब आपने किया ही नहीं है तो वीडियो वायरल होकर क्या ही होगा?
3: पुलिस की सहायता लेना चाहिए,
4: जरूर लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस करते इसलिए नहीं है जो कि खुद डर जाते हैं कि पुलिस हम पे दबाव डालेगी कि तुमने एक्चुअल में किया, तुरंत पुलिस की सहायता ली जाए, FIR की जाए, नजदीकी जो भी साइबर कार्यालय है वहाँ।
3: सबसे पहले तो अपना डिवाइस बंद कर दिया जाए कुल मिला के।
4: नहीं, डिवाइस बंद नहीं करना, जो सामने वाले से वीडियो आया पहले तो उसको ब्लॉक कर दो। अगर उसके पास आपका कुछ डेटा है तो जो भी आपके क्लोज में लोग थे या आपका फ्रेंड सर्कल है उनको सूचित कर दो कि भैया मेरे साथ ये चीज हो रही है, अगर आपके पास कोई पैसे लेने के लिए आता है तो मत देना, ताकि आप खुद को भी सेफ साइड कर लो और सामने वाले को भी सेफ साइड कर लो। और मेरा मानना तो ये है, जो दूसरा साइड है जिसके साथ नहीं हुआ है लेकिन वो क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में है, तो भैया अगर आप इतने अच्छे फ्रेंड सर्कल में हूँ या क्लोज में हूँ, तो उनके जिसका भी जो भी एरर आ रहा है, जैसे मान ले बहुत सारे वीडियो कॉल्स में देखा जाता है कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में पैसे सेंड कर दो,
3: जी जी जी,
4: या मेरे को यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, मैं यहाँ पे पैसे नहीं लाया, मेरे को पैसे सेंड कर दो
3: जी।
4: तो जो उनका रिलेटिव हो, जैसे मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी को ही फोन लगा के बोल दो, आंटी तबीयत खराब है कि नहीं है, मेरे पास ये फोन आया था इसलिए मैं कन्फर्म कर रहा हूँ, अगर है जरूरत है तो आप जरूर सेंड करो। लेकिन जब आंटी ही मना कर दे कि नहीं बेटा मैं तो सस्त हूँ, घर पे हूँ, आ जाओ मिल लो, बहुत दिनों से बात नहीं हुई,
3: तो फिर इमोशनल ब्लैकमेल ना हो, बिल्कुल तुरंत उस चीज को चेक करें और फिर उसके बाद पहले उस बात पे पूरी तरीके से भरोसा करें, उसकी तहकीकात करें, फिर उसके बाद काम करें। क्या कानूनी जो बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या कुछ इसके लिए बदलाव भी हुए हैं, कुछ नियम कानून बने हैं भारतीय?
4: कानून तो बहुत सारे बने हैं, कॉमन पर्सपेक्टिव से देखें तो उन कानून का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ बैक एंड सपोर्ट नहीं होगा तो फिर आप जो गलत पक्ष है उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दोगे कि हम तो कुछ भी करें, हम पे कोई निगरानी नहीं होगी, हम पे कोई एक्शन नहीं होगा। बहुत सारे लोग अब ओपन हो चुके हैं कि हमारे साथ ये चीज हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में फिर भी हम देखा जाए या एक इमोशनल मेंटल प्रेशर के उसमें देखा जाए, बहुत सारे लोग नहीं बताते अभी भी, लेकिन मैक्सिमम चीजें मैं कहूँगा 20-25% चीजें ओपन हो चुकी हैं। अब वो इतनी अच्छी ओपन हो चुकी हैं कि टाइम के साथ धीरे धीरे बाकी चीजें भी ओपन होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पर अब कंट्रोल आया है।
3: ओपन वाईफाई हमने आजकल देखा है कि रेलवे स्टेशन पे हो गया है, सार्वजनिक क्षेत्र
4: पे हो गया,
3: सब जगह आजकल मिलने लगा है, तो क्या ऐसी जगह से कई लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलिए हमें
4: नेट मिल गया,
3: फ्री नेट मिल रहा है तो उसका उपयोग कर लिया जाए। अगर आप ऐसी जगह पर नेट एक्सेस करते हैं तो किन चीजों की सावधानी बहुत जरूरी है?
4: मेरा तो ये सुझाव रहेगा ऐसी जगह पे नेट का उपयोग ना ही करो।
3: ठीक है,
4: अगर आपके पास मान लेते हैं डिवाइस में नेट खत्म हो गया, अपन को ऑनलाइन किसी चीज की जरूरत है, भैया रिचार्ज करा लो। डेटा सिक्योरिटी बहुत जरूरी है,
3: बहुत जरूरी है।
4: ये नहीं कह रहा हूँ हर नेटवर्क में वो रहता है कि आपका डेटा हैक हो जाएगा, लेकिन ओपन नेटवर्क में अगर आप चाहो तो कोई भी एक बंदा आपके डिवाइस को चेक कर सकता है कि वो ओपन डिवाइस से कनेक्टेड है, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इन अ सेंस एक व्हाइट हैट और एक रेड हैट हैकर्स होते हैं। मैंने चूंकि पूरा कोर्स किया है इस फील्ड में तो मैं बता सकता हूँ, जो हैकिंग फील्ड होती है, हमने एक एक्सपेरिमेंट सर ने कराया था हमारे, उनने अपना वाईफाई ओपन करवा दिया था, और क्योंकि हमारे पूरे बैच में बहुत सारे लोग थे तो कुछ लोगों ने कनेक्ट किया, उनने सबसे सिंपल सा एक चीज बोली, उनने ये डिस्क्लोज नहीं किया था कि ये मेरा वाईफाई नेटवर्क है आप इसको यूज करो, उनने बस नॉर्मल सा कमांड दिया था कि आप आपके क्लोज बंदे को, जो भी आपके क्लास में ही बैठा उसी बंदे को एक पर्टिकुलर ये वाला मैसेज करो। वो मैसेज भी बहुत सिंपल था कि आज मैं इस क्लास में आया हूँ, हमने कल ये सीखा था, नॉर्मल सी समरी थी। जिन लोगों ने उस वाईफाई से कनेक्ट किया था उन लोगों के मैसेज पहुंचे ही नहीं, वो बीच में इंटरप्ट हो गए और उनके पास तीसरा मैसेज पहुंचा जो सिंपल सा एक स्टेटमेंट था, ये गलत है, मुझे नहीं पता, मैं एब्सेंट था, सिर्फ मल सा इतना, मुझे फंसाया जा रहा है, बस इतनी सी तीन चार लाइनें थी उसमें। तो जो दूसरा वाला था, ये तो मैंने किया नहीं, ये कैसे हुआ, ये सिंपल सा उनने हमें एक बेसिक उनने रन डाउन दिया था कि ये भी हो सकता है अगर आप मेरे ओपन नेटवर्क से कनेक्ट करो। अब क्योंकि मैं हूँ मैं मिसयूज नहीं करूंगा, लेकिन सामने वाला क्या करेगा इसका आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते।
3: बिल्कुल, AI से भी अभी बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, इससे किस तरह से बचें और किस तरह से जो हमारे जो श्रोता हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखें?
4: मैम AI का सबसे बड़ा अभी जो सबसे वो चल रहा है

0: तो कहीं ना कहीं आज की दुनिया में आपको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत तो बढ़ चुकी है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। अगर हम किसी भी साइबर चीज़ से बचना चाहें तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, या फिर OTPs ना शेयर करना हो गया, अननोन लिंक्स पे क्लिक करना ना हो गया, सिक्योर पासवर्ड होना शुरू हो गया। लेकिन AI से कैसे बचें, तो सबसे बेस्ट इज़ टू स्टेप वेरिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्रॉस चेकिंग, इन टर्म्स ऑफ नॉट OTP या मेल यहाँ पे भी आएगा वहाँ पे भी आएगा, वो तो अपनी जगह ठीक ही है। लेकिन AI खुद एक मशीन है और जो आपके पास OTP भेज रहा है वो भी एक मशीन है। वो कहते हैं कि AI में जो आप नंबर डालोगे वो रैंडम से आएंगे, लेकिन AI एक मशीन है। बीच में एक दो हफ्ते पहले एक रिसर्च हुई है
1: जी,
0: रिसेंटली रिसर्च है, उसमें ये साबित किया उसने एक सिंपल से कोड से कि AI जो नंबर जनरेट करता है ये रैंडम नहीं होते। कोई भी इसको रिवर्स इंजीनियर करके एक्चुअल OTP जो आपको गई है वो भी निकाल सकता है। और वायरस और मेलवेयर के चक्कर में जो कि आपके फोन के अंदर जो भी मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं वो तो उसके पास पहुंच ही रहे हैं, तो उसको वो रिवर्स इंजीनियर करने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस वो उस लिंक फोटो पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक किया, वायरस आ गया।
1: जो साइबर अपराध करते हैं और जो लोग इस तरह से दिमाग लगाते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं?
0: भैया कम कर दो, सरकार सख्त हो चुकी है।
1: अच्छा
0: पहले भले ही फ्री रेन थी, अब वो फ्री रेन नहीं बची है
1: जी।
0: अब हर सरकार, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल भी हम बात करें तो हर सरकार बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है और बहुत जल्द जल्द एक्शन ले रही है।
1: तो आप भले कितनी ऊंची उड़ान उड़े लें आपके पर
0: कभी ना कभी तो फंसोगे। डिजिटल फुटप्रिंट अपना हर समय छूट जाता है, भले ही वो हैकर का हो, आपका हो, मेरा हो, डिजिटल फुटप्रिंट हर जगह है।
1: बिल्कुल।
0: अब उस डिजिटल फुटप्रिंट को यूज सामने वाला कैसे करेगा
1: जी?
0: पॉजिटिव में करेगा तो वो उसकी बात अलग है, नेगेटिव में करेगा तो उसकी बात अलग है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट वही है कि एक चोरी के सीन में कुछ ना कुछ सबूत मिलता है। इन टर्म्स ऑफ डिजिटल हम क्राइम की बात करें, साइबर की बात करें, तो डिजिटल फुटप्रिंट आपका कहीं ना कहीं मिल ही जाता है।
1: तो कुल मिलाकर ये कहने की बात है कि जो हमारे जो श्रोता है वो इस बात का ध्यान रखें कि जितने अच्छे तरीके से आप अपने फोन का उपयोग करते हैं, उसको संभाल कर रखते हैं, उतनी ही सतर्कता, उतनी ही जागरूकता भी जरूरी है। वास्तविक बने रहिए, कुछ भी ऐसा लगता तो पहले क्रॉस चेक करें, ज्यादा फेमस होने के चक्कर में अपनी चीजों को डिस्क्लोज ना करें, सेफली रखें, अपने पासवर्ड अच्छे से रखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने और अपनों के साथ रहें।
0: मैम मैं कहना चाहूंगा जितने भी श्रोता हमको सुन रहे हैं, जो भी हैं, कभी भी अपनी OTP या पर्सनल डिटेल, कार्ड का हो गया, CVV हो गया, या कोई भी थर्ड पर्सन आपसे OTP मांगे तो उसको OTP कभी ना दीजिए। सबसे बेस्ट और सिक्योर मेथड अगर रखना है तो वो है OTP का। आप दो ही मत, आपका जो रिस्क है हैक होने का या डेटा जाने का वो बहुत कम हो जाता है। अगर आपसे कोई मांगता है, वैसे तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, भले ही वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, आपसे OTP मांगेगा ही नहीं। सबने अपने अपने डिस्क्लेमर डाल के रखें कि हमारी ओर से OTP नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर कोई बाई चांस मांगता भी है तो पहले तो आप उससे उसकी ID वगैरह ले लीजिए, फिर भी OTP ना दीजिए। ID की फोटो लेके पुलिस में कंप्लेंट कर दो, लेकिन OTP ना दो
1: जी।
0: सबसे बेस्ट सिनेरियो ये
1: नो मतलब नो। बेहद सार्थक और विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मुझे मौका दिया अपनी पक्ष रखने का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
1: ये रही हमारी आज की जानकारी टेक गुरु में कि किस तरह साइबर अपराध हैं, चुनौतियां हैं और उसमें कैसे सुरक्षा हो सकती है। परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुन्नानी का, और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैखवार। तो आज का कार्यक्रम बस यहीं तक, और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: भयानक महीना जब शराब का बिल मुनाफे से ज्यादा हो गया। क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अकेली फैक्ट्री ने एक बार शराब का इतना भयानक बिल बना दिया था कि वह उसके पूरे साल के निर्यात मूल्यों से भी अधिक हो गया। कंपनी के अभिलेखागार में अत्यधिक फिजूल खर्ची के इस दौर को द मॉन्स्टर्स मंथ यानी भयानक महीने के रूप में दर्ज किया गया है। इस राजकोषीय और शारीरिक अय्याशी का दृश्य सुमात्रा के अलग थलग पश्चिमी तट पर स्थित बैनकुलन, जिसे यॉर्क फोर्ट या फोर्ट मालबोरो के नाम से भी जाना जाता था। 18वीं सदी की शुरुआत में बैनकुलन अपनी जहरीली जलवायु और नगण्य व्यापार के लिए बदनाम था, जहां केवल अपमानित, दिवालिया या वास्तव में हताश लोगों को ही भेजा जाता था। इस मलेरिया वाले क्षेत्र से जीवित बचने वालों में जोसेफ कॉलेट भी शामिल थे, जो एक दिवालिया थे लेकिन अपने कार्यकाल के बाद अंततः मद्रास की काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। हालांकि हर कोई कॉलेट की तरह इस उष्णकटिबंधीय कष्ट को सहन नहीं कर पाया। जुलाई 1716 में कॉलेट के कार्यकाल के अंतिम महीने में केवल 19 अनुबंधित कर्मचारियों, अर्थात वह व्यापारी जिन्हें कंपनी के खर्च पर भोजन करने का अधिकार था, कि एक छोटे से समूह ने सुमात्रा की कथित उदासी और तकलीफों को मिटाने के लिए भारी मात्रा में शराब का सहारा लिया। क्या आप जानते कि उन्होंने वास्तव में क्या पिया था? लंदन के डरे हुए निदेशकों के अनुसार, जिन्होंने बाद में खातों की बारीकी से जांच की, उनके अनुसार इन 19 पुरुषों ने 75 दर्जन महंगी वाइन बोतलें, जिनमें ज्यादातर महंगी क्लैरेट थी, बियर की 24 दर्जन बोतलें जिनमें खासकर बर्टन एलिस और पेल बियर, 164 गैलन गोवा ताड़ी, लगभग विशाल बैरल बटाविया अराक के साथ ही साथ मदिरा और शिराज वाइन की अतिरिक्त मात्रा शामिल थी। जब लिडेन हॉल स्ट्रीट के ऑडिटर्स ने आंकड़ों की गणना की तो वे दंग रह गए। केवल उस एक महीने में पी गई शराब की लागत पूरी फैक्ट्री द्वारा साल भर में निर्यात की गई काली मिर्च के कुल मूल्य से भी अधिक थी। निदेशकों ने एक तीखा पत्र भेजा, यह आश्चर्य जताते हुए कि इनमें से कोई भी कर्मचारी अब तक जीवित कैसे है। उन्होंने लिखा, हमें आश्चर्य है कि आप में से कोई भी 6 महीने भी जीवित रहता है और आप लोगों के बीच और अधिक झगड़े और द्वंद्व नहीं होते, यदि शराब का आधा हिस्सा भी आपने कटक लिया हो। उन्होंने सख्ती से आदेश दिया कि भविष्य में कर्मचारी अपनी मौज मस्ती का भुगतान स्वयं करें और कंपनी अब उनके स्वाद के लिए सब्सिडी नहीं देगी। लेकिन यहां एक अंतिम और विडंबनापूर्ण मोड़ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन कर्मचारियों को यह फटकार कभी मिली ही नहीं। जब तक पत्र सुमात्रा के तट पर पहुंचा, फोर्ट मालबोरो जलकर खाक हो चुका था। कर्मचारियों द्वारा वर्षों के उकसावे वाले व्यवहार और उत्पीड़न के कारण एक विशाल स्थानीय विद्रोह भड़क उठा था, जिसने जीवित बचे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की लहरों के पार भागने पर मजबूर कर दिया। मॉन्स्टर्स मंथ इस बात की याद दिलाता है कि भले ही कंपनी व्यापारियों की एक संस्था थी, लेकिन इसके दुरुस्त ठिकाने अक्सर अय्याशी के विक्षुब्ध अड्डे थे, जहां पुरुष अपने निर्वासन की सड़ांध भरी वास्तविकता से बचने के लिए शाब्दिक रूप से कंपनी के मुनाफे को पी जाते थे।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। और अब समय है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से का।

0: नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से इसकी छठी कड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी में हमने सुना था कि 16वीं सदी में मध्य भारत के एक विशाल भूभाग पर गोंड राजवंश द्वारा स्थापित गढ़ा राज्य पर महाप्रतापी राजा संग्राम शाह की पुत्रवधु वीरांगना रानी दुर्गावती का 1550 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी तक का शासन था। रानी के लोक उपयोगी कार्यों के कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। समकालीन दिल्ली के मुगल दरबार पर भी इसका असर दिखने लगा था, चाहे वो सोने और हाथी के रूप में दिया गया लगान हो, गोसाई विट्ठल नाथ जी का गढ़ा आगमन हो, मठ मंदिरों का निर्माण या रानी का सच्चरित्र। मुगल दरबार गढ़ा राज्य की चर्चा करने लगा था और कहीं ना कहीं रानी के ये गुण मुगल दरबार को खलने लगे थे, जिसका परिणाम गढ़ा राज्य पर आक्रमण के रूप में हमारे सामने आया। रानी अत्यधिक चरित्रवान, साहसी और अच्छी योद्धा थी। उनकी तारीफ अबुल फजल बदायूनी फरिश्ता जैसे मुगल दरबारी लेखकों तक ने की है, लेकिन अबुल फजल ने इस ओर भी इशारा किया कि गोंड रानी दुर्गावती मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। पिछली कड़ी में हमने सुना कि अकबर ने उनका मनोबल तोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए और उन्हीं प्रयासों को आगे ले जाते हुए अकबर ने किसी को वहां पर भेजा। किसे भेजा, कैसे भेजा, क्या थी पूरी बात, फिर से हमारे साथ एक बार हैं स्टूडियो में पूजा सक्सेना जी, प्रसिद्ध पुरातत्वविद। और पूजा जी, फिर से एक बार आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: हम सब उत्सुक हैं आपसे आगे की कहानी जानने के लिए।
1: अकबर का एक सेनापति था आसफ खां, हमने पिछली बार सुना। वो मालवा में तैनात था और कड़ा उसकी जागीर थी। आसफ खां गढ़ा राज्य की गतिविधियों की सूचना दिल्ली के मुगल दरबार तक बार बार पहुंचा रहा था। रानी दुर्गावती के बढ़ते हुए सैन्य ताकत और प्रतिष्ठा ने मुगल दरबार को विचलित कर दिया। दोनों राज्यों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही थी। यह वो समय था, हमें याद रखना चाहिए, जब गढ़ा के राजा दलपत शाह की मृत्यु हुए कई वर्ष बीत चुके थे।
0: जी हाँ।
1: रानी ने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर 14 वर्ष तक गढ़ा राज्य को खूब समृद्ध किया था, हम सब जानते ही हैं। रानी इस समय लगभग 40 वर्ष की एक अधेड़ महिला रही होगी और एक बच्चे की माँ भी।
0: जी।
1: तो उनका संघर्ष और मुगल सेना का संघर्ष, दोनों के बीच में ये एक बेसिक डिफरेंस रहा होगा, ये हमें ध्यान में जरूर रहना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: उधर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आसफ खां एक लड़ाका था। उसके परिवार के लोग हुमायूं की सेना में भी रह चुके थे और कई युद्ध लड़ चुके थे।
0: जी।
1: आसफ खां ने मुगल राज्य के एक भगोड़े अमीर था गाजी खां तन्नूरी,
0: जी,
1: उसको मारा था, जिससे कि इस घटना के बाद जो शासक था अकबर उसकी नजरों में आ गया
0: और वो उनका खास बना और उन्होंने उसको मालवा की
1: कड़ा जागीर दे दी।
0: जी।
1: तो यहाँ से अब आसफ खां जो है उसकी नजर अपने आसपास के जो राज्य थे उन पर लग गई कि वो अपने राज्य का विस्तार, जागीर से बड़ा राज्य कैसे बनाए।
0: जी।
1: इस और उसका ध्यान था। उसे गढ़ा राज्य कई मायनों में आकर्षित कर रहा था। एक तो ये जनजाति बहुल क्षेत्र था जिसकी बड़ी जनसंख्या जंगलों में रहती थी।
0: बिल्कुल।
1: और अपने काम से काम रखती थी, उन्हें युद्धों से इससे उससे कोई खास मतलब नहीं था। दूसरा, यह राज्य बहुत समृद्धशाली होता जा रहा था, हम सब देख ही रहे थे। हाथी भी एक बड़ा कारण थे, वन संपदा थी, वन संपदा एक बहुत बड़ा कारण बन के आती है इस समय, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर जहाजों का निर्माण हो रहा है, पानी के जहाजों का। उसके लिए अच्छी किस्म की सागौन की लकड़ी चाहिए।
0: जी।
1: और वो तो हमारे मध्य भारत में बड़ी बहुलता के साथ में होती है, तो वन संपदा भी एक बहुत बड़ा कारण थी, जड़ी बूटियां, दूसरी चीजें। इसके अलावा दक्कन जाने तक का जो व्यापारिक मार्ग था वो भी यहाँ से होकर गुजरता था, और जहां से व्यापारिक मार्ग गुजरता है वहां पर जो कर वसूला जाता है तो उससे राज्य समृद्ध होते हैं। तो हर एक राज्य चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक मार्गों पर उसका अधिकार हो, तो ये भी एक बड़ा कारण बन के उभरा। वहीं दूसरी तरफ जो संत हुए पुष्टि मार्गीय विट्ठल नाथ जी, जिनके बारे में हमने पिछली काफी चर्चा की, उनका प्रभाव जो बढ़ रहा था, दूसरी तरफ जो धर्मांतरण बड़े स्तर पर रुक रहे थे, इन सब कारणों से एक स्थिति बन रही थी कि गढ़ा और मुगलों के बीच में एक युद्ध के आसार साफ नजर आ रहे थे।
0: और इन्हीं सब कारणों के चलते जो आसफ खां था वो मुगल दरबार को, अकबर को उकसाया करता था कि वो यहाँ पर हमला करें।
1: बिल्कुल। अगर हम जैसे मुगल दरबारी लेखक हैं वदायूनी, अबुल फजल, इनके वर्णनों को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि आसफ खां मुगल शासक अकबर को गढ़ा राज्य पर आक्रमण करने के लिए खूब उकसाया करता था
0: जी।
1: लेकिन गढ़ा राज्य के प्रति वह हमेशा मित्रतावत व्यवहार रखता था, यानी कि आसफ खां वहां तो लड़ाई की तैयारियों में था
0: जी।
1: लेकिन यहाँ पर गढ़ा राज्य के साथ वो अपने मित्रता के संबंध दिखाया
0: तो
1: करता
0: था। सिर्फ युद्ध नीति में कुशल था, वो कूटनीति में भी कुशल
1: बिल्कुल
0: था।
1: बिल्कुल उसने गढ़ा राज्य से शत्रुता का खुलासा ही नहीं किया कभी, इसीलिए गढ़ा राज्य उसके प्रति चिंतित भी नहीं था। और वो गुपचुप तरीके से गढ़ा राज्य के संचार साधनों, आय व्यय और गढ़ा राज्य की आंतरिक स्थितियों को जानने के लिए गुप्तचरों और व्यापारियों को लगातार भेजता रहता था। गढ़ा राज्य के अंदर की सारी जानकारियां इकट्ठा करता था
0: जी।
1: और वो ये जानने की कोशिश करता रहता था कि कहाँ कितनी संपत्ति है, कहाँ रखी है, कहाँ कितनी सेना है, कितना असला है, क्या स्थिति है उसकी। ये सब जानकारियाँ वो बहुत लंबे समय से एकत्र कर रहा था, जो गढ़ा के लिए एक मुश्किल उसने बाद में पैदा की
0: जी।
1: धीरे धीरे आसफ खान ने मुगल शासक अकबर को इस बात का यकीन दिला दिया कि गढ़ा जैसा समृद्धशाली राज्य उसके शासनाधिकार में नहीं है। यानी ये एक बड़ी चिंता की विषय है मुगल दरबार के लिए कि गढ़ा जैसा समृद्ध राज्य उसके अधिकार में ही नहीं है। तो अकबर जो है उससे विचलित होने लगा और भारत का जो मध्य भूभाग है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, गौंड जनजाति और उसके संसाधनों पर उसका अधिकार नहीं है। इसके बाद आसफ खान ने इस बात पर भी अकबर को मनाना शुरू कर दिया कि गढ़ा राज्य पर आक्रमण के अतिरिक्त कोई विकल्प बचा ही नहीं है, यानी आक्रमण अब करना ही होगा
0: जी।
1: युद्ध अति आवश्यक है। आखिरकार मुगल शासक अकबर ने गढ़ा राज्य पर आक्रमण करने के लिए आसफ खां को सन 1564 में इजाजत दे दी।
0: यहाँ पर आक्रमण करने के लिए अकबर की सेना नहीं आई थी, आसफ खां की ही सेना यहाँ पर आई।
1: हाँ, कभी भी अकबर गढ़ा राज्य पर आक्रमण करने के लिए नहीं आया। उनका जो सेनापति था आसफ खां, उन्होंने गढ़ा राज्य पर आक्रमण किया था। आसफ खां पहले से ही गुपचुप तरीके से अपनी सेना को भी सुदृढ़ कर रहा था, उधर अकबर को भड़का रहा था और इधर सेना भी अपनी तैयार कर रहा था। हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक को कई वर्षों तक एकत्र करता रहा। अकबर की इजाजत मिलते ही भारी भरकम मुगल सेना का साथ भी उसको मिल गया। यह बात जानकर कि मुगल सेना गढ़ा राज्य पर आक्रमण कर रही है, तो जो छोटे छोटे राज्य थे जो अकबर को लगान दिया करते थे, अप्रत्यक्ष रूप से मुगल राज्य के अधीन थे, उन सब ने भी अपनी सेनाएं आसफ खां को दे दी। तो इस तरह आसफ खां के पास एक बहुत ही विशाल सेना हो गई, जो कि बड़े हाथियों से, घोड़ों से और हथियारों से लैस थी।
0: तो क्या पूजा जी ये भी कह सकते हैं कि इसके पीछे खुद आसफ खां की जो महत्वाकांक्षा थी वो भी जोर मार रही थी, क्योंकि खुद चाहता था कि वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह गढ़ा राज्य का सिरमौर बन जाए।
1: बिल्कुल, आसफ खां अपनी जगह बनाने में लगा हुआ था
0: जी।
1: और उसने अकबर का सहारा लिया।
0: बिल्कुल,
1: अकबर के लिए ये एक कहीं विचलित करने वाली बात थी कि भारत का जो मध्य भूभाग है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है
0: जी।
1: तो ये सब मिलकर ही तो स्थितियां पैदा कर रहे थे।
0: और उस समय रानी दुर्गावती कहाँ थी?
1: जिस समय आसफ खां गढ़ा राज्य के लिए षड्यंत्र रच रहा था, उसी समय रानी दुर्गावती गढ़ा राज्य को समृद्ध करने में लगी हुई थी
0: जी।
1: जब आसफ खां दमोह की तरफ आ गया, उस समय तो रानी सिंगौरगढ़ में थी और उन्हें इस षड्यंत्र की भनक तक नहीं थी, क्योंकि वह तो मित्रवत व्यवहार करता था।
0: बिल्कुल।
1: तो रानी ने नहीं सोचा कि इस तरीके का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। रानी के पास अचानक से सूचना पहुंची कि आसफ खां दमोह तक पहुंच चुका है। इससे रानी की सेना के खेमे में हलचल मच गई। उस समय रानी युद्ध के लिए तैयार तो थी नहीं
0: जी।
1: कहते हैं कि उनकी सेना में उस समय केवल 500 सैनिक थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गोंड रानी दुर्गावती ने इस कठिन समय में भी साहस नहीं खोया और मुगल सेना का सामना करने के लिए आगे बढ़ी
0: जी।
1: रानी को छोटी सी सेना के साथ युद्ध के लिए पलायन करने की तैयारी देखते हुए उनके जो मंत्री थे आधार कायस्थ, उन्होंने रोका और कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस समय गोंड सेना में सैनिकों की कमी थी, युद्ध की तैयारी थी नहीं। और सामने विशाल मुगल सेना का होना चिंताजनक तो था।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए ये सलाह दी गई कि इस समय रानी युद्ध के लिए पलायन ना करें
0: जी।
1: लेकिन रानी को ये सलाह तो दी गई कि वह युद्ध में नहीं जाएं, पर रानी के लिए युद्ध में ना जाना कायरता का प्रदर्शन करने जैसा था, यह उनके आदर्शों के भी खिलाफ था
0: जी।
1: युद्ध से मुंह मोड़ लेना ये तो सवाल ही नहीं उठता था उनके लिए।
0: बिल्कुल, और इसीलिए हम उन्हें रानी दुर्गावती के नाम से आज भी संबोधित
1: जी
0: करते
1: हाँ।
0: हैं।
1: रानी दुर्गावती ने सोचा कि अपमानजनक जीवन जीने से अच्छा है सम्मानजनक तरीके से मर जाना।
0: वाह क्या बात है। तो फिर क्या उन्होंने मतलब ठान तो लिया ही था, तो क्या सामना किया उन्होंने आसफ खां की सेना का?
1: रानी अब गढ़ा राज्य की आन बान की रक्षा के लिए युद्ध में जाने की तैयारी कर चुकी थी
0: जी।
1: रानी का साहस देखकर अब उनकी सेना में लगभग 2000 सैनिक सम्मिलित हो गए, कहां 500 की सेना थी
0: जी।
1: और लोग अपने आप से आए उनकी सेना में सम्मिलित होने के लिए। तो रानी ने अपनी सेना को तैयार कर लिया और सेना कूच कर गई
0: जी।
1: जिस ओर मुगल सेना बैठी हुई थी उस ओर उन्होंने 4 पड़ाव पार भी कर लिए।
0: अच्छा।
1: इसकी सूचना आसफ खां को लग गई और वो भी आगे बढ़ रहा था
0: जी।
1: तो जैसे ही सूचना मिली तो वो दमों में ठिटक गया।
0: अच्छा।
1: वहीं रुक गया
0: जी। जी
1: उसने अपने संदेश वाहक मुगल दरबार में भेजे
0: जी,
1: अकबर से और अधिक सेना की टुकड़ियां भेजने की मांग की।
0: लेकिन पूजा जी पहले ही उसके पास 10,000 लोगों की सेना थी और रानी तो यहाँ पर सिर्फ 2000 सैनिक लेकर के चलनी थी, तो आसफ खां को ये अंदाजा नहीं था कि रानी के पास सेना कम है, या वो डरा हुआ ज्यादा था?
1: रानी के शौर्य की गाथाएं वो सुन चुका था
0: जी,
1: और गोंड भी बड़े पराक्रमी होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो संभवतः यही कारण था कि इतना अधिक आंतरिक जानकारियां जुटाने के बाद भी
0: जी।
1: और 10,000 की सेना लेने के बाद भी उसने और टुकड़ियों की डिमांड अकबर के सामने रखी
0: जी।
1: अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथ देखें जैसे आईने अकबरी है जिसे अबुल फजल ने लिखा है, तो हमें उसमें पढ़ के पता चलता है कि आसफ खां की सेना में हाथी घोड़े पैदल सैनिक सहित 10,000 की सेना थी।
0: पहले से ही थी
1: जी। पहले से ही थी। इसके अलावा मुगल शाही आदेश से जो मुगलों के जो इफ्तादार हुआ करते थे, जैसे नाम मिलते हैं हमको मुहब्बिब अली खान, मोहम्मद मुराद खान, वजीर खान, बाबाई काकशाल, नाजिर बहादुर और आक मोहम्मद, ये सभी जो हैं इफ्तादार थे मुगल दरबार के
0: जी।
1: और ये सभी भी अपनी सेनाएं लेकर अब आसफ खान से मिल गए।
0: सैन्य सहायता आसफ खान को मिल गई, तो उसके बाद उनके पास कितने सैनिक हो गए?
1: हाँ, अगर हम तबकाए अकबरी नाम की एक किताब है उस समय की वो देखें तो हमें पता चलता है कि आसफ खां की सेना में घुड़सवार पैदल सैनिक सहित लगभग 50,000 की सेना का उल्लेख है।
0: ओह, कहां रानी के पास सिर्फ 2,000 की सेना थी और ये 50,000 लोगों की सेना लेकर आ रहा था, जिसमें पैदल सैनिक भी थे और हाथी घोड़े मतलब सारे लोग थे, तमाम लाव लश्कर मौजूद था
1: जी हाँ।
0: तो फिर क्या उसने रानी के आने का वहां इंतजार किया या रानी की तरफ कूच किया?
1: रानी दुर्गावती अपनी सेना के साथ दमों की ओर कूच कर रही थी
0: जी।
1: उधर दूसरी ओर तेजी से आता हुआ आसफ खां यह जानकर कि गढ़ा की सेना कूच कर गई है दमों में रुक गया था
0: जी।
1: तो गढ़ा राज्य के मंत्रियों ने रानी दुर्गावती को यह सलाह दी कि किसी सुरक्षित स्थान पर सेना को रुक जाना चाहिए
0: जी।
1: और वहां हमें अपनी सेना का एकीकरण कर लेना चाहिए क्योंकि अभी अभी बहुत सारे सैनिक आकर जुड़े हैं, तो सेना का एकीकरण करना बहुत जरूरी था
0: जी।
1: तो रानी को यह परामर्श ठीक लगा
0: जी।
1: और उन्होंने अपनी सेना को गढ़ा के पश्चिम में स्थित सघन जंगलों की ओर मोड़ लिया
0: जी।
1: इन जंगलों में अनेक वनवासी गोंड राज्य पर आई विपदा की जानकारी पाकर सेना में शामिल होने के लिए अपने आप ही चले आए
0: जी।
1: इस तरह रानी की सेना में स्वेच्छा से अनेक लोग जुड़ने लगे। अब लगभग 2000 की सेना रानी के पास में
0: इस थी। तरह से 2000 लोग हो गए थे 500 से जी।
1: तो यहाँ जंगलों में सेना का एकीकरण करने के बाद रानी ने फिर दक्षिण पश्चिम की तरफ कूच किया
0: जी।
1: और वह एक स्थान पर पहुंची जो नरई के नाम से जाना जाता है।
0: अच्छा।
1: नरई नर्मदा नदी और गौर नदी के बीच की एक घाटी है
0: जी।
1: ये घाटी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है
0: जी।
1: गढ़ा की सेना ने यहाँ नरई में अपना शिविर गाड़ दिया। अबुल फजल ने भी नरई के बारे में लिखा है, वहाँ प्रवेश करना और वहाँ से बाहर आना इस घाटी से बहुत ही मुश्किल था
0: जी।
1: ऐसा अबुल फजल ने लिखा। इस स्थान के चारों ओर ऊंचे पर्वत हैं, सामने गौर नदी बहती है, ये भी अबुल फजल ने लिखा है। दूसरी ओर तो नर्मदा जोर जोर से पहाड़ों से टकराती हुई बहती है। यानी इस दुर्गम स्थान का बड़ा विस्तृत वर्णन अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया, और उसने ये भी लिखा कि केवल एक सकरा सा रास्ता है जो बसाहट की तरफ जाता है।
0: तो निश्चित रूप से ये परिस्थितियां, ये जो स्थान था, ये तो रानी दुर्गावती के लिए एक प्लस पॉइंट था वहां पर, और उन लोगों के लिए तो निश्चित रूप से बड़ा ये दुरूह कार्य रहा होगा, क्योंकि वो सब जानते थे कि गोंड जनजाति के लोग हैं, जंगलों का रास्ता जानते हैं, दुर्गम स्थानों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं।
1: हर एक राजवंश का अपनी प्रकृति को जानना उसका एक प्लस पॉइंट तो होता ही है
0: जी।
1: साथ ही हर एक राजवंश की अपनी एक तकनीक भी होती है युद्ध की।
0: बिल्कुल।
1: तो इनकी तकनीक में प्रकृति का उपयोग करते हुए लड़ना शुरू से ही शामिल था
0: जी।
1: तो नरई को चुनना रानी की एक स्ट्रेटेजी का एक बहुत अच्छा भाग था
0: जी। तो इससे मालूम चलता है कि जो रानी दुर्गावती थी वो युद्ध की रणनीति बनाने में भी अत्यधिक कुशल थी
1: जी। हाँ।
0: तो श्रोताओं, मतलब इसका कि देखिए, जो रानी दुर्गावती थी वो युद्ध नीति में भी बहुत कुशल थी, रणनीति बनाने में बहुत कुशल थी। उन्हें मालूम था उनके पास कितनी कम सेना थी। पहले 500 लोग थे, और अब तो जो उनके पास सैनिक आकर के भी जुड़े, जैसे कि हमें पुरातत्वविद पूजा जी ने बताया कि जो 2000 लोग भी हुए वो कोई कुशल योद्धा नहीं थे, वो सिर्फ गोंड जनजाति के ऐसे लोग थे जो गढ़ा राज्य के रहवासी थे, और वो रानी की भक्ति से सराबोर होकर, रानी की भक्ति से प्रभावित होकर उनकी सेना में जुड़ गए। तो आगे भी ये बात जारी रहेगी। हम कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से सुन रहे हैं। हमारे साथ पुरातत्वविद पूजा सक्सेना जी हैं, जो लगातार हमें बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां दे रही हैं। और अब युद्ध तक बात आ चुकी है, युद्ध का बिगुल बज चुका है, आसफ खान ने धोखा दे दिया है, और अब देखते हैं कि रानी किस तरह से आसफ खान की एक लंबी चौड़ी सेना का मुकाबला करती हैं। उसके लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड, जिसके लिए हम आपको जल्दी ही मिलेंगे। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: बॉम्बे बॉक्स वर्क, रेशमी मोज़ेक, फारसी जड़ें और ब्रिटिश मार्केटिंग। 19वीं सदी के व्यापारिक कैटलॉग के शांत अभिलेखागार में अक्सर एक जिज्ञासु शब्द मिलता है, बॉम्बे बॉक्स वर्क। एक सामान्य दर्शक के लिए ये ज्यामितीय पैटर्न की एक चमकती हुई सम्मोहक त्वचा की तरह दिखता है। हाथी दांत, सींग और विपरीत लकड़ियों का सूक्ष्म मोज़ेक, जो दस्ताने के बक्से, राइटिंग डेस्क और कार्ड केस पर लिपटा होता है। हालांकि नाम से ये विशुद्ध रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक आविष्कार लगता है, लेकिन इस कला का इतिहास फारसी उत्पत्ति, भारतीय शिल्प कौशल और शाही रीब्रांडिंग की एक कहानी है। भारत में इस तकनीक को सादेली के नाम से जाना जाता था, जो बॉम्बे में ब्रिटिश उपस्थिति से कहीं अधिक पुरानी थी। इसकी उत्पत्ति फारस के शिराज और इस्फहान शहरों में हुई थी, जहां इसे खम्बात बंदी कहा जाता था। ये प्रक्रिया बेहद सटीक और धैर्यपूर्ण थी। शिल्पकार हाथी दांत प्राकृतिक या हरे और लाल रंग में रंगे हुए आबनूस और चंदन की सैकड़ों पतली छड़ों को गोंद का उपयोग करके बंडलों में बांधते थे। इन बंडलों को फिर अविश्वसनीय रूप से पतली परतों में काटा जाता था, जिन्हें लकड़ी के आधारों पर चिपकाया जाता था। यहाँ एक मुख्य अंतर था। जहाँ फारसी कारीगर अपने रूपांकनों को रेखांकित करने के लिए पीली धातु यानी पीतल का उपयोग करते थे, वहीं भारतीय कारीगर टिन या चांदी के तार को प्राथमिकता देते थे। ये शिल्प राजनीतिक अशांति से भाग रहे पारसी समुदायों के साथ अरब सागर पार कर भारत आया, पहले सिंध पहुंचा और अंततः 18वीं शताब्दी के मध्य तक सूरत के व्यस्त बंदरगाह तक पहुंचा। दशकों तक सूरत इस उद्योग की असली धड़कन बना रहा, यहां तक कि जब ब्रिटिश राजनीतिक और सैन्य शक्ति बॉम्बे द्वीप की ओर स्थानांतरित हो गई, तब भी विशेषज्ञ कारीगर सूरत में ही रहे। ब्रिटिश अधिकारी वर्षों तक शिकायत करते रहे कि जब कच्चा हाथी दांत बॉम्बे में उतारा जाता था, तब भी उसे काम के लिए वापस सूरत भेजना पड़ता था, क्योंकि वहां शिल्प नेटवर्क की स्थानीयता इतनी गहरी थी। बॉम्बे बॉक्सवर्क नाम में संक्रमण ब्रिटिश मार्केटिंग का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने साम्राज्य के बदलते समय को प्रतिबिंबित किया। जैसे जैसे बॉम्बे एक औपनिवेशिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, ये इन वस्तुओं के पश्चिमी बाजारों तक पहुंचने का प्राथमिक आउटलेट बन गया। विक्टोरियन यात्री इन बक्सों से मंत्रमुग्ध थे, उन्हें प्रामाणिक भारतीय कलाकृतियों के रूप में देखते थे। ये शिल्प 1851 की महान प्रदर्शनी में अपने चरम पर पहुंचा, जहां बॉम्बे में बने इन कलात्मक वस्तुओं ने पदक जीते और अंततः महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली के लिए एक भव्य विस्तृत बॉक्स तैयार किया गया। इस सुंदरता के पीछे एक जटिल वैश्विक व्यापार नेटवर्क था। सादेली में उपयोग किए जाने वाले हाथी दांत की मांग ने हाथी दांत कपास यूरोबोस को चलाने में मदद की। एक वाणिज्यिक सर्किट जहां अफ्रीकी हाथी दांत के बदले भारतीय कपड़ों का व्यापार किया जाता था, ताकि गुजरात की कार्यशालाओं का पेट भरा जा सके। आज बॉम्बे बॉक्सवर्क एक मृत शब्द है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सेल्यूलाइड प्लास्टिक के उदय और बाद में हाथी दांत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ये उद्योग ध्वस्त हो गया। फिर भी ये नाम इस बात का भाषाई अवशेष बना हुआ है कि कैसे अंग्रेजों ने एक जीवंत प्राचीन फारसी भारतीय परंपरा पर अपने स्वयं के प्रशासनिक लेबल सफलतापूर्वक थोप दिए।
2: यामादा नागमासा, अयोध्या का मर्चेंट मर्सिनरी, व्यापारी किराए का सैनिक। 17वीं शताब्दी के सियाम, आज का थाईलैंड की राजधानी अयोध्या के व्यस्त बंदरगाह में एक व्यक्ति एक ही समय में कई भूमिकाएं निभा सकता था। दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी किस्मत आजमाने वाले जापानी साहसी यात्रियों में यामादा नागामासा से बेहतर इस लचीलेपन का उदाहरण कोई और नहीं है। नागामासा जापानी शुइंजो या लाल मुहर पास प्रणाली द्वारा संचालित अभूतपूर्व समुद्री विस्तार के युग के दौरान सियाम पहुंचे थे। अपने हजारों देशवासियों की तरह वे अयोध्या के निहोनमाची यानी जापानी समुदाय में बस गए। एक ऐसी दुनिया जहां व्यापार और हिंसा के बीच की रेखाएं हमेशा धुंधली रहती थीं। इस माहौल में जापानी प्रवासी एक बदलती निरंतरता में रहते थे, जो जरूरत पड़ने पर मर्सनरी बन जाते थे और मुनाफा दिखने पर वापस व्यापारी की भूमिका में आ जाते थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नागामासा एक दुर्जेय व्यवसायिक प्रतिद्वंदी थे। वे केवल एक सैनिक ही नहीं थे, वे एक समृद्ध व्यापारी थे जिन्होंने एक अत्यधिक लाभदायक वाणिज्यिक नेटवर्क का प्रबंधन किया था। उन्होंने जापान में भारी मांग वाली वस्तु हिरण की खाल के आकर्षक व्यापार पर नियंत्रण के लिए VOC के साथ कड़ा मुकाबला किया। इस मर्सनरी मर्चेंट ढांचे ने उन्हें अपनी निजी सेना बनाए रखते हुए व्यक्तिगत संपत्ति बनाने की अनुमति दी। सियाम के राजा अपनी सुरक्षा के लिए तेजी से जापानी लड़ाकों पर निर्भर होने लगे थे, जिन्हें वे साहस और निष्ठा के लिए सबसे सम्मानित मानते थे। यूरोपीय पर्यवेक्षकों ने इन सैनिकों को वीर और भयंकर योद्धाओं के रूप में वर्णित किया है, जो किसी भी संघर्ष के परिणाम को बदलने में सक्षम थे। जापानी समुदाय के राजनीतिक वर्चस्व की शुरुआत एक दुस्साहसी कृत्य से हुई थी। डच वृत्तांतों और अयोध्या के इतिहास के अनुसार जापानी सैनिकों ने सियाम के सम्राट का अपहरण कर लिया था और उन्हें तब तक बंधक बनाए रखा जब तक कि वे उन्हें अपने एलीट पैलेस गार्ड और जीवन भर के लिए अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने पर सहमत नहीं हो गए। इस उच्च स्तरीय माहौल में नागामासा रैंकों में ऊपर उठते गए और सियाम के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। नागामासा का करियर अपने चरमोत्कर्ष पर तब पहुंचा जब उन्होंने सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया और उत्तराधिकार की विश्वासघाती राजनीति को संभाला। वे एक सैन्य और वाणिज्यिक उद्यमी की अनूठी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते थे, एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह युद्ध का नेतृत्व कर सकता था और दोपहर में व्यापारिक सौदे पर बातचीत कर सकता था। अंततः एक किंगमेकर का जीवन जितना लाभदायक था उतना ही खतरनाक भी। नागामासा की मृत्यु 1630 में हुई। वे उसी दरबारी साजिश के शिकार हुए जिसे आकार देने में उन्होंने मदद की थी। उनकी कहानी उस युग का प्रमाण है जहां साहसी यात्री समुद्र पार कर सकते थे और अपनी युद्ध प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर विदेशी भूमि में सत्ता हथिया सकते थे। नागामासा केवल एक विदेशी घुसपैठिए नहीं थे, वे सियामी राज्य के एक अनिवार्य अंग थे, जो ये साबित करता है कि उस समय एक तेज तलवार और व्यापार की गहरी समझ ही राजनीतिक अस्तित्व का अंतिम हथियार थे।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। आज हम आपसे चर्चा करेंगे पद्म भूषण से सम्मानित महान चित्रकार कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई के बारे में। साथियों, कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, कला समाज का दर्पण है, समय का दस्तावेज है और परिवर्तन का माध्यम है। और जब हम के शंकर पिल्लई के बारे में बात करते हैं तो केवल एक कलाकार के बारे में नहीं बोल रहे होते। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक युग के बारे में, एक आंदोलन के बारे में।
4: बिल्कुल, 31 जुलाई 1902 को केरल के छोटे से शहर कायमकुलम में जन्मे के शंकर पिल्लई ने अपने जीवन की शुरुआत बेहद साधारण परिस्थितियों में की थी। उनके पिता एक साधारण डाक कर्मचारी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन इस साधारण परिवार के बच्चे में छिपी थी एक असाधारण प्रतिभा, एक ऐसी प्रतिभा जो आगे चलकर भारत की पहचान बनी।
3: के शंकर पिल्लई ने कभी कोई औपचारिक कला शिक्षा नहीं ली, उनके हाथ में कोई महंगा ब्रश नहीं था, कोई विदेशी डिग्री नहीं थी, लेकिन था तो बस एक अटूट जुनून, चित्रकारी का जुनून, अभिव्यक्ति का जुनून, सच बोलने का जुनून। बचपन में वे दीवारों पर कोयले से चित्र बनाते थे, स्कूल की किताबों के हाशिए पर अपने शिक्षकों के कार्टून बनाते थे, और यही शौक, यही जुनून उन्हें मुंबई ले गया, सपनों के शहर में, जहां संघर्ष था, चुनौतियां थीं, लेकिन अवसर भी थे।
4: बिल्कुल, तो आइए आज हम आपको लिए चलते हैं के शंकर पिल्लै की जीवन यात्रा की ओर। एक ऐसी यात्रा जो शुरू होती है केरल के एक छोटे से गांव से और पहुंचती है पूरे भारत के दिलों तक। ऐसी यात्रा जिसमें है संघर्ष के अनगिनत पड़ाव, सपनों की उड़ान, असफलताओं का सामना और अंततः सफलता का वो शिखर जो आज भी हम सबको प्रेरित करता है।
3: केशव शंकर पिल्लै का जन्म 31 जुलाई 1902 को केरल के त्रावणकोर राज्य के कायमकुलम नामक छोटे से शहर में हुआ था। यह स्थान आलप्पुझा जिले में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बैकवाटर्स के लिए प्रसिद्ध है। उनका जन्म एक परंपरागत नायर परिवार में हुआ था, जो केरल की प्रमुख जातियों में से एक है। उनके पिता केशवर नायर एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे। वे डाक विभाग में काम करते थे और परिवार की आय बहुत सीमित थी। माता लक्ष्मी अम्मा एक धार्मिक और संस्कारी महिला थीं, जो घर परिवार की देखभाल करती थीं। परिवार में शंकर के अलावा और भी भाई बहन थे और सभी को एक साथ पालना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण था।
4: केरल उस समय शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी था और शंकर के माता पिता चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। हालांकि आर्थिक तंगी थी, फिर भी उन्होंने शिक्षा पर समझौता नहीं किया। शंकर बचपन से ही बेहद जिज्ञासु और कल्पनाशील थे। कायमकुलम की हरी भरी प्रकृति, नारियल के पेड़, बैकवाटर्स की नावें और स्थानीय बाजार का रंगीन जीवन, ये सब उनकी कल्पना को उड़ान देते थे। वे घंटों बैठकर लोगों को देखते और उनकी विशेषताओं को अपने दिमाग में उतारते रहते थे।
3: उनकी माँ को याद है कि 5-6 साल की उम्र में ही शंकर घर की दीवारों पर कोयले से चित्र बनाते थे। एक बार उन्होंने अपने पिता का चेहरा दीवार पर बना दिया, जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। चेहरे की समानता इतनी सटीक थी कि लोग पहचान गए कि ये किसका चित्र है।
4: बिल्कुल, और माँ अक्सर चिंतित होती थी कि शंकर अपनी पढ़ाई की किताबों में भी चित्र बनाते रहते थे। गणित की किताब के हाशिए पर फूल, पत्ते, चिड़िया और लोगों के चेहरे बने होते थे। कभी कभी तो पूरा पन्ना ही चित्रों से भर जाता था और पाठ पढ़ने के लिए जगह नहीं बचती थी।
3: शंकर की प्रारंभिक शिक्षा कायमकुलम के स्थानीय स्कूल में हुई। वे पढ़ाई में औसत दर्जे के छात्र थे। गणित उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन इतिहास और भूगोल में उनकी रुचि थी, क्योंकि इन विषयों में चित्र और नक्शे होते थे। स्कूल के शिक्षक उनसे परेशान रहते थे, क्योंकि वे कक्षा में ध्यान ही नहीं देते थे। एक बार संस्कृत के शिक्षक पाठ पढ़ा रहे थे और शंकर अपनी कॉपी में कुछ बना रहे थे। शिक्षक ने गुस्से में कॉपी छीन ली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शंकर ने उनका ही एक बेहद सटीक कार्टून बनाया है, जिसमें वे संस्कृत श्लोक बोलते हुए दिख रहे हैं, तो वे हंसे बिना नहीं रह सके। उस दिन के बाद वे शिक्षक शंकर को प्यार से छोटे चित्रकार कहने लगे।
4: जी हाँ, और स्कूल में शिक्षक के कुछ करीबी दोस्त थे जो उनकी कला के बेहद प्रशंसक थे। वे अक्सर शंकर से अपने चित्र बनवाते और अपने घर ले जाकर रखते थे। धीरे धीरे पूरे स्कूल में शंकर की प्रतिभा की चर्चा होने लगी। 10वीं कक्षा में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। स्कूल में वार्षिक उत्सव था और प्रतियोगिता भी रखी गई थी, जिसमें विद्यार्थियों को महात्मा गांधी का चित्र बनाना था। शंकर ने जो चित्र बनाया वो इतना जीवंत था कि देखने वालों को लगा जैसे गांधी जी खुद वहां खड़े हों। उन्हें प्रथम पुरस्कार भी मिला और स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, ये लड़का एक दिन देश का नाम रोशन करेगा।
3: हाई स्कूल पूरा करने के बाद शंकर ने त्रावणकोर के महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया। ये केरल का एक प्रतिष्ठित कॉलेज था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए शंकर को छात्रवृत्ति मिली थी, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं थी और उन्हें बहुत कठिनाई से अपना खर्च चलाना पड़ता था। कॉलेज में शंकर ने बीए में दाखिला लिया, लेकिन उनका मन पढ़ाई में कम और चित्रकारी में ज्यादा लगता था। वे कक्षाओं में बैठकर प्रोफेसरों के कार्टून बनाते रहते। एक बार इतिहास के प्रोफेसर पढ़ा रहे थे और शंकर उनका चित्र बना रहे थे। प्रोफेसर ने पूछा, शंकर मैं क्या पढ़ा रहा हूं? शंकर खड़े हो गए और बोले, सर मुगल साम्राज्य के बारे में। प्रोफेसर ने कहा, अच्छा तो तुम सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? शंकर ने झिझकते हुए अपनी कॉपी दिखाई। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, कला अच्छी है लेकिन परीक्षा में ये नहीं चलेगा।
5: जी हाँ बिल्कुल, कॉलेज के दिनों में शंकर को अपनी आर्थिक स्थिति से भी बहुत जूझना पड़ा था। कई बार उनके पास किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। वे दोस्तों से किताबें उधार लेते और पूरी रात जाग कर पढ़ते थे। खाने पीने में भी कटौती करनी पड़ती थी। कभी कभी तो केवल चाय और बिस्किट से ही उनका दिन गुजरता था। लेकिन इन कठिनाइयों ने शंकर की हिम्मत नहीं तोड़ी। उन्होंने कॉलेज की पत्रिका के लिए चित्र बनाने शुरू कर दिए। कॉलेज के वार्षिक समारोह के पोस्टर भी वे बनाते थे और धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी।
3: एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और कहा, शंकर तुम्हारी कला अद्भुत है लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो डिग्री कैसे मिलेगी? शंकर ने जवाब दिया, सर मुझे लगता है कि कला ही मेरा असली विषय है, मैं इसी में अपना भविष्य बनाना चाहता हूँ। अंततः शंकर ने अपनी डिग्री तो पूरी कर ली, लेकिन उनके मन में स्पष्ट था कि उन्हें एक कलाकार बनना है, किसी ऑफिस में बाबू नहीं। 1920 के दशक के अंत में जब शंकर की उम्र लगभग 25-26 साल की थी, उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने गांव और परिवार को छोड़कर मुंबई जाने का फैसला लिया। उस समय मुंबई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर था और यहाँ अवसरों की कमी नहीं थी।
5: लेकिन ये निर्णय इतना आसान नहीं था। उनके पिता चाहते थे कि शंकर कोई सरकारी नौकरी कर ले और परिवार को आर्थिक सहारा दे। माँ को डर था कि बड़े शहर में उनका भोला भाला बेटा कैसे रहेगा, लेकिन शंकर ने अपने सपनों को पूरा करने की तो ठान ली थी।
6: है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के यह बॉम्बे मेरी जान।
5: मुंबई पहुँचने पर शंकर के पास बहुत कम पैसे थे। वे दादर के एक छोटे से कमरे में रहने लगे जहाँ तीन और लोग रहते थे। कमरा इतना छोटा था कि चारों लोगों के बिस्तर फर्श पर एक के बाद एक लगाने पड़ते थे। शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। शंकर को रोजगार नहीं मिल रहा था। उन्होंने कई जगहों पर अपने चित्र दिखाए लेकिन किसी ने भी उन्हें उस वक्त काम नहीं दिया।
3: एक समय ऐसा आया जब उनके पास खाने के पैसे भी नहीं बचे। उन दिनों की याद करते हुए शंकर ने बाद में कहा था, मुंबई की सड़कों पर मैंने भूख का असली मतलब समझा, लेकिन हर भूखी रात के बाद मुझे लगता था कि अगली सुबह जरूर कुछ बेहतर होगा। जब हालात बहुत बिगड़े तो शंकर को जीवन चलाने के लिए कोई भी काम करना पड़ा। उन्होंने पहले एक कपड़ा मिल में क्लर्क की नौकरी की। काम बहुत नीरस था। रोज लेजर में आंकड़े दर्ज करने होते थे, लेकिन वेतन नियमित मिलता था और कम से कम पेट भर भोजन तो हो ही जाता था।
5: जी हाँ, और मिल में काम करते हुए भी शंकर ने अपनी कला का अभ्यास जारी रखा। शाम को काम के बाद वे अपने छोटे से कमरे में घंटों स्केच बनाते रहते थे। वे मुंबई की सड़कों पर घूमते, लोगों को देखते और उनके चेहरों को अपनी ड्राइंग बुक में उतारते थे। इसके बाद उन्होंने रेलवे में भी कुछ समय काम किया। ये नौकरी थोड़ी बेहतर थी क्योंकि इसमें कभी कभार यात्रा करने का मौका मिलता था। ट्रेन में बैठकर शंकर विभिन्न यात्रियों के चित्र बनाते। किसान, व्यापारी, छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं, हर चेहरे में एक कहानी होती थी और शंकर उस कहानी को पकड़ने की पूरी कोशिश करते थे।
3: 1932 का साल शंकर के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बना। एक दिन उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध अखबार द फ्री प्रेस जर्नल के दफ्तर जाने का साहस किया। उन्होंने अपने कुछ बेहतरीन कार्टून एक फाइल में रखे और संपादक से मिलने की इच्छा जताई।
5: रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन शंकर ने हिम्मत नहीं हारी। वे पूरे दिन वहां बैठे रहे। शाम को जब संपादक बाहर निकले तो शंकर ने उनके सामने अपनी फाइल रख दी। संपादक ने कहा, तुम्हारी कला में दम है लेकिन कार्टून बनाना सिर्फ अच्छी ड्रॉइंग नहीं है, इसमें समाज को समझना पड़ता है, राजनीति को समझना पड़ता है और सबसे जरूरी व्यंग को समझना पड़ता है। क्या तुम ये कर सकते हो?
3: शंकर ने जवाब दिया, सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। संपादक ने कुछ सोचा और फिर बोले, ठीक है, अगले हफ्ते मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक बैठक है, जिसमें पानी की कमी के मुद्दे पर चर्चा होगी। इस पर एक कार्टून बनाकर लाओ। शंकर ने पूरे हफ्ते मेहनत की। उन्होंने अखबार पढ़े, पानी की समस्या को समझा और एक शानदार कार्टून बनाया जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर को प्यासे मुंबई वासियों से घिरे हुए दिखाया गया था, जबकि कमिश्नर खुद नारियल पानी पी रहे थे।
5: क्या बात है। और जब शंकर ये कार्टून लेकर गए तो संपादक बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बधाई हो शंकर, तुम्हारा ये कार्टून कल के अखबार में छपेगा। और अगले दिन जब शंकर ने अपना पहला प्रकाशित कार्टून देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वर्षों के संघर्ष के बाद उनकी मेहनत रंग ला रही थी। द फ्री प्रेस जर्नल में शंकर के कार्टून नियमित रूप से छपने लगे। शुरुआत में उन्हें प्रति कार्टून कुछ रुपए मिलते थे, जो उनकी रेलवे की नौकरी से ज्यादा नहीं थे, लेकिन संतुष्टि उन्हें बहुत मिलती थी।
3: धीरे धीरे शंकर के कार्टून मुंबई में चर्चा का विषय बनने लगे। लोग सुबह अखबार खोलते और सबसे पहले शंकर का कार्टून देखते। उनके कार्टूनों में समाज की विसंगतियां, राजनीतिक पाखंड और ब्रिटिश शासन की नीतियों पर तीखा व्यंग होता था। 1930 के दशक में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। शंकर ने अपनी कला को इस राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। उनके कार्टून ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को उजागर करते थे।
5: जी हाँ, और एक बार तो उन्होंने एक कार्टून बनाया जिसमें ब्रिटिश वायसराय को एक विशाल हाथी के रूप में दिखाया गया था, जो भारत के गरीब किसानों को कुचल रहा था। ये कार्टून इतना प्रभावशाली था कि ब्रिटिश अधिकारियों ने अखबार के संपादक को धमकी तक दे दी, लेकिन संपादक ने शंकर का साथ दिया और कहा कि कला की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कॉमन मैन का जन्म एक ऐतिहासिक पल। 1930 के दशक के मध्य में शंकर ने अपने सबसे प्रसिद्ध कार्टून चरित्र कॉमन मैन की रचना की। ये विचार उन्हें कैसे आया, इसके बारे में भी एक बेहद दिलचस्प कहानी है।
3: एक दिन शंकर मुंबई की सड़क पर चल रहे थे। उन्होंने देखा एक साधारण आदमी धोती कुर्ता पहने, चश्मा लगाए, थोड़ा गंजा, बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, न खुशी न गम, बस एक शांत स्वीकृति कि जो होना है वो होगा। शंकर ने सोचा कि ये चेहरा तो करोड़ों भारतीयों का चेहरा है, वो आम आदमी जो हर रोज संघर्ष करता है, सरकारी दफ्तरों में धक्के खाता है, महंगाई से परेशान होता है, राजनेताओं के वादे सुनता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता।
5: बिल्कुल। जब शंकर ने पहली बार इस चरित्र को कार्टून में इस्तेमाल किया तो पाठकों की प्रतिक्रिया अद्भुत थी। लोगों ने लिखा, ये तो मैं हूँ, ये मेरे पिता हैं। और कईयों ने लिखा, ये तो हर भारतीय है। कॉमन मैन भारत के आम आदमी का प्रतीक बन गया। शंकर के हर कार्टून में ये चरित्र किसी न किसी रूप में दिखाई देता। कभी महंगाई से परेशान, कभी भ्रष्ट नेताओं से पिसता, कभी सरकारी योजनाओं का इंतजार करता और कभी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में डूबा हुआ।
3: आज 80 साल बाद भी कॉमन मैन भारतीय कार्टून का सबसे पहचाना जाने वाला चरित्र है। जैसे जैसे शंकर की ख्याति बढ़ी, अन्य अखबारों ने भी उन्हें काम के लिए बुलाया। 1948 से पहले शंकर ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी काम करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर कार्टून बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके कार्टून बहुत चर्चित रहे। हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल सभी शंकर के कार्टूनों में नजर आते थे।
5: बिल्कुल, लेकिन शंकर का असली फोकस भारत की समस्याओं पर था। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सब उनके कार्टूनों के विषय थे, लेकिन उनके कार्टून कभी नकारात्मक नहीं होते थे। उनमें हमेशा एक आशा की किरण होती थी, एक विश्वास की भारत बेहतर होगा। 1940 के दशक में जब भारत स्वतंत्रता के करीब पहुंच रहा था, शंकर के कार्टून और भी तीखे और प्रभावशाली हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके कार्टून ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मौन लेकिन शक्तिशाली हथियार बन गए थे।
3: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेता शंकर के कार्टूनों की सराहना करते थे। गांधी जी ने एक बार कहा था, शंकर का कार्टून हजार शब्दों से ज्यादा प्रभावी है।
5: और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ये शंकर के जीवन का भी एक नया अध्याय था। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अपनी एक पत्रिका शुरू करनी चाहिए जो पूरी तरह से कार्टून और व्यंग पर आधारित हो। इसके लिए पैसों की जरूरत थी। शंकर ने अपनी कुछ जमा पूंजी लगाई और कुछ मित्रों से उधार ले लिया। 1948 में उन्होंने शंकर्स वीकली नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत कर दी। पहला अंक छपा तो शंकर की धड़कनें और तेज हो गईं। क्या लोग इसे पसंद करेंगे? क्या ये बिकेगी? उनकी सारी पूंजी दांव पर लगी थी।
3: लेकिन उनकी चिंता निराधार निकली। पहला अंक हाथों हाथ बिक गया। लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की। अखबारों में समीक्षाएं छपी। एक नई तरह की पत्रिका, व्यंग का अद्भुत नमूना। शंकर ने भारतीय पत्रकारिता में नया अध्याय जोड़ा। शंकर्स वीकली जल्दी ही भारत की सबसे लोकप्रिय पत्रिकाओं में से एक बन गई। हर सप्ताह लाखों लोग इसका इंतजार करते थे। पत्रिका केवल कार्टून नहीं थी, इसमें राजनीतिक व्यंग, सामाजिक टिप्पणी, कहानियां, कविताएं और बच्चों के लिए एक अलग ही सेक्शन होता था।
5: और पत्रिका का एक विशेष आकर्षण यू सेड इट कॉलम था, जिसमें प्रसिद्ध लोगों के विरोधाभासी बयानों को एक साथ रखकर व्यंग किया जाता था। राजनेता जो आज कुछ कहते थे और कल उसके उलट बोलते थे, उनके दोनों बयान को एक साथ छापा जाता था। ये बेहद लोकप्रिय था और राजनेताओं को सावधान रहने पर मजबूर भी करता था। पत्रिका में नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मुरारजी देसाई सभी के कार्टून छपते थे, लेकिन शंकर का व्यंग कभी व्यक्तिगत नहीं होता था। वे नीतियों और कार्यों पर टिप्पणी करते थे, व्यक्तियों पर हमला नहीं करते थे।
3: पंडित जवाहरलाल नेहरू और शंकर पिल्लई के बीच एक अनोखा रिश्ता था। नेहरू शंकर के कार्टूनों के बड़े प्रशंसक थे, हालांकि उनमें अक्सर खुद नेहरू का मजाक बनाया जाता था। एक बार शंकर ने एक कार्टून बनाया जिसमें नेहरू को दिखाया गया था कि वे एक साथ बहुत सारी चीजें संभालने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ उनके हाथ से गिर रहा है। ये उनकी अति व्यस्तता पर व्यंग था। जब ये कार्टून छपा तो नेहरू के कुछ करीबी सहयोगियों ने उन्हें शिकायत की कि शंकर बहुत ज्यादा आजादी ले रहे हैं, लेकिन नेहरू ने हंसते हुए कहा, शंकर बिल्कुल सही कह रहा है, मैं वाकई बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका कार्टून मुझे याद दिलाता है कि मुझे प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए।
5: जी हाँ, और एक और दिलचस्प किस्सा है। एक बार नेहरू ने शंकर को 3 मूर्ति भवन प्रधानमंत्री निवास में बुलाया। शंकर घबराए हुए थे कि शायद किसी कार्टून पर आपत्ति होगी, लेकिन नेहरू ने मुस्कुराते हुए कहा, शंकर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारे कुछ कार्टून बहुत पसंद आए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी मूल प्रतियां मुझे दे दो। मैं उन्हें अपने कमरे में लगाना चाहता हूँ। क्या था, शंकर हैरान रह गए। प्रधानमंत्री अपने ही मजाक उड़ाने वाले कार्टून अपने कमरे में लगाना चाहते हैं। नेहरू ने समझाया, ये कार्टून मुझे याद दिलाते हैं कि मैं भी एक साधारण इंसान हूँ और आम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
3: शंकर भी नेहरू के विजन की सराहना करते थे, हालांकि उनके कार्टूनों में नेहरू की आलोचना जारी रहती थी। नेहरू जी की मृत्यु के बाद शंकर ने एक बहुत मार्मिक कार्टून बनाया जिसमें कॉमन मैन नेहरू की तस्वीर के सामने सिर झुकाए खड़ा था और आंखों में आंसू थे। कैप्शन था, गुरु चला गया। ये कार्टून देखकर करोड़ों भारतीयों की आंखें नम हो गईं।
5: शंकर ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो बच्चों के लिए सस्ती और अच्छी किताबें प्रकाशित करे। साल 1957 में उन्होंने चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट CBT की स्थापना की। शुरुआत में काफी मुश्किलें आईं। प्रकाशक कहते थे कि बच्चों की किताबों में पैसा नहीं है, लेकिन शंकर ने तब भी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पैसा लगाया और पहले किताबें प्रकाशित की।
3: CBT की किताबें रंगीन और आकर्षक होती थीं। कहानियां भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित होती थी। कीमत इतनी कम रखी जाती थी कि मध्यम वर्ग का बच्चा भी खरीद सके। धीरे धीरे CBT की किताबें लोकप्रिय हो गईं। आज CBT ने 3000 से ज्यादा किताबें प्रकाशित की हैं और करोड़ों बच्चों तक पहुंची हैं।
5: शंकर खुद भी बच्चों के लिए कहानियां लिखते थे और चित्र बनाते थे, लेकिन शंकर का सबसे बड़ा सपना था बच्चों के लिए एक ऐसी जगह बनाना जहां वे अपनी रचनात्मकता को खुलकर अभिव्यक्त कर सकें, जहां वे कला, संगीत, नृत्य, थिएटर सीख सकें, जहां कोई परीक्षा ना हो, कोई नंबर ना हो, बस सीखने का आनंद हो।
3: 1 नवंबर 1961 को बाल भवन का उद्घाटन हुआ। नेहरू खुद इस कार्यक्रम में आए। उन्होंने अपने भाषण में कहा, शंकर ने जो काम किया है वो केवल एक इमारत बनाना नहीं है, उन्होंने बच्चों के सपनों के लिए एक घर बनाया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा एक बेहतर इंसान बनेगा।
5: बिल्कुल, और बाल भवन में विभिन्न विभाग थे, आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, साइंस और फोटोग्राफी। बच्चे शाम को स्कूल के बाद यहाँ आते और अपनी रुचि की चीजें सीखते थे। शंकर खुद अक्सर बाल भवन आते थे। वे बच्चों से बातचीत करते, उनके चित्र देखते और उन्हें प्रोत्साहित करते। कई बच्चे जो आज सफल कलाकार हैं, उन्हें याद है कि कैसे शंकर अंकल ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा था, बहुत अच्छा बनाया है, ऐसे ही बनाते रहो। बाल भवन की ये सफलता के बाद देश भर में 25 से ज्यादा शहरों में बाल भवन खोले गए। आज भी ये संस्थाएं लाखों बच्चों को कला और शिक्षा दे रही हैं।
3: शंकर ने एक और महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 14 नवंबर को नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का विचार दिया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 में शंकर ने सुझाव दिया, क्योंकि नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और तब से हर साल 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में विशेष कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
5: शंकर्स वीकली में हर साल बाल दिवस पर एक विशेष अंक निकलता था, जिसमें बच्चों की रचनाएं, कहानियां, चित्र छापे जाते थे। देश भर के बच्चे अपनी रचनाएं भेजते थे और चुनी गई रचनाएं पत्रिका में प्रकाशित होती थी। किसी बच्चे के लिए शंकर्स वीकली में छपना बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। शंकर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वे अपने निजी जीवन को मीडिया से दूर रखते थे। उनका विवाह केरल की एक शिक्षित महिला से हुआ था। उनकी पत्नी बहुत संयमी और समझदार थी, जो शंकर के काम को समझती थी।
3: उनकी बेटियों को याद है कि कैसे पिता रविवार की शाम को उनके साथ बैठते और उन्हें चित्र बनाना सिखाते थे। वे बच्चों को कभी दबाव नहीं डालते थे कि वे भी कलाकार बने, बल्कि उन्हें अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनने की आजादी देते थे। एक रोचक बात, शंकर घर पर बहुत सादा जीवन जीते थे। उनके पास महंगी गाड़ी नहीं थी, ना ही बड़ा बंगला। वे दिल्ली के एक साधारण इलाके में मध्यम आकार के घर में रहते थे। उनकी पत्नी रसोई में खुद ही खाना बनाती थीं।
5: शंकर अक्सर देर रात तक काम करते थे और सुबह देर से उठते थे। उनकी पत्नी को ये आदत बहुत परेशान करती थी, लेकिन वो जानती थी कि रात का वो समय जब घर में शांति होती थी, शंकर के लिए सबसे रचनात्मक समय था। शंकर केवल एक कलाकार नहीं थे, वे एक सामाजिक चिंतक भी थे। उन्हें समाज की समस्याओं की गहरी समझ थी। उन्होंने कॉमन मैन को सरकारी दफ्तरों में धक्के खाते हुए अनगिनत बार देखा था और दिखाया भी था।
3: शंकर जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए दंगों ने उन्हें बहुत दुखी किया। उन्होंने कई मार्मिक कार्टून बनाए। महिला सशक्तिकरण में भी उनका विश्वास था। उनके कार्टूनों में महिलाएं कमजोर नहीं दिखाई जाती थीं। उन्होंने कई बार समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर कार्टून बनाए।
5: व्यक्तिगत रूप से शंकर बेहद विनम्र और सरल इंसान थे। उन्हें कोई अहंकार नहीं था। युवा कलाकार जब उनसे मिलने आते तो वे बहुत प्यार से मिलते और उन्हें मार्गदर्शन देते। 1960 और 70 के दशक में शंकर ने विभिन्न देशों की यात्राएं भी की। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय कार्टूनिस्ट सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया भी जाता था।
3: उन्होंने अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों का दौरा किया। हर जगह उनके कार्टूनों की प्रदर्शनी लगाई गई। विदेशी कलाकार उनकी शैली से बहुत प्रभावित होते थे। एक बार लंदन में एक प्रदर्शनी के दौरान एक अंग्रेज कार्टूनिस्ट ने शंकर से कहा, तुम्हारे कार्टून में जो गर्माहट और मानवीयता है, वो पश्चिमी

0: तरुण प्रतियोगिता में जूरी सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया। वहां दुनिया भर के 50 देशों से कार्टूनिस्ट आए थे। शंकर भारत के प्रतिनिधि थे। प्रतियोगिता में एक युवा रूसी कार्टूनिस्ट ने बहुत प्रभावशाली काम प्रस्तुत किया। जब पुरस्कार की घोषणा हुई तो कुछ पश्चिमी जजों ने उस रूसी कलाकार को पुरस्कार देने में आपत्ति जताई, क्योंकि वे सोवियत यूनियन के थे और शीत युद्ध का दौर था। बाद में उस कलाकार ने शंकर से मिलकर कहा, आपने मेरे लिए न्याय किया, मैं आपका आभारी हूं। शंकर ने जवाब दिया, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ सही किया।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में शंकर ने भारतीय राजनीति पर लगातार व्यंग किए। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आपातकाल तक हर महत्वपूर्ण घटना पर उनके कार्टून छपते थे। 1962 के चीनी आक्रमण पर उनके कार्टून बेहद प्रभावशाली थे। उन्होंने भारत की तैयारियों की कमी और सरकार की लापरवाही को दिखाया, लेकिन साथ ही भारतीय सैनिकों के साहस की भी सराहना की।
0: 1977 में जब आपातकाल खत्म हुआ और चुनाव हुए तो शंकर ने एक यादगार कार्टून बनाया, जिसमें कॉमन मैन को मतपेटी के सामने खड़े दिखाया गया था और उसके चेहरे पर संकल्प का भाव था। कैप्शन था, अब मेरी बारी है। ये कार्टून लोकतंत्र की विजय का प्रतीक बन गया।
1: बिल्कुल। और आर के लक्ष्मण, जो आगे चलकर भारत के सबसे प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों में से एक बने, शंकर के ही मार्गदर्शन में आगे बढ़े थे। लक्ष्मण अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, शंकर मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि कार्टून केवल मजाक नहीं है, ये समाज का दर्पण है। अब्बू अब्राहम, मारियो मिरांडा जैसे कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों ने शंकर से प्रेरणा ली। शंकर का स्टूडियो युवा कलाकारों के लिए हमेशा खुला रहता था, कोई भी आकर अपना काम वहां दिखा सकता था।
0: शंकर अक्सर कहते थे, प्रतिभा तो बहुत लोगों में होती है, लेकिन मेहनत और निरंतरता से ही सफलता मिलती है, और सबसे जरूरी है ईमानदारी। अपनी कला के प्रति ईमानदार रहो। शंकर को उनके जीवन काल में कई सम्मान मिले, लेकिन वे इन सम्मानों को अपनी उपलब्धि नहीं बल्कि कला की महत्ता के रूप में देखते थे। 1966 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शंकर से कहा, आपने कला के माध्यम से समाज को दर्पण दिखाया है। ये सम्मान केवल आपकी कला के लिए नहीं बल्कि आपके सामाजिक योगदान के लिए भी है।
1: और तब शंकर ने विनम्रता से जवाब दिया, महोदय ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, ये उन करोड़ों कॉमन मैन का है जिनकी आवाज में अपने कार्टून के जरिए उठाने की कोशिश करता हूँ। साल 1974 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हालांकि उन्हें ये पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन नामांकन ही उनकी प्रतिष्ठा का प्रमाण था।
0: 1980 के दशक में शंकर की उम्र 80 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ था। वे अभी भी नियमित रूप से कार्टून बनाते थे, बाल भवन जाते थे और युवा कलाकारों से मिलते थे। हालांकि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। 1989 में उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन अस्पताल में भी वे अपनी स्केच बुक साथ में रखते। एक बार उनके डॉक्टर ने उनसे कहा, आप अब आराम कीजिए, इतनी उम्र में भी आप काम कर रहे हैं। शंकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, कला करना मेरे लिए काम नहीं है, ये मेरी सांस है, जब तक सांस है तब तक कला रहेगी।
1: और वो दिन 26 दिसंबर 1989 की शाम, जब शंकर ने अपनी अंतिम सांस ली, उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अखबारों में श्रद्धांजलि छपी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश भर के लोगों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा, शंकर जी ने अपनी कला से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया, उनका कॉमन मैन हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि सरकार किसके लिए है। आज देश भर में 25 से ज्यादा शहरों में बाल भवन हैं, जो लाखों बच्चों को कला की शिक्षा दे रहे हैं। दिल्ली का बाल भवन आज भी सक्रिय है और हर साल हजारों बच्चे वहां आते रहते हैं।
0: CBT आज भी बच्चों के लिए किताबें प्रकाशित कर रहा है। 60 साल में इसने 3000 से ज्यादा किताबें प्रकाशित की हैं, जो 100 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। हालांकि शंकर्स वीकली अब प्रकाशित नहीं होती, लेकिन इसने भारतीय व्यंग पत्रकारिता की नींव रखी। आज के कई व्यंग कार्यक्रम और पत्रिकाएं शंकर्स वीकली से प्रेरित है।
1: आज के कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शंकर को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हैं। उनकी शैली, सरल रेखाएं, गहरा संदेश और मानवीय स्पर्श आज भी कलाकारों को बेहद प्रभावित करता है।
0: के शंकर पिल्लई का जीवन एक साधारण केरल के लड़के से लेकर भारत के सबसे प्रतिष्ठित कार्टूनिस्ट और समाज सेवक बनने की अद्भुत यात्रा है। उन्होंने साबित किया कि कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने और बदलाव लाने का शक्तिशाली माध्यम है। बचपन में दीवारों पर कोयले से चित्र बनाने वाला वो बच्चा, जिसकी मां चिंतित रहती थी कि ये शौक पढ़ाई में बाधा ना बन जाए, आखिरकार देश का गौरव बन गया।
1: जी हाँ, मुंबई की सड़कों पर भूखे पेट घूमने वाला वो युवक, जिसने कभी हार नहीं मानी, आजाद भारत की आवाज बन गया। वो कलाकार जिसने अपने कॉमन मैन के जरिए करोड़ों भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया, आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। शंकर पिल्लई केवल एक कार्टूनिस्ट नहीं थे, वे एक दूरदर्शी, एक शिक्षक, एक समाज सुधारक और सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान थे, जो अपने देश और उसके लोगों से बेइंतहा प्यार करते थे।
0: उनका जीवन हमें सिखाता है कि सपने देखो, मेहनत करो, अपनी प्रतिभा को समाज की सेवा में लगाओ और कभी भी अपने मूल्यों से समझौता मत करो। आज भी जब हम कॉमन मैन को देखते हैं, हमें शंकर की याद आती है। वो महान कलाकार जिसने अपनी कला से लाखों दिलों को छुआ और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया। कला जीवन का दर्पण है और कलाकार समाज का प्रहरी। के शंकर पिल्लई। श्रोताओं, तो आज हमने प्रस्तुत कार्यक्रम भारत विभूति में चर्चा की के शंकर पिल्लई जी के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखक अखिलेश कुमार वर्मा और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा।
1: मैं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार भारती।
0: तो दोस्तों, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा। अब ये लोग समझते हैं कि स्त्री एक खाली जमीन है जिसे रौंद कर ये आसानी से जी सकेंगे। गुरुवंश को इस अन्याय की कीमत चुकानी होगी। इन्हीं संवादों के साथ मंगलवार को रंगश्री लिटिल बैलेट ट्रूप में चल रहे 16वें एकता नाट्य समारोह में डॉक्टर शंकर शेष के चर्चित नाटक कोमल गांधार का मंचन किया गया। मंच पर महाभारत की कहानी तो थी, लेकिन केंद्र में एक स्त्री की अस्मिता थी। उसका आक्रोश था, सत्ता के फैसलों की कीमत थी। इस मंचन में नीलिमा रावल गांधारी के रूप में मंच पर आईं। उन्होंने बताया कि गांधारी का व्यक्तित्व को समझने और उसमें ढलने के लिए उन्होंने एक महीने तक महाभारत से जुड़ी किताबें पढ़ी। नाटक का निर्देशन सुमित द्विवेदी ने किया। नाटक की कहानी महाभारतकालीन दौर की राजनीति को सामने लाती है, जहां राजसत्ता व उत्तराधिकारी की चाहत के बीच स्त्री की इच्छा और अस्मिता को दरकिनार कर दिया जाता है। हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी की चाह में गांधार की राजकुमारी गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराया जाता है। विवाह से पहले उसे होने वाले पति के अंधेपन की सच्चाई से अनजान रखा जाता है। सच्चाई सामने आने पर गांधारी का विरोध शोर के रूप में नहीं बल्कि प्रतिज्ञा के रूप में सामने आता है, जो अमर है। जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधने का निर्णय लेती है। यही पट्टी उसके आक्रोश, त्याग और व्यवस्था के प्रति विरोध का प्रतीक बन जाती है, जिसने उसकी इच्छा के बिना उसके जीवन का फैसला किया। नाटक सवाल उठाता है कि क्या किसी स्त्री की इच्छा और अस्मिता को कुचलना उचित है।

अध्यात्म के सहारे युवा मिट्टी और पर्यावरण से जुड़ रहे हैं। मन में श्रद्धा के साथ मिट्टी को गणेश प्रतिमा का आकार देने की कोशिश, वाटर कलर से सजावट के साथ इसे इको फ्रेंडली रखने की चाह, शहर के स्टूडियो और कला केंद्रों में इको फ्रेंडली ट्रेंड नया आया है। ये मुंबई के कलाकारों कला सागर आर्ट्स की तर्ज पर है। अध्यात्म के साथ प्रतिमा तैयार करते हुए युवा मिट्टी से जुड़े हैं। दर्जन भर कला केंद्रों ने इसकी शुरुआत की है। ये पहल कॉलेज से लेकर स्कूल तक दिखी। कला केंद्र में पंचतत्व मॉडर्न आर्ट के साथ यूथ कला केंद्र में इन दिनों युवा जमा हो रहे हैं। माटी गणेश को शिल्प का रूप दिया गया जो पंच तत्वों से मिलाकर तैयार हो रहा है।

स्टूडेंट की सरकार के बीच किसानों का मामला उठा। एक बच्चे ने सवाल उठाया, अध्यक्ष महोदय देश का किसान आज भी अपनी फसल के वाजिब दाम के लिए संघर्ष कर रहा है। परिसीमन का मुद्दा उठा। मौका बच्चों की संसद का था। केंद्रीय विद्यालय में आयोजन हुआ 37वीं संभागीय युवा संसद में प्रदेश के सभी केवी के स्टूडेंट शामिल रहे। केवी 3 ग्वालियर, केवी बंगरसिया और केवी देवास के बच्चों ने शिक्षा नीति पर बात रखी। स्कूल सत्ता पक्ष और विपक्ष में बांटा था। पक्ष विपक्ष के बीच तीख नोकझोंक हुई। वहीं मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मैनेट में 11 से 3 दिवसीय हिंदी महोत्सव तुरीना 26 का आयोजन किया जाएगा। भारतीय संस्कृति, भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए यह वार्षिक महोत्सव है। मैनेट स्टूडेंट शिक्षक तुरीनाथ से जुड़े पदाधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। भारतीय इतिहास को बताने के लिए यहाँ प्रतियोगिताएं होंगी। जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा राष्ट्रीय परिसंवाद चौमासे का शुभारंभ हुआ। लोक कला से जुड़े कलाकार शामिल रहे। दिवासा और गाज माता अनुष्ठानों की संगीतमय प्रस्तुति हुई।

हिंदी का सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा। राजभाषा सप्ताह पर कर्मचारियों ने बैठक में ये बात कही। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के अंतर्गत रेलवे भर्ती बोर्ड में सोमवार को सप्ताह का शुभारंभ हुआ। ये 14 सितंबर तक चलेगा। पहले दिन राजभाषा हिंदी के प्रयोग प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका पर निबंध प्रतियोगिता रही।

शास्त्रीय गायन, नृत्य और ट्रेडिशनल आर्ट से जुड़े प्रतिभावान कलाकार अपनी कला से वाकिफ करा पाएंगे। ये पहल ट्रेडिशनल संगीत से जुड़ी संस्थाओं ने की है। चक्रधर कल्चरल सेंटर द्वारा शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य शो का आयोजन किया जा रहा है। शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में विद्यार्थियों को स्वरोजगार व उद्यमिता से जोड़ने के लिए 9 सितंबर को उद्यमिता शिविर का आयोजन होगा। सौंदर्य सामग्री, क्रोशिया, वर्क हैंडीक्राफ्ट, जरी जरदोजी, होम डेकोर, रेजिन आर्ट, वस्त्र और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टॉल लगाए जाएंगे। फूड स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आयोजन दोपहर 12 से 3 बजे तक रहेगा। कॉलेजों के छात्र स्वनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी व बिक्री करेंगे।

एआई और जेन जी की कार्यशैली और कॉरपोरेट ट्रेनिंग जैसे विषयों पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भोपाल में व्यावसायिक नेटवर्किंग और ज्ञान साझा करने की आवश्यकता पर बात की गई।

और अब बात कुछ आज के कार्यक्रमों के बारे में। एकता नाट्य समारोह में नाटक बाप रे बाप का मंचन होगा। गलतफहमियों, नकली पिताओं व मजेदार घटनाओं से भरपूर नाटक मध्यम वर्गीय परिवार की हास्यपूर्ण कहानी है। ये नाटक खेला जाएगा LBT में शाम 6:30 बजे और इसमें एंट्री फ्री है। अगली बात, द लेगेसी ऑफ लाइट फोटो एग्जीबिशन में मध्य प्रदेश प्राकृतिक नज़ारे, इमारतें, लोक परंपराएं और आयोजन अलग अलग नज़रिए से प्रदर्शित की गई हैं। और इसे देखने के लिए आपको पहुंचना होगा अलियांस फ्रांसिस में, सुबह 10 बजे से शुरू होगी और इसमें एंट्री फ्री है। तो ये थी आज की परिक्रमा। सुनते रहिए FM 90.8 MHz, रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

यूनियन नामक जुड़वा जहाज एक कॉरपोरेट गृह युद्ध की कहानी। क्या आप जानते कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में समुद्र की लहरों पर एक अजीब संयोग देखने को मिला था। दो कट्टर प्रतिद्वंदी कंपनियों के पास दो बिल्कुल एक जैसे जहाज थे और दोनों का नाम था यूनियन। ये जहाज बनाने वालों की कोई गलती या कल्पना की कमी नहीं थी, बल्कि ये जुड़वा जहाज अंग्रेजी मसाला व्यापार के अस्तित्व को बचाने के लिए की गई एक हताशा का प्रतिनिधित्व करते थे। इस भ्रम को समझने के लिए आपको उस कॉरपोरेट गृह युद्ध को देखना होगा जिसने लंदन शहर को दो हिस्सों में बांट दिया था। लगभग एक सदी तक पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्ण एकाधिकार का आनंद लिया था, लेकिन 1690 के दशक तक उन्हें उन राजनेताओं और व्यापारियों ने घेर लिया जो उनके विशेष अधिकारों को एक असंवैधानिक अवशेष मानते थे। क्या आप जानते हैं कि ये प्रतिद्वंदिता कितनी तीव्र थी? दोनों कंपनियों ने केवल काली मिर्च के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ तोड़फोड़ का युद्ध छेड़ दिया। सूरत में नई कंपनी की कौंसिल सर निकोलस वेट ने मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर पुरानी कंपनी के अध्यक्ष सर जॉन गियर को 9 साल तक जेल के एक गंदे छेद में बंद रखा। हिंद महासागर के पार दोनों फर्मों के एजेंटों ने स्थानीय राजाओं के सामने एक दूसरे को चोर और समुद्री डाकू घोषित कर दिया, जबकि उनके कर्मचारी एक दूसरे को कालकोठरी में फेंक रहे थे। लंदन में बैठे निदेशकों ने जब अपने बैंक खातों को देखा तो वे कांप गए। इस आंतरिक युद्ध की लागत अनुमान से अधिक थी। इसके अलावा फ्रांस के साथ एक नया युद्ध वॉर ऑफ द स्पैनिश सक्सेशन करीब आ रहा था और ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि रॉयल नेवी दो विभाजित और झगड़ालू बेड़ों की सुरक्षा का खर्च नहीं उठा सकती। दोनों कंपनियों को एहसास होने लगा कि अगर वे विलय नहीं करती हैं तो दोनों दिवालिया हो जाएंगी। अतीत में उन्होंने स्पीड वेल या ट्रेड्स इंक्रीज जैसे आशावादी नाम चुने थे। अब दोनों ने यूनियन नाम से एक जहाज का निर्माण कराया जो इस बात का संकेत था कि विलय ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अप्रैल 1702 में अंततः इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूनियन पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन यहां सबसे दिलचस्प हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि यूनियन ने वास्तव में भ्रम को समाप्त नहीं किया? 7 साल की संक्रमण अवधि के लिए तकनीकी रूप से एक साथ 3 कंपनियां काम कर रही थी, पुरानी नई और नई बनी यूनाइटेड कंपनी, जो अपने अलग अलग ऋणों को निपटाने की कोशिश कर रही थी और एक ही जहाज साझा कर रही थी। बंगाल में इसने पूर्ण भ्रम की स्थिति पैदा कर दी, जहां दो प्रतिद्वंदी अध्यक्ष हर हफ्ते बारी बारी से गवर्नर की कुर्सी पर बैठते थे। दो जहाज जिनका नाम यूनियन था उस समय के प्रमाण हैं जब व्यापारिक लालच ने एशिया में ब्रिटिश उपस्थिति को लगभग नष्ट कर दिया था। केवल जहाज के पतवार पर लिखा वह हताश नाम उस यूनाइटेड कंपनी की ओर इशारा कर रहा था जो आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य पर राज करने वाली थी।

0: रॉल्फ कॉर्टराइट का अनैतिक व्यवहार और ढहता हुआ व्यापारिक साम्राज्य 1633। क्या आप जानते हैं कि 1633 में रॉल्फ कॉर्टराइट नामक एक अंग्रेजी व्यापारी मसूलीपट्टनम से एक ऐसे मिशन पर निकला था जो बंगाल और उड़ीसा की उपजाऊ भूमि में ईस्ट इंडिया कंपनी का भाग्य निर्धारित करने वाला था। जहां इतिहास इस यात्रा को इसके व्यावसायिक महत्व के लिए याद रखता है, वहीं डच अभिलेखागार में इस घटना का एक कहीं अधिक अपमानजनक संस्करण सुरक्षित है, जिसे एमोरस मिस एडवेंचर अर्थात प्रेमपूर्ण दुस्साहस के रूप में जाना जाता है। कॉर्टराइट का गंतव्य कटक में उड़ीसा के नवाब का दरबार था, आगरा के मुगल शाही केंद्र की कठोर और पूर्व निर्धारित औपचारिकताओं के विपरीत यह प्रांतीय कूटनीति की दुनिया थी। कटक के भव्य महल में कॉर्टराइट ने खुद को एक बेहद आत्मीय माहौल में पाया, जहां वो नवाब से कुछ ही फिट की दूरी पर दरबार के फर्श पर पालथी मारकर बैठा था। व्यापारिक अधिकार सुरक्षित करने के लिए कॉर्टराइट ने आवश्यक रस्में निभाईं। उसने नवाब के पैर चूमे और उपहारों का एक मामूली संग्रह भेंट किया, जिसमें लौंग, जायफल, एक सुनहरा दर्पण और एक दोनाली पिस्तौल शामिल थी। ये मिशन एक बड़ी जीत जैसा लगा। नवाब कॉर्टराइट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे खिलअत यानी सम्मान की पोशाक पहनाई, जिसने प्रतीकात्मक रूप से अंग्रेज को नवाब के सामने सेवा और वफादारी के नेटवर्क में शामिल कर लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कॉर्टराइट एक परवाना हासिल करने में सफल रहा, जिसने अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार करने और हरिहरपुर के बंदरगाह में एक फैक्ट्री बनाने का अधिकार दे दिया। हालांकि बटाविया कैसल में डच द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी के अनुसार ये सफलता कॉर्टराइट के निजी आचरण के कारण नाटकीय रूप से बर्बाद हो गई। जैसे ही हरिहरपुर में अंग्रेजी लॉज का निर्माण पूरा होने वाला था, नवाब ने अचानक पूरी संरचना को नष्ट करने और गिरा देने का आदेश दे दिया। बंगाल की खाड़ी के बंदरगाहों में ये फुसफुसाहट थी कि कॉर्टराइट को फैक्ट्री में अनैतिक व्यवहार के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसका परिणाम त्वरित और गंभीर था। कॉर्टराइट को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और 1,000 रुपए का जुर्माना भरने के बाद ही उसे अपनी आजादी वापस मिली। जहां अंग्रेजी कंपनी के रिकॉर्ड इस विशिष्ट शर्मिंदगी के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं डच प्रशासकों ने इस कहानी को पूरी तरह से विश्वसनीय माना। कॉर्टराइट की यह घटना 17वीं सदी की कंपनी राज्य की एक बुनियादी सच्चाई को दर्शाती है। वैश्विक वाणिज्य अंतर व्यक्तिक संबंधों की नाजुक नींव पर टिका था। प्रांतीय कूटनीति की उस दुनिया में जहां एक व्यापारी की सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी पूंजी जितनी ही महत्वपूर्ण थी, एक अनैतिक व्यवहार एक उभरते व्यापारिक साम्राज्य को घुटनों पर ला सकती थी।
1: अगर आपको 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जाँच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं तप की शांति से दमकती हैं। श्रोताओं, बीते एपिसोड में हमने रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 5, 6 और 7 के साथ उस गहन भाव भूमि को महसूस किया जहां शब्द केवल कथा नहीं कहते, वे भीतर उतरकर आत्मा को स्पर्श करते हैं। वहां कर्ण के स्वर में केवल प्रतिरोध नहीं था बल्कि व्यवस्था से टकराता हुआ एक सच था। जहां ज्ञान उपेक्षित था और जन्म की दीवारें पुरुषार्थ के मार्ग में खड़ी थी, फिर हमने उस मौन साधना को देखा जहां गुरु के स्नेह और शिष्य के समर्पण के बीच कर्ण स्वयं को तपाता है, और अंततः वो क्षण भी जब पीठ

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के।

0: अपने महापुरुषों क्रांति वीरों को याद करने के लिए अब 15 अगस्त या 26 जनवरी का ही क्यों करें इंतजार, जब रेडियो आजाद हिंद रोज सुनाता है उनके जीवन और बलिदान की गाथाएं अपार। आजादी के मूल्यों को समर्पित देश का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो आजाद हिंद, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सारंगी वादन, जिसको प्रस्तुत कर रहे हैं सरवर हुसैन।

तो श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया कार्यक्रम भारत भारती में गायन डॉक्टर मोनिका शाह का, और उसके बाद सारंगी वादन प्रस्तुत किया गया सरवर हुसैन द्वारा। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, हमने तो अभी तक यही सुना था कि जोड़िया ऊपर वाला बनाता है, धरती पर तो केवल उनका मिलन होता है। लेकिन कभी आपने सोचा भी ना होगा कि बेटी का रिश्ता पक्का करते समय कैसी कैसी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, और परेशानी भी ऐसी जो आपकी कल्पना से भी परे हो। तो आइए सुनते हैं हास्य नाटिका बेटी का रिश्ता।
2: अजी सुनते हो, लड़की कब की सयानी हो चुकी है, तुम्हें कुछ दिखाई देता भी है कि नहीं?
3: क्यों, क्या मैं घर में आंखें बंद करके घूमता हूँ?
2: यही तो समस्या है तुम्हारी। अरे आंखें खुली रहती हैं, पर दिखाई कुछ नहीं देता। तुम्हारे सामने से बिल्ली दूध चट कर जाएगी और तुम बैठे अखबार ही पढ़ते रहोगे।
3: देखो देखो मेरे अखबार को किस्मत कहना, तुम्हें पता भी है अखबार आज के जमाने में कितनी अहमियत रखता है, पर तुम क्या जानो। अच्छा जरा बताना तो के हिलेरी क्लिंटन कौन है?
2: अरे ये क्लिंटन मिल्टन को मारो गोली।
3: क्या
2: ये अपनी कंचन को देखो ना, जो पूरन मास के चांद की तरह फुल साइज हो चुकी है। इसकी शादी वादी करनी है कि नहीं?
3: तो तुम क्या सोचती हो, अकेले तुम्हें ही उसकी चिंता है? मैं तो जैसे उसको कुछ लगता ही नहीं हूँ। अरे आदमी और औरत में यही अंतर होता है। औरतें बकबक करके अपनी भड़ास निकालती हैं और आदमी चुपचाप काम करते रहते हैं।
2: अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं कि मौन व्रत रखकर आपने कौन सी तपस्या की है भला? अरे किस महादेव को प्रसन्न किया है?
3: हाँ ये हुई ना मुद्दे की बात। अरे मगर जरा ढंग से तो पूछो। खैर छोड़ो, मैंने शास्त्री जी से बात चलाई है। हाँ? एक लड़का है उनकी नजर में, अच्छा खाता पीता का रहे।
2: अच्छा?
3: हाँ, लड़का भी ढंग का है, एक दो दिन में ही उन लोगों से बात करके बताएंगे वो हमें।
2: अच्छा अच्छा। हाँ? अरे ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है।
3: हाँ।

0: हेलो, अरे पंडित जी प्रणाम। जी। अच्छा, बात हो गई आपकी? फिर क्या, आज ही आ रहे हैं वो लोग? अरे वाह, लड़के के माँ बाप? बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। जी, ठीक है। सुनो
1: जी,
0: पंडित जी ने सब बात जमा दी है।
1: हाँ।
0: आज ही दोपहर लड़के के माँ बाप अपनी कंचन को देखने आ रहे हैं।
1: अरे, हाय हाय, बस किसी तरह बात बन जाए, भगवान को मैं 125 का प्रसाद चढ़ाऊंगी।
2: बस
1: अरे चिंता के मारे मुझे नींद नहीं आती।
0: अरे चिंता छोड़ो, भगवान ने चाहा तो ये रिश्ता तय ही हो जाएगा।
1: हाँ,
0: फिर सोना कुंभकर्ण की तरह पूरे 6 महीने लगातार।
1: मेरा मजाक मत उड़ाओ जी। हाँ, कराटे तुम भरते हो, ऐसा लगता है कि फटी बांसुरी बज रही है, और कुंभकर्ण मुझे कहते हो।
0: फिर शुरू हो गई तुम, ये सब बाद में कर लेना, पहले चलकर तैयारी करो, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए उन लोगों को।
1: अच्छा,

0: सुनो जी, लगता है वो आ गए हैं। तुम दरवाजा खोलो ना।
1: हाँ, हाँ,
0: मैं है ना भीतर जाकर कंचन को देखती हूँ।
1: हाँ,
0: बड़ी लापरवाह लड़की है ना।
1: हाँ, बिल्कुल।
2: मैंने कहा राधे श्याम जी है क्या घर में?
3: अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं। पाय लागो पंडित जी।
2: अरे खुश रहो, खुश रहो यजमान, सब कुशल मंगल से तो है ना।
3: आपकी कृपा है पंडित जी।
2: अच्छा तो मैं परिचय करवाता हूँ।
3: जी जी जी।
2: ये है श्रीमान विद्यापति।
4: नमस्कार।
2: और ये है उनकी धर्म पत्नी।
3: जी जी जी।
0: नमस्ते।
2: और ये है इनके दोनों के सुपुत्र श्री पुष्पेंद्र जी। किराने की दुकान।
3: अच्छा, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, जो आप हमारे यहाँ पधारने का कष्ट किया आपने।
4: अरे अरे कष्ट का है का, अब हमारे पंडित जी का आदेश हुआ और हम हाजिर हो गए।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते।
3: हमारी धर्म पत्नी सावित्री देवी।
4: नमस्ते बहन जी।
3: वो कंचन को बुलाओ जरा अंदर से।
0: अभी बुलाती हूँ। कंचन बेटिया, नाश्ता चाय लेके आ जाओ बेटा।
2: वो देखो आ गई। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। वो देखिए कन्या चली आए रही है, आए रही है। अत्यंत सुशील और गुणवंती कन्या है हमारी। और एक बात बताऊं, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है।
4: शास्त्री जी, वो तो देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल माँ पर गई है।
5: जी नमस्ते।
4: नमस्ते बेटा।
2: कितनी सुशील संस्कारी लड़की है, देखा बिटिया खड़ी क्या हो। अरे मेहमानों को नाश्ता परोसो भैया।
5: जी पंडित जी। जी ये समोसे खाइए।
2: बिटिया ने ही बनाए हैं।
4: अच्छा।
2: अरे बेटा ये मिठाई भी तो दो, इतना कुछ तुमने बनाया है, दो लीजिए। अरे यजमान आप भी लीजिए।
4: शास्त्री जी एक बात पूछें।
2: हाँ,
4: कन्या क्या समोसा और मिठाई खाती है?
2: तो विद्यापति जी,
4: जी
2: कैसी लगी हमारी कन्या आप लोगों को?
4: पंडित जी जरा हम चर्चा करके बताते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपको एक दिन का रिश्ता तो है नहीं भाई, पूरी जिंदगी का सवाल है भाई। पहले हमारे जमाने में तो ना ही जाता था भाई, रिश्ता तय कर कर आ जाता था और विवाह हो जाता था। लेकिन आजकल वो क्या कहते हैं, हाँ कंप्यूटर का जमाना है ना। कहने का मतलब ये कि अगर लड़का और लड़की यानी कि कन्या और आपका बिटवा आपस में बातचीत करना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
4: नहीं नहीं नहीं पंडित जी, लेकिन हमें आपत्ति है। अकेले वकेले में बात करने का संस्कार हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है पंडित जी। हमारा बेटा तो बिल्कुल श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार। जो माँ बाप कहेंगे वही करेगा। बस जरा हम पप्पू की माँ से बात कर लें।
2: अब आपस में आप लोग राय सुमारी कर लीजिए भाई, तब तक हम लोग बगल के कमरे में बैठकर थोड़ी गप शप कर लेते हैं।
4: जी जी, हाँ, जी, जी।
2: आइए जिजमान, आइए। हम आ जाएं?
4: अवश्य अवश्य, पधारिए पधारिए।
2: हाँ तो बताइए विद्यापति जी, क्या फैसला है आप जनों का?
4: अब वो हमारी,
6: देखिए पंडित जी, लड़की तो पसंद है हम लोगों को, पर कुछ बातें हैं जो साफ हो जाएं तो अच्छा है।
0: हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल। दान दहेज की बात तो साफ ही होनी चाहिए, अब बात को कुछ ऐसा।
6: अरे नहीं नहीं बहन जी, दान दहेज का तो हमारे यहाँ चलन ही नहीं है। पर
0: देखिए देखिए, सकुचाइए मत, निसंकोच बोलिए जो भी मन में है।
6: अब देखिए तो महंगाई तो आप लोग देख ही रहे हैं, किस कदर सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में
3: बहन
6: तो...
3: जी बहन जी बेफिक्र रहें आप, महंगाई की आज हम शादी पर नहीं आने देंगे। हाँ, अगर आप लोग बारात वगैरह सादगी के साथ लेकर आना चाहते हैं तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।
4: नहीं नहीं भाई साहब नहीं, बात दरअसल वो नहीं है, बात तो ये है कि...
6: रुकिए आप, रुकिए जरा भाई साहब
3: जी।
6: हम लोगों को लड़की के बारे में एक बात पूछनी है।
0: बहन जी एक क्यों, 100 पूछिए ना।
6: जी वो ये है कि लड़की की खुराक
3: जी?
6: मतलब कि वो लड़की रोटी कितनी खाती है।
4: रोटी रोटी रोटी,
6: अब देखिए भी आप भी, राशन के भाव इतने बढ़ गए हैं तो ये बात तो साफ होनी ही चाहिए ना कि लड़की रोटी कितनी खाती है। आखिर देखिए कोई एक दिन का तो खिलाना नहीं है ना हमें।
4: अरे हाँ बहन जी, आजकल तो देखिए ना, कोई भी चीज घर में लाने से पहले ये पता किया जाता है कि उसकी खुराक कितनी है। आजकल इलेक्ट्रिक के सामान भी स्टार रेटेड खरीदे जाते हैं जिससे कि वो बिजली की कम खपत करे। लोगों ने बल्ब से तौबा कर ली है, बल्ब से तौबा, CFL से नाता जोड़ लिया है। आखिर इसीलिए ना कि बल्बों की खुराक बहुत ज्यादा थी। और तो और अब गाड़ियां भी खरीदने से पहले ये देखा जाता है कि इनका ओवरेज क्या है।
6: एवरेज?
4: अरे श्रीमान ये चीजें तो फिर भी बदली जा सकती हैं, पर लड़की
3: जी हमने तो कभी अपनी बेटी की रोटी गिनी नहीं। पर अब आप लोग कह रहे हैं तो हम हिसाब लगाकर बताते हैं। 2 मिनट का वक्त देंगे हमें आप?
4: अरे 2 मिनट का नहीं श्रीमान जी, 10 मिनट का समय देंगे, 10 मिनट का। बिल्कुल बिल्कुल, आंकड़ा मिलने में भले ही देर हो जाए पर मिले तो बिल्कुल सही मिले। वो क्या है ना कि अगर आंकड़ा ही गलत हो जाए तो सारा का सारा हिसाब ही गड़बड़ा जाता है। पता चला बजट था 1000 रुपए का और खर्च बैठ गया 2000, तो बाकी चीजें तो गड़बड़ हो जाएंगी ना।
3: आप कहो तो हम अपनी धर्मपत्नी से भीतर जाकर चर्चा कर लें।
4: बिल्कुल श्रीमान, बिल्कुल श्रीमान, अवश्य चर्चा कर लें।
3: चलो आओ। अब क्या बताएं लोगों को, अपनी बेटी की खुराक पूछ रहे हैं। अरे तुमने भी तो लाड प्यार में कभी ध्यान नहीं दिया, मनुहार करके खिलाती गई और उसकी खुराक बढ़ती।
0: मुझे क्या मालूम था कि लड़की ब्याहने में ये बताना पड़ेगा कि कितनी रोटी खाती है। खाने का ठिकाना नहीं और चले हैं बहू ब्याहने। अरे मैं तो कहती हूँ कि इस रिश्ते को मना ही कर दो। अरे ये लोग हमारी बेटी को भूखों मार डालेंगे, गिन गिन कर रोटी खिलाएंगे और नाप तोल कर चावल दाल, और ये सब्जी तो सोने की तरह तोले में तोल कर देंगे।
3: धीरे बोल भाई, कहीं तेरी कटर कटर सुन लिए तो आया रिश्ता हाथ से निकल जाएगा।
0: अरे तो जाने दो ना। हाँ अच्छा ये होगा, हमें मुंह खोलकर नहीं कहना होगा। अरे ऐसी शादी से तो लड़की कुंवारी ही भली, कम से कम अपने घर में भरपेट खाना तो खाएगी बेचारी।
3: तो जैसे इंसान खाने के लिए ही आता है दुनिया में।
0: अरे खाने के लिए तो नहीं आता, मगर बिना खाए रहा भी तो नहीं जा सकता है? साल भर में एक शिवरात्रि का व्रत तो तुम कर नहीं पाते
3: है?
0: है? और लड़की को कहते हो कि सालों साल शिवरात्रि में।
3: अरे पागल है तू,
0: क्यों
3: एक बार शादी तो हो जाए, फिर तो वही रहेगी घर की मालकिन है? अरे बुढ़िया ही तब इससे मांग के खाएगी। अभी बटर चटर कर रही है ना, फिर अपनी रोटी गिनेगी बुढ़िया।
0: रहने दो, देखा ना कैसी भोंदू औलाद पैदा की है उसने।
3: अरे बड़े बड़े भोंदू भी ना जब एक बार औरत के पल्लू से बन जाते हैं तो समझदार हो जाते हैं, जैसे मैं। हाँ अपना ही मामला देख लो ना तुम। अच्छा छोड़ो ये सब, तुम तो ये बताओ कि खुराक कितनी बतानी है।
0: अरे कितनी क्या बतानी है, जितना खाती है उतना बता दो।
3: अच्छा रिश्ता तोड़वाना है क्या तुझे? अरे पूरे खानदान को सांप सूंघ जाएगा जैसे ही वो सुनेंगे कि 9 रोटी और 1 कटोरा चावल खाती है तेरी लड़की।
0: अरे तो फिर क्या करें?
3: एक काम करते हैं।
0: हाँ।
3: चावल तो पूरा ही उड़ा देते हैं।
0: अरे
3: हाँ, और 1 रोटी भी कम कर देते हैं, इतने पर तो माने जाएंगे बोलो।
0: ठीक है
3: हाँ।
0: अब जैसा तुम ठीक समझो वैसा बोल दो।
3: चलो चलो बाहर चलो।
0: चलो।
4: आइए श्रीमान, आइए आइए आइए।
3: भाई साहब वो क्या है ना कि हमारी लड़की एक टाइम में लगभग 8 रोटी खाती है। जी पतली पतली पतली पतली है, मगर अगर चावल साथ में हो तो एक आध रोटी कम भी हो सकती।
4: चावल भी?
3: जी।
0: क्या कह रहे हैं भाई साहब, 8 रोटी?
3: जी।
6: अरे भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा है,
3: हैं?
6: आज के महंगाई के जमाने में 8 रोटी? हाँ, अपने मायके में हमने भी खाई है कभी 10-12 रोटियाँ।
3: जी,
6: जी। पर जब से हम ब्याह कर ससुराल आए हैं ना,
3: हाँ?
6: अब तो आदत सी हो गई है। अरे 2-3 के बाद तो पेट ही हमारा बगावत कर देता।
3: हाँ, ठीक कहती बहन जी आप, बहुत ठीक। जब घर गृहस्थी का बोझ सर पर पड़ता है तो कहाँ होश रहता है रोटी सोटी का, फिर तो दूसरों को खिलाकर ही पेट भर जाता है। आपकी बहू भी एडजस्ट हो जाएगी धीरे धीरे।
6: नहीं नहीं भाई साहब, बात साफ हो जाए तो अच्छा है, है ना? नहीं तो आप कहेंगे कि भूखे मार डाला हमारी बेटी को। जितना तय हो जाएगा ना उससे पीछे हरगिज नहीं हटेंगे हम लोग, जमान के पक्के हैं। लेकिन
3: क्या क्या कहते हो जी, कुछ गुंजाइश हो तो तुम बता दो। सुन रही हो तुम? आखिर तुम माँ हो, तुमसे ज्यादा कौन समझता है अपनी बेटी को।
0: बहन जी 7 रोटी दे दीजिएगा। हाँ। देखो इससे कम तो नहीं, बेचारी भूख ही मर जाएगी ना। हाँ कभी देखो चावल मिल जाए ना तो एक रोटी और कम कर सकती हैं। पर अरे नहीं नहीं बहन जी ये तो बहुत ज्यादा है। अब मुझे ही देखिए ना, दुगना वजन है आपकी बेटी से पर खुराक 4 रोटियों में ही सिमट गई है जैसे। अरे पुराना जमाना और था, सस्ताई हुआ करती थी तब। 1 रुपए किलो गेहूं मिलता था और 2 रुपए किलो चावल। मगर आज अरे सुनते हैं आबादी ऐसी ही बढ़ती रही ना तो बस अमीर लोग ही खाएंगे रोटी और चावल, और हम आप जैसे लोगों को गेहूं का भूसा और चावल की भूसी उबाल कर खानी पड़ेगी चटनी के साथ।
1: अच्छा अच्छा बहन जी ऐसा करिए, एक काम करिए, 6 रोटी अब फिक्स कर लेते हैं। देखो है ना, देखो 2 रोटी का डिस्काउंट भी ज्यादा नहीं होता है ना।
3: हाँ बहन जी
1: है ना।
3: हाँ जी हाँ, 8 में 2 का डिस्काउंट मतलब कितना है? 25%।
1: हाँ
3: 25%, इतना तो सेल में भी मिल जाता है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
6: अरे क्या बात करते हैं भाई साहब
3: जी,
6: 50% तक का डिस्काउंट उठाया है हम लोगों ने। अरे बार्गेनिंग करने वाला होना चाहिए, सब होता है।
3: पर बहन जी देखिए, हमने कोई बार्गेनिंग वाला भाव नहीं बताया है आपको, बहुत सोच समझ कर बताया है आपको हमने। ये तो जी हाँ,
6: देखिए भाई साहब, हम तो भाई 3-4 रोटी वाली लड़की ढूंढ रहे हैं।
3: क्या
6: इससे ऊपर की गुंजाइश नहीं है हमारी?
1: अरे
6: हाँ, कमाऊ लड़की होती तो और ज्यादा पर भी कंसीडर कर लेते।
7: हाँ एडजस्ट कर लेंगे।
4: अबे चुप है।
2: अब देखिए यजमान, मुझे बीच में बोलना ही पड़ेगा। भाई देखिए, आप लोग भी ऐसे कसम खाकर नहीं निकलते बेटा ब्याह में। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बीच का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। मतलब ये राधे राधे 4 और 6 के बीच में का, मतलब कि 5 का आंकड़ा फिक्स कर लेते हैं। देखो अब कोई कुछ नहीं, नहीं शांत, मतलब ना आपकी और ना हमारी। क्यों यजमान?
6: अब पंडित जी, अब आप इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो मैं 5 रोटी तक आने को तैयार हूँ।
2: जैसे
6: इससे आगे बिल्कुल नहीं, या तो हाँ या फिर ना। और हाँ अगर साथ में चावल भी हुआ तो फिर 1 रोटी कम हो जाएगी थाली में। अब आप सोच समझ के फैसला सुना दीजिए।
3: क्या कहती हो जी, क्या 5 रोटी में लड़की गुजर कर सकेगी? अब बात यस या नो की है, बार्गेनिंग की गुंजाइश अब खत्म।
1: अच्छा जी आप क्या कहते हो?
3: ठीक है।
1: हाँ ना।
3: हाँ हाँ
1: हाँ, तो फिर ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी, 5 रोटी पर रिश्ता पक्का समझो।
8: थैंक यू मम्मी, अब मेरा रिश्ता पक्का हो गया, अब मेरी शादी हो ही जाएगी।

0: रोटी की तय शर्तों के अनुसार बाकायदा एग्रीमेंट तैयार करके दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हो जाते हैं, जिससे बाद में किसी झंझट की गुंजाइश ना रहे। वो कहते हैं ना, ना सौ बका ना एक लिखा। इसलिए लिखा पढ़ी के साथ बात पक्की करना जरूरी समझा गया। यह एग्रीमेंट वर पुष्पेंद्र और कन्या कंचन के बीच हुआ, जिस पर गारंटर के रूप में उनके माता पिता और गवाह के रूप में पंडित जी ने हस्ताक्षर किए। लड़की ब्याह कर ससुराल आ गई। और अब सुनिए आगे की दास्तान।
1: सुनो जी, मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा है। यहाँ पर भूख के मारे दिन भर चक्कर आते रहते हैं। 9-10 रोटी खाती थी मैं अपने मायके में, और यहाँ सिर्फ 5 रोटी, बिल्कुल आधी खुराक मिल रही है मुझे यहाँ पर।
2: मैं सब समझता हूँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मेरे पास ढेरों हिट फॉर्मूले हैं, कल से बिल्कुल फुल डाइट मिलेगी तुझे।
1: जी, वो कैसे?
2: अरे तू आम का पेड़ गिर कर क्या करेगी, अब खुश?
0: पुष्पेंद्र की योजना के अनेक अंग थे। वह दोपहर के टिफिन के लिए 2 रोटी ज्यादा मांगने लगा, और जिसे धीरे से अपनी पत्नी कंचन को सरका देता। दुकान से आता तो जेब में किशमिश और काजू भर के लाता और कंचन की झोली में डाल देता। कभी कभी चोरी से समोसे और कचौड़ियां भी लेकर के आता, मगर बड़ी सावधानी से। पर उसकी माँ की सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज थी। आखिर कब तक बचते वे? एक दिन की बात है।
3: बहू, ये तेरे

0: वो क्या है ना माँ जी, कि ये अपने लिए कचौरी लाए थे, उसी में से बस थोड़ी सी मुझे चखा दी और बोले, झूठा खाने से ना पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है।
1: बहुत अच्छे। शादी के बाद हमारा सबन कुमार भी अब सही बात है, बिल्कुल। जवान बीबी के आगे मां लगती कहाँ है, मगर मैं नहीं छोड़ने वाली। बुलाती हूँ तेरे बाप को अभी।
0: माफ कर दीजिए माँ जी, एक काम करिएगा, शाम को एक रोटी कम दे दीजिएगा ना मुझे, वो एग्रीमेंट वाला ही एवरेज बैठ जाएगा ना फिर।
1: अच्छा, और बदले में तू फिर 2 कचौरियां और नीचे उतार लेगी
0: नहीं नहीं
1: है?
0: माँ जी,
1: ये तो वही बात हुई कि रोजा छुड़ाने चले थे, नमाज गले पड़े
0: माँ जी,
1: है? कहां मैं रोटियों की किफायत किए जा रही हूँ और कहां ये समोसे और कचौरियां गटकी जा रही हैं। हे भगवान, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष दूं मैं? अजी सुनते हो,
2: क्या है?
1: इस शादी में बड़ा ही धोखा हुआ है हमारे साथ। मटके जैसा पेट है बहू का। काम निकालने के लिए एग्रीमेंट तो साइन कर लिया उन लोगों ने, मगर अब इसे रद्दी का कागज समझकर उड़ा रहे हैं।
2: तेरा मतलब क्या है? खुलकर कुछ बोल तो सही। अरे रोटियां तो तू ही गिनकर देती है ना उसे। अब मटके जैसा पेट हो या हंडे जैसा, क्या फर्क पड़ता है? माल तो उसमें उतना ही पहुंचता है ना जितना तू डालती है।
1: कान को दाएं से पकड़ो चाहे बाएं से, कान तो पकड़ा रहा है ना, रोटियां ना सही, कचौरियां ही सही।
2: है?
1: हाँ, आखिर खर्च तो पैसा ही होता है। ये तुम्हारा श्रवण कुमार आजकल छुप छुप कर कचौरियां खिलाता है, समोसे खिलाता है अपनी छम्मक छल्लो को। हाँ, ये तो और ही मजे हो गए, सूखी रोटियां छोड़कर तरमाल गटकी जा रही है। माँ के लिए कभी मूंगफली नहीं लाया पप्पू, और बीवी के लिए कचौरियां समोसे।
2: अरे
1: अरे
2: भगवान, मामला बड़ा गंभीर है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस बनता है इसमें। एक काम करता हूं, आज ही एक लीगल नोटिस दिए देता हूं बहू को, एंड कॉपी टू हर पेरेंट्स।
1: ये तुम्हारी कानूनी बोली समझ में नहीं आती जी मुझे, मेरी बोली में बताओ कि तुम करोगे क्या।
2: अरे भगवान, केस करूंगा, केस बहू पर और उसके मायके वालों पर। हर्जाना वसूलूंगा, हर्जाना। अरे मजाक थोड़ी ही है, कागज पर किए गए समझौते से पीछे हटना। अभी फोन करता हूं वकील साहब को। हाँ हेलो। वकील साहब कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूं। अरे कुछ नहीं जनाब, वो पुष्पेंद्र की शादी का एग्रीमेंट तो आपको याद है ना? हैं? अरे आप ही ने तो ड्राफ्टिंग की थी उसकी। अरे अब उसका वायलेशन शुरू हो चुका है, वायलेशन। हाँ, बहू रोटियां तो एग्रीमेंट के हिसाब से ही खाती है, पर ऊपर से कचौरी डकार लेती है। अब कचौरियां तो एग्रीमेंट में लिखी नहीं है। हैं? क्या कहा आपने? कचौरियां मिलती कहां से? अरे अपना वो पप्पू चप्पू चला रहा है। अरे अपनी लालायक औलाद देती उसे लाला कर। क्या कहा आपने? हैं? केस नहीं बनता। अरे वकील साहब, मगर क्यों? लो।
1: क्या बोल रहे थे वकील साहब?
2: अरे भगवान, कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट की पार्टियां तो हमारे बहू बेटे ही हैं, हम कौन लगते हैं इसमें? अरे जब वे ही मिलकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहें तो गारंटर कुछ नहीं कर सकते। हमारे बेटे की मर्जी के बगैर कचौड़िया बहू खाती, तब जाकर कोई केस बनता।
1: मतलब हम यूं ही अपना घर लूटते देखते रहें और कुछ ना बोले?
2: बिल्कुल कुछ ना बोलो भगवान, कुछ ना बोलो। ऐसा नहीं है, अपने लड़के को तो समझा सकते हैं ना हम, मगर उसके बगैर हम बिल्कुल लाचार हैं, बिल्कुल लाचार।
1: क्यों रे पप्पू, जब कचौरियां ही खिलानी थी चुपके चुपके, तो एग्रीमेंट करने का क्या मतलब? अरे उसी वक्त बता दिया होता तो कम से कम इतनी बार्गेनिंग तो ना करनी पड़ती हमें। कह देते भाई ब्लैंक चेक है हमारा, जो चाहे रकम भर लो। मियां बीबी मिट्ठू बन गए और हम हो गए दुश्मन। वाह रे जमाना, जिसके लिए ये सब कर रहे थे वही जब हमारा नहीं रहा तो।
2: देख लो इसे।
3: ऐसा नहीं है माँ, बहू भी तो

0: नहीं है ना, भर पेट खाना नहीं दोगी उसे तो बीमार नहीं पड़ जाएगी वो, फिर दवा दारू का खर्चा खाने से कितना ज्यादा पड़ेगा, ये गणित भी तो सोचो माँ। काम छोड़कर बिस्तर पर पड़ जाएगी सो अलग।
1: अरे वाह बेटा वाह, आज जाके समझ में आया कि तू कितना बुद्धिमान है। हिसाब किताब में जीरो।
2: देख ली बाप बेटे की होशियारी, बड़े कानून दा बनते हैं दोनों के दोनों। अरे एग्रीमेंट में कहां लिखा है कि हम दवा दारू भी कराएंगे उसकी और काम छुड़ाकर आराम करवाएंगे उसे?
0: तो यही कहां लिखा है कि उसकी दवा दारू नहीं कराएंगे और काम कराएंगे उससे। कल को वो काम छोड़कर बैठना चाहे तो तुम कुछ नहीं कर सकती, साफ कह देगी वो। रोटियां गिन कर देने की बात हुई है एग्रीमेंट में, पर घर का काम करने की कोई चर्चा नहीं है इसमें। फिर तुम करती रहना सुबह से शाम तक, रसोई चौका झाड़ू बुहारू। काम वाली लगाओगी तो वो भी रोटियां खाएगी और तनख्वाह भी लेगी, समझी? उससे सस्ती तो बहू है जो केवल रोटियों पर 2400 घंटे खटने को तैयार है। बात को समझो मेरी माँ।
1: अबे उल्लू के पट्टे, तू मेरा बेटा है कि अपनी बीवी का वकील है? अरे श्रवण कुमार समझते थे हम तुझे श्रवण कुमार, मगर तू तो शादी होते ही औरंगजेब बन गया।
0: अरे मैं अभी भी हूँ आपका श्रवण कुमार, अब बोल सही रहा हूँ बापू। अब तुम्हारे पक्ष की बात नहीं है तो तुम्हें गलत लग रही है।
2: सुनो जी सुनो, एक काम कर लो जी, अभी बुलाओ इसकी महरिया को यहाँ, आमने सामने बात हो जाए।
1: बुलाओ बुलाओ।
2: ये छुप छुप कर गले तर करना मुझे नहीं सुहाता बिल्कुल।
0: माँ बुला लो।
3: जी माँ जी, मुझे बुलाया आपने?
2: हाँ बहू, बोल इस मामले में क्या चाहती है तू?
3: किस मामले में?
2: इसी मामले में, साफ बोलना और साफ करना। ये ढका छुपा कुछ नहीं चाहिए इस घर में मुझे। ये नहीं कि बाकी घर वाले सूखी रोटियां खाएं और तू समोसे कचोरियां उतारे।
3: माँ जी अब मैं क्या बोलूं, मेरे पति ही मेरे सब कुछ है, ये मुझे जैसा रखना चाहेंगे मैं तैयार हूँ।
0: वाह वाह कंचन, वेरी गुड, 50 रोटियां कुर्बान।
2: बड़ी होशियार है तू तो, सीधे कमजोर नस पे हाथ रखती है। मालूम ही है ना कि ये जोरू का गुलाम तेरी मुट्ठी में है, तभी तो ये मेरे कब्जे में होता ना तब ऐसे ना बोलती थी।
0: माँ उसे क्यों जलीकट्टी सुना रही हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे को कितनी समर्पित अर्धांगिनी मिली है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो दासी चाहिए ना, और वो भी आधा पेट खाकर बस खटती रहे चूल्हे चौके में लगी रहे।
1: क्या बकता बे?
2: देखो जी देख लो जिसके मुंह में जबान डालकर बोलना सिखाया हमने, अब वही मुझसे बटर पटर किए जा रहा है। वक्त बदल गया है हमारा, अब तो चिड़िया उड़ना सीख गई, अब नहीं है माँ के परों की जरूरत इसे।
1: ठीक कहती हो भगवान, बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीख जाते हैं तो चिड़िया लात मार कर घोंसले से बाहर भी फेंक देती उन्हें, ये नहीं के।
0: ठीक है बापू, समझ गया मैं, समझ गया तुम्हारा इशारा। संभालो अपना राजपाट, हम अपना घोंसला खुद बना लेंगे, पर उसका साथ नहीं छोड़ेंगे जिसका साथ निभाने के लिए सात वचन दिया है हमने। चलो कंचन
3: जी,
0: अब गैर हुआ ये देश, चलो।
4: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हास्य नाटिका बेटी का रिश्ता, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: श्रोताओं, सुहानी सी एक शाम धरती के आंगन में उतर रही है। पश्चिम का आसमान सुर्ख है, बारिश का रिमझिम समा है। सुहाने से इस मौसम में धरती जैसे धुली हुई सी है। इस धुले हुए आईने में शाम जैसे अपना चेहरा देख रही है, मुस्कुराती हुई। हम सभी का स्वागत कर रही है और साथ ही आमंत्रित कर रही है अपने आंगन में कि कुछ पल हम सुकून के गुजारें। उसके इस आमंत्रण में शामिल है रेडियो आजाद हिंद का आमंत्रण भी, जो आपके लिए बहुत से कार्यक्रमों का आह्वान कर रहा है। जी हाँ, आज शाम की सभा में क्या कुछ खास लेकर हम उपस्थित हुए हैं, इसकी जानकारी आपको देते हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि। भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा उसके बाद। और शाम 6 बजे वतन का राग कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कैप्टन विक्रम बत्रा की, इतिहास के पन्नों से। ये कार्यक्रम शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। इसमें आज हम बात करेंगे रानी दुर्गावती के युद्ध के इतिहास की। टेक गुरु कार्यक्रम में साइबर क्राइम पर चर्चा होगी शाम 7 बजे। 7:30 बजे भारत विभूति कार्यक्रम में हम बात करेंगे के शंकर पिल्लई की। 8:30 बजे सुनिएगा काव्य गुंजन के अंतर्गत रश्मि रथी का 13वां भाग। हमारे वैज्ञानिक कार्यक्रम प्रसारित होगा 9:00 बजे। और 9:30 बजे सुनिएगा धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद की 40वीं कड़ी। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। सुहानी सी शाम है, खूबसूरत सा समा है, हम और आप साथ हैं। ये साथ रात 10 बजे तक बनाकर रखिएगा। एक छोटा सा अंतराल ले रहे हैं और उसके बाद आप सुनेंगे हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा, जो है उसकी पहली प्रस्तुति।
1: जी भर के देखा

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 14वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद और भार्गव शौनक। देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
2: अध्वर्यवो भरतेन्द्राय सोम मामत्रेभिः सिंचता मद्यमन्धः कामीः वीरः सदमस्य पीतिं जुहोत वृष्णे तदिदेशवष्टि। हे अध्वर्युगणो, सदैव सोमपान की कामना वाले वीर इंद्रदेव को भरपूर मात्रा में सोमरस तथा पात्रों में हर्षदायक अन्न प्रदान करें। इंद्रदेव की कामना के अनुसार सुख वर्षक सोम की आहुतियां उन्हें प्रदान करें। अध्वर्यवो यो अपो वविव्रांसं वृत्रं जघानाशन्येव वृक्षं तस्मायेतं भरत तद्वशायं एष इन्द्रो अर्हति पीतिमस्य। हे अध्वर्युगणो, जिस तरह बिजली वृक्ष को धराशायी कर देती है, उसी तरह जिन इंद्रदेव ने जल को रोक कर रखने वाले वृत्र को धराशायी किया था, वे इंद्रदेव इस सोमरस पान के योग्य। उदाज दप ही वलम वह तस्मा एतमंतरिक्षे ने द्रिभीक राक्षस का हनन किया, जिनने बलपूर्वक रोकी गई गौवों किरणों को मुक्त कराया। उन इंद्रदेव के निमित्त आकाश में व्याप्त वायु की तरह यह सोम स्थापित करो। बुध राक्षस को अधोमुख करके उसे पीड़ित किया। उन इंद्रदेव को सोम यज्ञ में आने के लिए प्रेरित करो। अध्वर्यवो यह स्वशनम जघान यह शुष्ण मशुसम यो व्यंसम यह पिप्रुम नमुचिम यो रुद्रिकाम तस्मा इंद्रायांधसो जुहोत। जिन इंद्रदेव ने अश्न प्रजापोषक शुष्ण बाहु रहित अहि पिप्रु नमुचि तथा रुद्रिका नामक राक्षसों का वध किया, उन इंद्रदेव को विभिन्न हविष्यान्नों की आहुतियां समर्पित करो। अध्वर्यवो यह शतम शंबरस्य पुरो बिभेदाश्मनेव पूर्वीहि यो वर्चिनः शतमिन्द्रः सहस्र मवाप पद्भदरता सोममस्मै। हे अध्वर्युगणो, जिन इंद्रदेव ने शंबर राक्षस के 100 पुराने नगरों का अपने शक्तिशाली वज्र से ध्वंस किया, जिनने वर्चीक के 100,000 पुत्रों को धराशायी किया, उन इंद्रदेव के निमित्त सोम प्रदान करो। अध्वर्यवो यः शतमा सहस्रं भूम्या उपस्थे वपजघ्नवान् कुत्स्यास्या रो रतिथिग्वस्य वीरान् या वृणग् भरता सोममस्मै। हे अध्वर्यु गणो, जिन शत्रुनाशक इंद्रदेव ने हजारों असुरों को मारकर सैकड़ों बार भूमि पर बिछा दिया, जिनने कुत्स आयु तथा अतिथिगुव के द्वेषियों का वध किया, उन इंद्रदेव के निमित्त सोम एकत्रित करो।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 14वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, चलिए हम और आप मिलकर चलें आज की इस भजन यात्रा पर। इस भजन यात्रा पर साथ साथ चलते हुए पहला प्रश्न मन में यही उठ रहा है कि आखिर भक्ति है क्या। सुबह शाम हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो प्रश्न यही मन में बार बार आता है कि आखिर भक्ति क्या है। श्रोताओं, दरअसल भक्ति का दूसरा अर्थ है प्रेम, या कहें ऊर्ध्वमुखी प्रेम, व्यक्ति और समष्टि के बीच का प्रेम। भक्ति यानी सर्व के साथ प्रेम में डूब जाना, समस्त जड़ चेतन के प्रति प्रेम ही भक्ति है। भक्ति का कोई शास्त्र नहीं है, ये एक यात्रा है। भक्ति का कोई सिद्धांत नहीं, ये तो बस एक जीवन रस है। भक्ति को समझने का प्रयास व्यर्थ है, इस जीवन रस में डूबकर ही इसे समझा जा सकता है। तो आइए इसी प्रेम में डूबे हुए हम और आप चलें आज की भजन यात्रा पर।

श्रोताओं, भक्ति की जिज्ञासा का अर्थ ही ये है कि हे ईश्वर, मैं टूटा फूटा हूं, अभी मुझे जुड़ना है। मैं अधूरा हूं, अधूरा हूं अभी कि मुझे पूरा होना है। कमियां हैं मुझ में, सीमाएं हैं हजार, सब सीमाओं को तोड़कर बहना है, बहना है बूंद बूंद और सागर हो जाना है। ये हृदय की पुकार ही वंदना है, प्रार्थना है।

भक्ति शास्त्रों में लिखी नहीं मिलेगी, भक्ति भक्त के हृदय में लिखी मिलेगी। भक्ति शास्त्र शब्द सिद्धांत से परे एक जीवंत सत्य है। भक्त जहां मिले उसे वहीं पढ़ लेना होगा, कहीं और पढ़ने का उपाय है ही नहीं। भक्ति भाव समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं है। भक्ति बहुत सुगम है, लेकिन केवल उनके लिए जिनकी आंखें प्रेम को सोचते ही भर भर आती हैं, अपने ईश्वर का नाम लेते ही नम हो जाती हैं।

श्रोताओं, मनुष्य का अस्तित्व तीन तलों में विभाजित है, शरीर, बुद्धि और हृदय। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म, विचार और भाव। कर्मवाद की यात्रा, कर्मकांड की यात्रा स्थूल प्रक्रिया है। दूसरा द्वार पहले से कुछ सूक्ष्म है, ज्ञान का द्वार, जिसमें चिंतन मनन है, इसका नाम है ज्ञान योग। और तीसरा द्वार अति सूक्ष्म है, भाव का, प्रीति का, प्रार्थना का, और इसी का नाम है भक्ति योग। और भक्ति का मार्ग बेहद सुगम है।

श्रोताओं, ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। कर्म से भी लोग पहुंचते हैं, लेकिन ये यात्रा बहुत लंबी है। ज्ञान से भी उस तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये यात्रा भी संक्षिप्त नहीं है। बहुत सी सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। लेकिन भक्ति, भक्ति एक छलांग है। इसमें सीढ़ियां भी नहीं है और दूरी भी नहीं है। भक्ति एक क्षण में घट सकती है, तत्क्षण घट सकती है। ये केवल भाव की बात है, इधर भाव और उधर रूपांतरण। लेकिन इसके लिए आवश्यकता होती है विशुद्ध प्रेम की।

श्रोताओं, आत्मा की मांग है शाश्वत की, चिरंतन की, सनातन की। आत्मा की मांग है आत्मा की। आत्मा से आत्मा के मिलन पर जो रस पैदा होता है, उसी का नाम भक्ति है। शरीर की सीमा है ठोस, मन की सीमा है तरल, लेकिन आत्मा की कोई सीमा नहीं है। इस आत्मा से उस परमात्मा के मिलन का ही नाम है

तो श्रोताओं, आज की इस भजन यात्रा में हम और आप साथ साथ चलिए ईश्वर की आराधना करते हुए, उसकी वंदना करते हुए। उस परमेश्वर की कृपा हम सभी पर बनी रहे, सर्व कल्याण की इसी कामना के साथ अनुमति दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

छुट्टियों में अपने परिवार के साथ समय बिताने आए एक सैन्य अधिकारी को सूचना मिलती है कि दुश्मन देश घुसपैठ कर रहा है और युद्ध के आसार हैं। वो अधिकारी लौटने की तैयारी करता है। चिंता से भरकर जब उसका दोस्त उसे सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहता है तो वो जवाब देता है, तू चिंता मत कर, या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। और कुछ महीनों बाद वो तिरंगे में लिपट कर ही वापस आता है। वो साल था सन 1999। वो लड़ाई थी कारगिल युद्ध और वो अमर बलिदानी थे कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर सन 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे और माता कमल बत्रा एक अध्यापिका। बत्रा परिवार में सीमा और नूतन दो बच्चियों के जन्म के बाद दो जुड़वा बेटों का जन्म हुआ। माता पिता ने प्यार से उनका नाम रखा लव और कुश। लव यानी विक्रम बत्रा और कुश यानी उनके भाई विशाल बत्रा। विक्रम बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। पढ़ाई लिखाई में वो हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते। इसके साथ ही कराटे, क्रिकेट, टेबल टेनिस, स्क्वैश और संगीत में भी उनकी गहरी रुचि थी। विक्रम बत्रा की आरंभिक शिक्षा पालमपुर के डीएवी स्कूल में हुई। फिर उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। अपने आसपास बचपन से ही उन्होंने वर्दी पहने हुए सैन्य अधिकारियों को ही देखा था और ये वर्दी उन्हें बहुत आकर्षित करती थी। इस तरह उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया। पिता बचपन से ही उन्हें छत्रपति शिवाजी, शहीद भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की कहानियां सुनाया करते थे। इन कहानियों ने उनके भीतर देश प्रेम और बलिदान की भावना भर दी। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद विक्रम बत्रा ने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में प्रवेश लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वो एनसीसी में शामिल हो गए और एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए अर्हता प्राप्त की। बहुमुखी प्रतिभा के धनी विक्रम बत्रा के लिए भविष्य के अनेक दरवाजे खुले थे, लेकिन उनका अपना चुनाव था कि उन्हें भारतीय थल सेना में ही शामिल होना है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही मर्चेंट नेवी में जाने का अवसर भी उनके सामने आया, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने इस नौकरी से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अपनी भारत माता की सेवा करना चाहता हूँ।

स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने इंग्लिश में एमए करने की योजना बनाई ताकि चंडीगढ़ में ही रहते हुए सीडीएस यानी संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा की तैयारी कर सकें। इस परीक्षा में वो सफल हुए। 21 साल उन्होंने एक सपना देखा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए से 1.5 साल का प्रशिक्षण लिया, तब उनके कंधों पर 2 स्टार लगे। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में वो लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। सोपोर में उनकी पहली पोस्टिंग हुई। यहां कई आतंकवादियों से उनकी मुठभेड़ हुई। अपनी वीरता, पराक्रम और जोश के कारण वो अपने साथियों और अधिकारियों के प्रेम पात्र बन गए। अत्यंत हंसमुख और जीवंत विक्रम बत्रा के मन में हर किसी के लिए असीम प्रेम था। उनकी अनेक डायरियां हैं जिनमें जगह जगह लव ऑलवेज लिखा मिलता है। दूसरों की सहायता और देश का सम्मान उनके संस्कारों में था। खुद से पहले दूसरों के लिए सोचना, यही उनका व्यवहार था जो जीवन में भी दिखाई दिया और युद्ध के मैदान में भी। सन 1999 में पाकिस्तान ने भारत की सीमा में घुसपैठ शुरू कर दी। सीमा पर तनाव बढ़ने लगा। कारगिल की अनेक चोटियों पर दुश्मन ने अधिकार कर रखा था। सीमा पर भारतीय जवान भेजे जा रहे थे ताकि दुश्मन को खदेड़ा जा सके। कारगिल युद्ध के दौरान ही कैप्टन सौरभ कालिया और 5 जवानों को पाकिस्तान ने बंधक बना लिया और असीम यातनाओं के बाद उनकी लाशें भारत भेजी। देश के साथ साथ विक्रम बत्रा भी इस घटना से अत्यंत उद्वेलित थे। अब तक 13 जैक रिफ एक रिजर्व फोर्स थी। ऑपरेशन विजय जारी था। तोरोलिंग और हम्प पर भारतीय जवानों ने अपना झंडा फहरा दिया था। अब लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी ने .5140 को जीतने की योजना बनाई। उन्होंने रणनीति बनाते हुए 2 टीमें बनाई, लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल की ब्रावो कंपनी और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की डेल्टा कंपनी। तय हुआ कि दोनों कंपनियां अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ेंगी। जब तक ये फौजी चढ़ाई चढ़ेंगे तब तक तोपखाने से दुश्मन पर हमला होता रहेगा, और जब दोनों कंपनियां दुश्मन से 200 मीटर की दूरी पर होंगी तब आर्टिलरी हमला बंद होगा और आमने सामने की लड़ाई होगी। संपर्क रेडियो संदेश से बना रहेगा। पहचान छुपाने के लिए सभी के कोड नेम रखे गए। लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल का कोडनेम संग्राम और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा का कोडनेम शेरशाह रखा गया। .5140 जीतने के बाद जीत की सूचना देने के लिए विक्ट्री सिग्नल भी तय हुए। संजीव जामवाल ने अपना विक्ट्री सिग्नल रखा ओ याया, और विक्रम बत्रा ने रखा ये दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा का विक्ट्री सिग्नल देश भर में चर्चित हो गया था क्योंकि इसमें भावना छिपी थी दुश्मन के और बंकर ध्वस्त करने की और चोटियां जीतने की। इस तरह .5140 के लिए विजय अभियान शुरू हुआ।

कारगिल युद्ध इतिहास के कठिनतम युद्धों में से एक था। 17,000 फीट की ऊंचाई पर था दुश्मन, जहां से वो भारतीय सेना की सारी गतिविधियां देख सकता था। इसलिए जवानों को रात के अंधेरे में चढ़ाई चढ़कर सुबह होने से पहले दुश्मन के सभी बंकर ध्वस्त करने थे। सैनिक जब टारगेट से 200 मीटर की दूरी पर थे, तब तोपों से फायरिंग बंद कर दी गई और भारतीय जवानों ने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। विक्रम बत्रा ने पीछे से हमला शुरू किया, दुश्मनों के बंकरों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने दुश्मन के मशीन गन पोस्ट पर भी 2 ग्रेनेड फेंककर उसे खत्म कर दिया। दोनों कंपनियां जैसे दुश्मन पर टूट पड़ी थीं। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने अकेले ही गुत्थम गुत्था लड़ाई में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। वो वाकई शेरशाह थे। दुर्गे माता की जय के बुलंद उद्घोष के साथ .5140 पर तिरंगा लहरा उठा। इस जीत की खुशी पूरे देश में मनाई गई। विक्रम बत्रा को कैप्टन बनाया गया। उनकी बहादुरी को देखते हुए महावीर चक्र के लिए उनका नाम भेजा गया। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा यही नहीं रुके, वो इस कारगिल युद्ध को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए रेस्ट पर जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। अगला लक्ष्य था .4875, क्योंकि यहां से दुश्मन सीधे नेशनल हाईवे पर हमला कर रहा था और भारतीय सेना की गतिविधि को भी इस ऊंचाई से देख रहा था। 13 जैकरिफ अब .4875 के लगभग 1500 मीटर दूर फायर सपोर्ट बेस पर तैनात थी। दुश्मन पर हमला शुरू हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा को बुखार था, पिछला घाव भी अभी भरा नहीं था, लेकिन वो टॉप पर जाकर युद्ध करना चाहते थे। .5140 के संघर्ष में शेरशाह विक्रम बत्रा से पाकिस्तानी फौज रेडियो संदेश पर बात कर चुकी थी, इसलिए उनके हौसले और पराक्रम को वो पहचानती थी। .4875 की लड़ाई बहुत खतरनाक थी। इस चोटी के दोनों तरफ बड़े ढलान थे और दुश्मन की कठिन नाकेबंदी भी, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा इस युद्ध का नेतृत्व खुद कर रहे थे। वो आगे बढ़ते रहे, भीषण गोलाबारी और फायरिंग के बीच आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने 5 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। वो लड़ाई भी लड़ते रहे और अपने साथी की जान भी बचाई। गोली और बमबारी में गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर ग्रेनेड फेंके। इसी बीच उन्हें गोली लग गई। उनकी डेल्टा कंपनी के जवान इसे सह नहीं सके। वो सभी एक साथ दौड़ते हुए आए और दुश्मन के आखिरी बंकर को भी ध्वस्त कर दिया। .4875 पर तिरंगा लहरा उठा, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त हुए। तारीख थी 7 जुलाई 1999। जब तिरंगे में लिपटकर वो वापस आए तो पूरे देश का मन भीग गया। उनके सम्मान में .4875 को बत्रा टॉप नाम दिया गया। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके शौर्य, पराक्रम और बलिदान को हम शत शत नमन करते हैं। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स।
1: हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
0: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम के लिए इंतजार करें बस जरा सा।

0: छेड़ देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। और अब समय है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से का।

0: नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से इसकी छठी कड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी में हमने सुना था कि 16वीं सदी में मध्य भारत के एक विशाल भूभाग पर गोंड राजवंश द्वारा स्थापित गढ़ा राज्य पर महाप्रतापी राजा संग्राम शाह की पुत्रवधु वीरांगना रानी दुर्गावती का 1550 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी तक का शासन था। रानी के लोक उपयोगी कार्यों के कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। समकालीन दिल्ली के मुगल दरबार पर भी इसका असर दिखने लगा था। चाहे वो सोने और हाथी के रूप में दिया गया लगान हो, गोसाई विट्ठल नाथ जी का गढ़ा आगमन हो, मठ मंदिरों का निर्माण या रानी का सच्चरित्र, मुगल दरबार गढ़ा राज्य की चर्चा करने लगा था और कहीं ना कहीं रानी के ये गुण मुगल दरबार को खलने लगे थे, जिसका परिणाम गढ़ा राज्य पर आक्रमण के रूप में हमारे सामने आया। रानी अत्यधिक चरित्रवान, साहसी और अच्छी योद्धा थी। उनकी तारीफ अबुल फजल बदायूनी फरिश्ता जैसे मुगल दरबारी लेखकों तक ने की है, लेकिन अबुल फजल ने इस ओर भी इशारा किया कि गोंड रानी दुर्गावती मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। पिछली कड़ी में हमने सुना कि अकबर ने उनका मनोबल तोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए और उन्हीं प्रयासों को आगे ले जाते हुए अकबर ने किसी को वहां पर भेजा। किसे भेजा, कैसे भेजा, क्या थी पूरी बात, फिर से हमारे साथ एक बार हैं स्टूडियो में पूजा सक्सेना जी, प्रसिद्ध पुरातत्वविद। और पूजा जी, फिर से एक बार आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: हम सब उत्सुक हैं आपसे आगे की कहानी जानने के लिए।
1: अकबर का एक सेनापति था आसफ खां, हमने पिछली बार सुना। वो मालवा में तैनात था और कड़ा उसकी जागीर थी। आसफ खां गढ़ा राज्य की गतिविधियों की सूचना दिल्ली के मुगल दरबार तक बार बार पहुंचा रहा था। रानी दुर्गावती के बढ़ते हुए सैन्य ताकत और प्रतिष्ठा ने मुगल दरबार को विचलित कर दिया। दोनों राज्यों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही थी। यह वो समय था, हमें याद रखना चाहिए, जब गढ़ा के राजा दलपत शाह की मृत्यु हुए कई वर्ष बीत चुके थे।
0: जी हाँ।
1: रानी ने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर 14 वर्ष तक गढ़ा राज्य को खूब समृद्ध किया था। हम सब जानते ही हैं।
0: जी।
1: रानी इस समय लगभग 40 वर्ष की एक अधेड़ महिला रही होगी और एक बच्चे की माँ भी।
0: जी।
1: तो उनका संघर्ष और मुगल सेना का संघर्ष, दोनों के बीच में ये एक बेसिक डिफरेंस रहा होगा, ये हमें ध्यान में जरूर रहना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: उधर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आसफ खां एक लड़ाका था। उसके परिवार के लोग हुमायूं की सेना में भी रह चुके थे और कई युद्ध लड़ चुके थे।
0: जी।
1: आसफ खां ने मुगल राज्य के एक भगोड़े अमीर था गाजी खां तन्नूरी,
0: जी,
1: उसको मारा था, जिससे कि इस घटना के बाद जो शासक था अकबर उसकी नजरों में आ गया
0: और वो उनका खास बना और उन्होंने उसको
1: मालवा की कड़ा जागीर दे दी।
0: जी।
1: तो यहाँ से अब आसफ खां जो है उसकी नजर अपने आसपास के जो राज्य थे उन पर लग गई कि वो अपने राज्य का विस्तार, जागीर से बड़ा राज्य कैसे बनाए।
0: जी।
1: इस ओर उसका ध्यान था। उसे गढ़ा राज्य कई मायनों में आकर्षित कर रहा था। एक तो ये जनजाति बहुल क्षेत्र था जिसकी बड़ी जनसंख्या जंगलों में रहती थी।
0: बिल्कुल।
1: और अपने काम से काम रखती थी, उन्हें युद्धों से इससे उससे कोई खास मतलब नहीं था। दूसरा, यह राज्य बहुत समृद्धशाली होता जा रहा था, हम सब देख ही रहे थे। हाथी भी एक बड़ा कारण थे, वन संपदा थी, वन संपदा एक बहुत बड़ा कारण बन के आती है इस समय, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर जहाजों का निर्माण हो रहा है, पानी के जहाजों का। उसके लिए अच्छी किस्म की सागौन की लकड़ी चाहिए।
0: जी।
1: और वो तो हमारे मध्य भारत में बड़ी बहुलता के साथ में होती है, तो वन संपदा भी एक बहुत बड़ा कारण थी, जड़ी बूटियां, दूसरी चीजें। इसके अलावा दक्कन जाने तक का जो व्यापारिक मार्ग था वो भी यहाँ से होकर गुजरता था, और जहाँ से व्यापारिक मार्ग गुजरता है वहाँ पर जो कर वसूला जाता है तो उससे राज्य समृद्ध होते हैं। तो हर एक राज्य चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक मार्गों पर उसका अधिकार हो, तो ये भी एक बड़ा कारण बन के उभरा। वहीं दूसरी तरफ जो संत हुए पुष्टि मार्गीय विट्ठल नाथ जी, जिनके बारे में हमने पिछली काफ़ी चर्चा की, उनका प्रभाव जो बढ़ रहा था, दूसरी तरफ जो धर्मांतरण बड़े स्तर पर रुक रहे थे, इन सब कारणों से एक स्थिति बन रही थी कि गढ़ा और मुगलों के बीच में एक युद्ध के आसार साफ नजर आ रहे थे।
0: और इन्हीं सब कारणों के चलते जो आसफ खां था वो मुगल दरबार को, अकबर को उकसाया करता था कि वो यहाँ पर हमला करें।
1: बिल्कुल। अगर हम जैसे मुगल दरबारी लेखक हैं वदायूनी, अबुल फजल, इनके वर्णनों को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि आसफ खां मुगल शासक अकबर को गढ़ा राज्य पर आक्रमण करने के लिए खूब उकसाया करता था
0: जी।
1: लेकिन गढ़ा राज्य के प्रति वह हमेशा मित्रतावत व्यवहार रखता था, यानी कि आसफ खां वहां तो लड़ाई की तैयारियों में था
0: जी, जी।
1: लेकिन यहाँ पर गढ़ा राज्य के साथ वो अपने मित्रता के संबंध दिखाया
0: तो न सिर्फ युद्ध नीति में कुशल था, वो कूटनीति में भी कुशल था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसने गढ़ा राज्य से शत्रुता का खुलासा ही नहीं किया कभी, इसीलिए गढ़ा राज्य उसके प्रति चिंतित भी नहीं था।
0: हाँ।
1: और वो गुपचुप तरीके से गढ़ा राज्य के संचार साधनों, आय व्यय और गढ़ा राज्य की आंतरिक स्थितियों को जानने के लिए गुप्तचरों और व्यापारियों को लगातार भेजता रहता था। गढ़ा राज्य के अंदर की सारी जानकारियां इकट्ठा करता था
0: जी।
1: और वो ये जानने की कोशिश करता रहता था कि कहाँ कितनी संपत्ति है, कहाँ रखी है, कहाँ कितनी सेना है, कितना असला है, क्या स्थिति है उसकी। ये सब जानकारियाँ वो बहुत लंबे समय से एकत्र कर रहा था, जो गढ़ा के लिए एक मुश्किल उसने बाद में पैदा की
0: जी।
1: धीरे धीरे आसफ खां ने मुगल शासक अकबर को इस बात का यकीन दिला दिया कि गढ़ा जैसा समृद्धशाली राज्य उसके शासनाधिकार में नहीं है। यानी ये एक बड़ी चिंता की विषय है मुगल दरबार के लिए कि गढ़ा जैसा समृद्ध राज्य उसके अधिकार में ही नहीं है। तो अकबर जो है उससे विचलित होने लगा और भारत का जो मध्य भूभाग है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, गोंड जनजाति और उसके संसाधनों पर उसका अधिकार नहीं है। इसके बाद आसफ खान ने इस बात पर भी अकबर को मनाना शुरू कर दिया कि गढ़ा राज्य पर आक्रमण के अतिरिक्त कोई विकल्प बचा ही नहीं है, यानी आक्रमण अब करना ही होगा
0: जी।
1: युद्ध अति आवश्यक है। आखिरकार मुगल शासक अकबर ने गढ़ा राज्य पर आक्रमण करने के लिए आसफ खान को सन 1564 में इजाजत दे दी।
0: यहाँ पर आक्रमण करने के लिए अकबर की सेना नहीं आई थी, आसफ खान की ही सेना यहाँ पर आई।
1: हाँ, कभी भी अकबर गढ़ा राज्य पर आक्रमण करने के लिए नहीं आया, उनका जो सेनापति था आसफ खां उन्होंने गढ़ा राज्य पर आक्रमण किया था। आसफ खां पहले से ही गुपचुप तरीके से अपनी सेना को भी सुदृढ़ कर रहा था, उधर अकबर को भड़का रहा था और इधर सेना भी अपनी तैयार कर रहा था। हाथी घोड़े पैदल सैनिक को कई वर्षों तक एकत्र करता रहा। अकबर की इजाजत मिलते ही भारी भरकम मुगल सेना का साथ भी उसको मिल गया। यह बात जानकर कि मुगल सेना गढ़ा राज्य पर आक्रमण कर रही है तो जो छोटे छोटे राज्य थे जो अकबर को लगान दिया करते थे, अप्रत्यक्ष रूप से मुगल राज्य के अधीन थे, उन सब ने भी अपनी सेनाएं आसफ खां को दे दी। तो इस तरह आसफ खां के पास एक बहुत ही विशाल सेना हो गई जो कि बड़े हाथियों से, घोड़ों से और हथियारों से लैस थी।
0: तो क्या पूजा जी ये भी कह सकते हैं कि इसके पीछे खुद आसफ खां की जो महत्वाकांक्षा थी वो भी जोर मार रही थी, क्योंकि खुद चाहता था कि वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह गढ़ा राज्य का सिरमौर बन जाए।
1: बिल्कुल, आसफ खां अपनी जगह बनाने में लगा हुआ था
0: जी।
1: और उसने अकबर का सहारा लिया।
0: बिल्कुल,
1: अकबर के लिए ये एक कहीं विचलित करने वाली बात थी कि भारत का जो मध्य भूभाग है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है
0: जी।
1: तो ये सब मिलकर ही तो स्थितियां पैदा कर रहे थे।
0: और उस समय रानी दुर्गावती कहाँ थी?
1: जिस समय आसफ खां गढ़ा राज्य के लिए षड्यंत्र रच रहा था उसी समय रानी दुर्गावती गढ़ा राज्य को समृद्ध करने में लगी हुई थी
0: जी।
1: जब आसफ खां दमोह की तरफ आ गया उस समय तो रानी सिंगौरगढ़ में थी और उन्हें इस षड्यंत्र की भनक तक नहीं थी, क्योंकि वह तो मित्रवत व्यवहार करता था।
0: बिल्कुल।
1: तो रानी ने नहीं सोचा कि इस तरीके का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। रानी के पास अचानक से सूचना पहुंची कि आसफ खां दमोह तक पहुंच चुका है। इससे रानी की सेना के खेमे में हलचल मच गई। उस समय रानी युद्ध के लिए तैयार तो थी नहीं
0: जी।
1: कहते हैं कि उनकी सेना में उस समय केवल 500 सैनिक थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गोंड रानी दुर्गावती ने इस कठिन समय में भी साहस नहीं खोया और मुगल सेना का सामना करने के लिए आगे बढ़ी
0: जी।
1: रानी को छोटी सी सेना के साथ युद्ध के लिए पलायन करने की तैयारी देखते हुए उनके जो मंत्री थे आधार कायस्थ, उन्होंने रोका और कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस समय गोंड सेना में सैनिकों की कमी थी, युद्ध की तैयारी थी नहीं
0: जी।
1: और सामने विशाल मुगल सेना का होना चिंताजनक तो था।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए ये सलाह दी गई कि इस समय रानी युद्ध के लिए पलायन ना करें
0: जी।
1: लेकिन रानी को यह सलाह तो दी गई कि वह युद्ध में नहीं जाएं, पर रानी के लिए युद्ध में ना जाना कायरता का प्रदर्शन करने जैसा था, यह उनके आदर्शों के भी खिलाफ था
0: जी।
1: युद्ध से मुंह मोड़ लेना ये तो सवाल ही नहीं उठता था उनके लिए।
0: बिल्कुल, और इसीलिए हम उन्हें रानी दुर्गावती के नाम से आज भी संबोधित
1: जी
0: करते
1: हाँ।
0: हैं।
1: रानी दुर्गावती ने सोचा कि अपमानजनक जीवन जीने से अच्छा है सम्मानजनक तरीके से मर जाना।
0: वाह क्या बात है। तो फिर क्या उन्होंने मतलब ठान तो लिया ही था, तो क्या सामना किया उन्होंने आसफ खां की सेना का?
1: रानी अब गढ़ा राज्य की आन बान की रक्षा के लिए युद्ध में जाने की तैयारी कर चुकी थी
0: जी।
1: रानी का साहस देखकर अब उनकी सेना में लगभग 2000 सैनिक सम्मिलित हो गए। कहां 500 की सेना थी
0: जी।
1: और लोग अपने आप से आए उनकी सेना में सम्मिलित होने के लिए। तो रानी ने अपनी सेना को तैयार कर लिया और सेना कूच कर गई
0: जी।
1: जिस ओर मुगल सेना बैठी हुई थी उस ओर उन्होंने 4 पड़ाव पार भी कर लिए।
0: अच्छा।
1: इसकी सूचना आसफ खां को लग गई और वो भी आगे बढ़ रहा था
0: जी।
1: तो जैसे ही सूचना मिली तो वो दमों में ठिटक गया।
0: अच्छा।
1: वहीं रुक गया
0: जी। जी
1: उसने अपने संदेश वाहक मुगल दरबार में भेजे
0: जी।
1: अकबर से और अधिक सेना की टुकड़ियां भेजने की मांग की।
0: लेकिन पूजा जी पहले ही उसके पास 10,000 लोगों की सेना थी और रानी तो यहाँ पर सिर्फ 2000 सैनिक लेकर के चलनी थी, तो आसफ खां को ये अंदाजा नहीं था कि रानी के पास सेना कम है, या वो डरा हुआ ज्यादा था?
1: रानी के शौर्य की गाथाएं वो सुन चुका था
0: जी।
1: और गोंड भी बड़े पराक्रमी होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो संभवतः यही कारण था कि इतना अधिक आंतरिक जानकारियां जुटाने के बाद भी
0: जी।
1: और 10,000 की सेना लेने के बाद भी उसने और टुकड़ियों की डिमांड अकबर के सामने रखी
0: जी।
1: अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथ देखें जैसे आईने अकबरी है जिसे अबुल फजल ने लिखा है तो हमें उसमें पढ़ के पता चलता है कि आसफ खां की सेना में हाथी घोड़े पैदल सैनिक सहित 10,000 की सेना थी।
0: पहले से ही थी।
1: इसके अलावा मुगल शाही आदेश से जो मुगलों के जो इफ्तादार हुआ करते थे, जैसे नाम मिलते हैं हमको मुहब्बिब अली खान, मोहम्मद मुराद खान, वजीर खान, बाबाई काकशाल, नाजिर बहादुर और आक मोहम्मद, ये सभी जो हैं इफ्तादार थे मुगल दरबार के
0: जी।
1: और ये सभी भी अपनी सेनाएं लेकर अब आसफ खान से मिल गए।
0: सैन्य सहायता आसफ खान को मिल गई तो उसके बाद उनके पास कितने सैनिक हो गए?
1: हाँ, अगर हम तबकाए अकबरी नाम की एक किताब है उस समय की वो देखें तो हमें पता चलता है कि आसफ खां की सेना में घुड़सवार पैदल सैनिक सहित लगभग 50,000 की सेना का उल्लेख है।
0: ओह, कहां रानी के पास सिर्फ 2000 की सेना थी और ये 50,000 लोगों की सेना लेकर आ रहा था जिसमें पैदल सैनिक भी थे और हाथी घोड़े मतलब सारे लोग थे, तमाम लाव लश्कर मौजूद था
1: जी हाँ।
0: तो फिर क्या उसने रानी के आने का वहां इंतजार किया या रानी की तरफ कूच किया?
1: रानी दुर्गावती अपनी सेना के साथ दमों की ओर कूच कर रही थी
0: जी।
1: उधर दूसरी ओर तेजी से आता हुआ आसफ खां यह जानकर कि गढ़ा की सेना कूच कर गई है दमों में रुक गया था
0: जी।
1: तो गढ़ा राज्य के मंत्रियों ने रानी दुर्गावती को यह सलाह दी कि किसी सुरक्षित स्थान पर सेना को रुक जाना चाहिए
0: जी।
1: और वहां हमें अपनी सेना का एकीकरण कर लेना चाहिए क्योंकि अभी अभी बहुत सारे सैनिक आकर जुड़े हैं, तो सेना का एकीकरण करना बहुत जरूरी था
0: जी।
1: तो रानी को यह परामर्श ठीक लगा
0: जी।
1: और उन्होंने अपनी सेना को गढ़ा के पश्चिम में स्थित सघन जंगलों की ओर मोड़ लिया
0: जी।
1: इन जंगलों में अनेक वनवासी गोंड राज्य पर आई विपदा की जानकारी पाकर सेना में शामिल होने के लिए अपने आप ही चले आए
0: जी।
1: इस तरह रानी की सेना में स्वेच्छा से अनेक लोग जुड़ने लगे। अब लगभग 2000 की सेना रानी के पास में
0: इस तरह से 2000 लोग हो गए थे 500 से जी।
1: तो यहाँ जंगलों में सेना का एकीकरण करने के बाद रानी ने फिर दक्षिण पश्चिम की तरफ कूच किया
0: जी।
1: और वह एक स्थान पर पहुंची जो नरई के नाम से जाना जाता है।
0: अच्छा।
1: नरई नर्मदा नदी और गौर नदी के बीच की एक घाटी है
0: जी।
1: ये घाटी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है
0: जी।
1: गढ़ा की सेना ने यहाँ नरई में अपना शिविर गाड़ दिया। अबुल फजल ने भी नरई के बारे में लिखा है, वहाँ प्रवेश करना और वहाँ से बाहर आना इस घाटी से, बहुत ही मुश्किल था
0: जी।
1: ऐसा अबुल फजल ने लिखा। इस स्थान के चारों ओर ऊंचे पर्वत हैं, सामने गौर नदी बहती है, ये भी अबुल फजल ने लिखा है। दूसरी ओर तो नर्मदा जोर जोर से पहाड़ों से टकराती हुई बहती है, यानी इस दुर्गम स्थान का बड़ा विस्तृत वर्णन अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया। और उसने ये भी लिखा कि केवल एक सकरा सा रास्ता है जो बसाहट की तरफ जाता है।
0: तो निश्चित रूप से ये परिस्थितियां, ये जो स्थान था, ये तो रानी दुर्गावती के लिए एक प्लस पॉइंट था वहां पर, और उन लोगों के लिए तो निश्चित रूप से बड़ा ये दुरूह कार्य रहा होगा, क्योंकि वो सब जानते थे कि गोंड जनजाति के लोग हैं, जंगलों का रास्ता जानते हैं, दुर्गम स्थानों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं।
1: हर एक राजवंश का अपनी प्रकृति को जानना उसका एक प्लस पॉइंट तो होता ही है
0: जी।
1: साथ ही हर एक राजवंश का अपनी एक तकनीक भी होती है युद्ध की।
0: बिल्कुल।
1: तो इनकी तकनीक में प्रकृति का उपयोग करते हुए लड़ना शुरू से ही शामिल था
0: जी।
1: तो नरई को चुनना रानी की एक स्ट्रेटेजी का एक बहुत अच्छा भाग था
0: जी। तो इससे मालूम चलता है कि जो रानी दुर्गावती थी वो युद्ध की रणनीति बनाने में भी अत्यधिक कुशल थी
1: जी। हाँ।
0: तो श्रोताओं, मतलब इसका के देखिए, जो रानी दुर्गावती थी वो युद्ध नीति में भी बहुत कुशल थी, रणनीति बनाने में बहुत कुशल थी। उन्हें मालूम था कि उनके पास कितनी कम सेना थी, पहले 500 लोग थे और अब तो जो उनके पास सैनिक आकर के भी जुड़े, जैसे कि हमें पुरातत्वविद पूजा जी ने बताया कि जो 2000 लोग भी हुए वो कोई कुशल योद्धा नहीं थे, वो सिर्फ गोंड जनजाति के ऐसे लोग थे जो गढ़ा राज्य के रहवासी थे और वो रानी की भक्ति से सराबोर होकर, रानी की भक्ति से प्रभावित होकर उनकी सेना में जुड़ गए। तो आगे भी ये बात जारी रहेगी। हम कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से सुन रहे हैं, हमारे साथ पुरातत्वविद पूजा सक्सेना जी हैं जो लगातार हमें बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां दे रही हैं। और अब युद्ध तक बात आ चुकी है, युद्ध का बिगुल बज चुका है, आसफ खान ने धोखा दे दिया है और अब देखते हैं कि रानी किस तरह से आसफ खान की एक लंबी चौड़ी सेना का मुकाबला करती हैं। उसके लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड, जिसके लिए हम आपको जल्द ही मिलेंगे। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

इतिहास के पन्नों से। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

अब मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम टेक गुरु।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। टेक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे साइबर अपराध, चुनौतियां और सुरक्षा के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, हम जानते हैं कि आज हमारे एक क्लिक पर सारी जानकारियां उपलब्ध हैं और ये छोटा सा जो बॉक्स है ना, जिसे हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, वो आज हमारी ज़िंदगी बन चुका है। केवल मोबाइल फ़ोन ही नहीं, उसके अंदर जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंटरनेट की। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसके बिना हम अपने फ़ोन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को जकड़ कर रख लिया है। जी हाँ, कुछ भी काम हो हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और इस इंटरनेट ने जहाँ हमें सुविधाएँ दी हैं, तो वहीं हमारे सामने चुनौतियाँ भी खड़ी कर दी हैं। क्या है साइबर अपराध, चुनौतियां क्या हैं, सुरक्षा कैसे की जाए, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने शिवेंद्र कुंभकार जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और हम उनसे जानेंगे कि साइबर अपराध क्या है, चुनौतियां क्या है, सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में।
2: आपने मुझे मौका दिया अपनी पक्ष रखने का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
1: जी सर, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और साइबर अपराध बहुत तरीके से देखते हैं। आज हम देखते हैं कि जो इंटरनेट है वो हमारी जिंदगी में इतना रच बस गया है कि हम उसके बिना कल्पना नहीं कर पाते हैं। क्या चुनौतियां आज आपके नजरिए से देखने मिल रही हैं?
2: देखिए, दोनों तरह से अपन देख सकते हैं। इंटरनेट का होना अपने लिए बहुत फायदेमंद चीज़ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेट का हद से ज़्यादा उपयोग कहीं ना कहीं अपनी आंखों को कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट के लिए फ़ोन या टैबलेट या कंप्यूटर्स चाहिए। इंटरनेट के लिए आपको कहीं ना कहीं एक जगह बैठ के या कहीं एक चीज़ पर फोकस करना पड़ता है। तो अगर हम प्रीवियस से अगर कंपेयर करें, बिफोर इंटरनेट आफ्टर इंटरनेट, तो पहली तो बॉडी की हेल्थ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। पहले जानकारी लेने के लिए आप लाइब्रेरी जाते थे, रिसर्च करते थे, एक जगह बुक में पढ़ते थे या कहीं रिसर्च मटेरियल में पढ़ते थे। अब आज वो चीज़ आपके हाथ में तो अवेलेबल है, लेकिन उसके चक्कर में आप अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करें, कहीं जाते जाते आप फ़ोन चला रहे हैं, कोई सामने वाला गाड़ी चलाते हुए फोन चला रहा है, तो उसमें रिस्क तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
1: बिल्कुल, रिस्क बढ़ चुका है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वही रिस्क की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो साइबर अपराध इस समय बहुत ज्यादा हो चुके हैं। बात करने की तो जो आज़ादी है वो हमें फोन ने दी है, अपराध कहाँ बन जाती है ये बातचीत?

0: देखिए अपराध यहाँ बन जाती है जहाँ वो बातचीत जिसको आप जानते नहीं हो उसके साथ हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपका ही नंबर है, आपको पता है, मुझे पता है, अब मैं उस नंबर में एक दो डिजिट ऊपर नीचे कर दूँ तो एक थर्ड पर्सन का वो नंबर आ गया।
1: बिल्कुल।
0: अब उससे मैं अगर आपसे जितना फेमिलियर हूँ मैं उस लहजे में बात करूँ तो वो तो जानता नहीं है। यहाँ तक बात करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एग्जाम्पल तौर पे हम एक दूसरे से सबको बहुत पहले से जानते हैं, तो अगर कुछ समय आप रिप्लाई नहीं करेंगे हमारा तो हम आक्रोश में आके आपको कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वही चीज़ जो तीसरे पर्सन को कह रहे हैं हम इग्नोरेंस में कि हमने नंबर ही गलत डाला है, तो वो अपराध की श्रेणी में चले जाता है, वो बुलिंग की श्रेणी में चले जाएगा, हैरेसमेंट की श्रेणी में चले जाएगा, जिस जो भी आपने कहा हो उस पर डिपेंड करता है वो किस श्रेणी में जाएगा। तो उस हिसाब से चीज़ें अवेलेबल बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं।
1: साइबर अपराध की अगर हम बात करें तो किन किन चीजों को हम साइबर अपराध की श्रेणी में ला सकते हैं?
0: सिंपल में हम बात करें, जो भी चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के उससे हों उनको आप साइबर अपराध में ले सकते हैं, भले ही वो फ़ोन का सिंपल सा मैसेज हो, इंटरनेट पे वीडियो शेयर हो रहा हो, सोशल मीडिया एप्स उनका उपयोग हो।
1: हैकिंग है, फिशिंग है, पहचान की चोरी है, इन सब के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: देखिए हैकिंग को हम अगर आम भाषा में बताना चाहें तो हैकिंग है कि आपका डिवाइस बिना आपकी परमिशन के कोई उसको यूज़ कर रहा है, उसको हम हैकिंग में दे देते हैं। फिशिंग है, आप किसी ने चारा डाला, मछली फंसी तो फंसी, नहीं फंसी तो वो तो बहुत सारों को डाले, कोई ना एक तो मछली पकड़ में आ ही जाएगी। देखिए
1: और इतनी
0: आजकल एआई के
1: धोखाधड़ी।
0: मामले में डीप फेक बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो पहचान की चोरी इस श्रेणी में जाएगा। लेकिन क्योंकि अपन खुद को सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा प्रेजेंट कर चुके हैं कि और आपने अपना कंसेंट दे चुका है, जैसे अभी बीच में एक बहुत अच्छा ट्रेंड चला था गिबली ट्रेंड, जिसमें सब लोग अपनी एआई में फोटोज डाल के जिबली बना रहे थे, तो उस ट्रेंड के चक्कर में आपने आपकी खुद की जो पर्सनल फोटोज हैं वो आपने एआई सर्वर पे अपलोड करी और उसको बोला कि तुम इसको इस्तेमाल करके हमारी एआई इमेजेस बना के दो, तो कहीं ना कहीं तो ये आपको पता नहीं था कि वो एआई की फोटो आप यूज कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता था वो स्टोर भी करेगा। आपने उसको पूरा एक्सेस दे दिया उसको जहाँ पे इस्तेमाल करना है, ट्रेनिंग डेटा में हो, टेस्टिंग डेटा में हो, किसी में भी, वो एआई अब खुद के बेहतर सुधार के लिए या कहीं अपने डेटा में स्टोरेज तो है ही, उसमें वो रख के उसको कहीं ना कहीं यूज तो कर सकता है। और आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों की हम अगर बात करें तो डेटा चोरी एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जब आप आपके कंसेंट से ऐसी फोटोज देते हो, कुछ पर्सनल सीन्स भी होंगे जिनको आपने ट्रेंड में डालने के लिए किया होगा, तो वो सारी आपकी डिटेल्स विद फेस डेटा, बैकग्राउंड डेटा, कभी कभी तो अनजाने में ऐसी फोटोज भी अपलोड होती हैं जिसमें जियो लोकेशन टैग्ड हो, तो आपने बकायदा ये कि मैंने ये फोटो इस जगह इस समय इसके साथ ली, इस फोन से ली,
1: अच्छा
0: पूरा डेटा आपने एआई को दे दिया है।
1: अब वो जो चाहे तो इस्तेमाल करे, आपका तो उसने अभी बना के दे दिया एआई वाला, लेकिन फिर वो उसका कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो परमिशन मांगी जाती है और हम देते हैं, फिर अगर वो उसका गलत इस्तेमाल करें तो क्या वो भी साइबर अपराध में आएगा?
0: गलत इस्तेमाल किसी भी चीज का अपराध की श्रेणी में आएगा। अब अगर वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा रही है तो वो साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। बात यह है कि कोई कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, इवन गवर्नमेंट इसका दुरुपयोग नहीं करती, लेकिन उसके पास जो डेटा है उसको कोई और उठा के उसका दुरुपयोग करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उसकी सुरक्षा करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल। तो ये वायरस और मेलवेयर फैलाना भी एक साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, ये कैसे काम करता है?
0: देखिए वायरस और मेलवेयर जनरली फोन्स डिवाइसेस में रहेगा, वायरस और मेलवेयर अगर हम नॉर्मल बातचीत में बोलें तो अपने जिसमें नहीं आएगा। वायरस अलग अलग तरह के होते हैं, मेलवेयर भी अलग अलग तरह के होते हैं। हम अगर वायरस की इसमें ही बात करें तो आपके डिवाइस को इन्फेक्ट कर देना, उसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक मान लेते हैं सबसे इजीएस्ट एग्जांपल, आपको मेल आया, आपने लिंक पे क्लिक किया, वायरस डाउनलोड हो गया, उससे अब वो वायरस किस तरह का उस पर डिपेंड करता है, या तो वो आपके फ़ोन को स्लो कर देगा, कहीं ना कहीं डेटा यूज़ करने लगेगा, डेटा माइनिंग करने लगेगा, या फिर मोस्टली देखा जाता है कि बिटकॉइन माइनिंग या क्रिप्टो माइनिंग में भी कहीं ना कहीं वो आपके फ़ोन के रिसोर्सेज को यूज़ करने लगता है। वायरस मेलवेयर दोनों से हो सकता है, कहीं ना कहीं वो आपका डेटा चुरा के अपने पास लॉक कर लेगा, वो रैनसमवेयर में आ जाता है कि मतलब वायरस मेलवेयर का मिक्सचर ही रहेगा रैनसमवेयर, जिसमें वो आपका डेटा को इनक्रिप्ट ऐसा कर देगा कि आपको खुद का डेटा एक्सेस करने के लिए जिसने भी डाला है उसको पैसा देना पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: और ऐसा केसेस गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी हुए हैं, प्राइवेट एजेंसी के साथ भी हुए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जिसमें डिपेंड करता है आपका डेटा कैसा था, सेंसिटिव था कि नहीं था, या कितना आपके लिए जरूरी है, फिर उस हिसाब से वो रहता है।
1: साइबर स्टॉकिंग भी एक शब्द है, ये क्या होता है?
0: साइबर स्टॉकिंग मैं अब आपको समझाऊंगा कि आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो आपका कोई क्लोज रिलेटिव है उसको किसी एक थर्ड पर्सन के बारे में जानना है जो आपसे रिलेटेड है लेकिन उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो पहले उससे आपसे उनकी आईडी मांगेगा,
1: ठीक है,
0: फिर उस आईडी की पूरी जांच पड़ताल करेगा कि ये इसकी ये वाली आईडी थी, अब इससे इसकी दूसरी सोशल मीडिया लिंक ढूंढते हैं, फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मैं पर्सनली अपनी चीजें ओपन नहीं करता हूँ इतनी डिटेल्स में सोशल मीडिया पे किसी भी माध्यम में, लेकिन आजकल का ट्रेंड ही है कि हर बच्चा इन्फ्लुएंसर की हम बात करें या हर एक जो भी एक ये आजकल चला रहा है सोशल मीडिया,
1: ब्रॉडकास्टर्स भी होते हैं वो भी अपने आप को उसमें बहुत ज्यादा बताना पसंद करते हैं कि उन्हें क्या किया है, पब्लिक फिगर होते हैं, नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं,
0: उनकी स्टॉकिंग में हम इसलिए नहीं गएंगे जो कि वो खुद ही इतना ओपन कर लेते हैं कि वो तो जिसको जो देखना चाहे देखे।
1: हाँ हाँ।
0: स्टॉकिंग वो होती है जो बंदा चाहे नहीं लेकिन फिर भी आप उसके पीछे पड़े रहो, उसके पूरे निकालते रहो, जैसे हम गए कहीं घूमने, हमने डाल दिया, सामने वाले ने देख लिया, अब उसका वो जो भी इस्तेमाल करे जिस भी सेंस में उसको लेना चाहे वो ले सकता है, लेकिन हमने तो हमारे क्लोज वालों को बताया ना, हमने सब लोग के लिए थोड़ी बताया, हमने तो सिर्फ क्लोज वालों के लिए ताकि उनको अपडेट रहे कि हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है, वो क्लोज वालों के लिए था लेकिन क्योंकि उसको थर्ड पर्सन देख रहा है इसलिए वो साइबर स्टॉकिंग में जाएगा।
1: तो ये मतलब कहना चाहिए कि आपके बिना अनुमति के आपके बारे में कोई जानकारी ना ले सके, फोन की भी ना ले सके, आपके डेटा की ना ले सके, ये सारी चीजें साइबर अपराध में आती। बात तो हो गई हमारी अपराध की, चुनौतियों की तो बात हो गई, कैसे बचा जाए?
0: अभी साइबर स्टॉकिंग की बात चल रही थी तो इसी के इसमें हम देंगे। जनरली जितने भी एप्स हैं, कोई सा भी सोशल मीडिया एप्स हो, उसमें एक यूजर के पास पूरे के पूरे राइट्स रहते हैं कि वो कौन सी चीज उसके किसको शेयर करना चाहे। बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेसी फंक्शंस ओपन रहते हैं। अब वो बाय डिफॉल्ट ओपन इसलिए रहते हैं ताकि जो कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज से अपनी जो बैकएंड की चीजें हैं जो कि कंप्यूटर्स को चाहिए डेटा, अब वो डेटा कहाँ से लाएंगे, वो डेटा यूजर्स से ही आएगा। एक कह सकते हैं कहानी है या प्रोवर्ब है, अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है तो प्रोडक्ट वो नहीं है, प्रोडक्ट आप हो। तो आपको चीजें तो सुविधाएं तो फ्री में दे रहे हैं या चीपेस्ट रेट में दे रहे हैं, पर प्रोडक्ट वो नहीं है, प्रोडक्ट तो आप
1: हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो उससे बचने के लिए आप प्राइवेसी फंक्शंस जितने भी हैं उनमें अपनी थोड़ी जागरूक बनने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। एक मेरे हिसाब से एक ग्रेजुएट बंदा या एक 12th pass 10th pass जो भी आज की डेट में श्रेणी में आते हैं, क्योंकि एजुकेशन आज की श्रेणी में इतनी स्ट्रांग हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी कि सब कुछ अब बताते हैं ओपनली। हमारे टाइम पे तो नहीं था, आपके टाइम पे भी आई एम श्योर नहीं होगा, लेकिन आजकल 7th 8th के बच्चों को एक अच्छी कोडिंग लैंग्वेज सिखाई जा रही है एजुकेशन करिकुलम में है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, हमारे टाइम पे वो नहीं था। तो एक आम उसको देख सकता है, लेकिन आज 5 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल डिवाइस है, उसका भी अपना एक आईडी है, तो उसके लिए तो वो सारी चीजें ओपन है, भले ही पेरेंटल कंट्रोल से हम कहीं ना कहीं ब्लॉक लगा लें, लेकिन उसके लिए वो सारी चीजें ओपन है और वो इतना सोचेगा भी नहीं कि मैं प्राइवेसी के बारे में इतना ध्यान दूं। लेकिन जब तक वो उस चीज को लॉक करने की एज में आएगा तब तक वो अपने बारे में बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज कर चुका होगा, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है आगे की उसमें बात करें।
1: एंटीवायरस उपयोग किया जा सकता है
0: इन टर्म्स ऑफ डिवाइसेस, एंटीवायरस मोबाइल्स की बात कर रहा हूँ तो इन टर्म्स ऑफ इसमें एंटीवायरस डालना इज मच रिस्कियर। वो कहते जरूर हैं कि जहर का तोड़ जहर होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बाय डिफॉल्ट जो आते हैं और आजकल तो वही इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अपन को डालने की जरूरत नहीं है। मैं विंडोज की बात करूंगा, विंडोज ओएस की सबसे ज्यादा आज की डेट में यूज होने वाला ओएस है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट भी हम बात करें कॉमन सेंस में हो चुका है। उसके अंदर एक है विंडोज डिफेंडर, वो डिफेंडर सबसे अच्छा एंटीवायरस को ब्लॉक कर सकता है, बहुत सारी फायरवॉल सारी सिक्योरिटीज रखता है, लेकिन अगर आप आपके डिवाइस में एंटीवायरस डालते हो तो वो उसी को ब्लॉक कर देता है।
1: अच्छा।
0: तो आपने जो मेन अपना बैकबोन थी, बैकअप था, जब उसी को बंद खत्म कर दिया तो फिर ये एंटीवायरस कैसे बचा पाएगा?
1: तो मतलब कहना चाहिए सतर्कता जरूरी है,
0: नॉलेज रखना इस फील्ड में ज्यादा जरूरी है कि कौन सा एंटीवायरस कंपनी या सॉफ्टवेयर आपका क्या डेटा एक्सेस करता है।
1: तो ये तो बात हो गई एक जानकार वाले व्यक्तियों के लिए, एक जो एक आम नागरिक है जो एक आम फोन इस्तेमाल करता है 15-20 हजार का करता है, और वो जो कंपनियां जब इन्हें बेचती है तो बहुत सारी चीजें बताती है कि दमदार पिक्चर है, दमदार ये है और ऐसा है वैसा, ऐसे लोग साइबर की घातक अपराध से कैसे बच सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल एक सरल शब्दों में बात करेंगे।
0: सरल शब्दों में उन लोगों के लिए कि एक लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लर्न तो करना पड़ेगा, बेसिक रखिए ज्यादा डिटेल में भले ही ना जाइए,
1: बहुत सारी चीजों को डाउनलोड मत करिए अनजान, मतलब
0: अगर आपको कहीं शक हो रहा है तो अपने किसी बच्चे से पूछ लीजिए, आसपास कोई थोड़ा बहुत जानकार हो उससे जानकारी ले लीजिए। मैं ही नहीं कह रहा हूँ आप सामने वाले की 100% बात मानो, बस थोड़ी जानकारी ले लो फिर अपने हिसाब से एक्ट करो।
1: ठीक है,
0: अगर आपको लगता है कि ठीक थी जानकारी तो उस हिसाब से एक्ट करो, नहीं थी तो अपने जो भी आपको लग रहा है उस हिसाब से एक्ट करो, लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल, एक कैलकुलेटर ऐप रहता है, आपके हिसाब से क्या परमिशन लगनी चाहिए कैलकुलेटर को?
1: कुछ नहीं, बस
0: नॉर्मली रहना चाहिए कैश स्टोरेज। लेकिन अगर एक कैलकुलेटर ऐप आपकी फोन परमिशन, स्टोरेज परमिशन, मैसेज परमिशन, लोकेशन परमिशन मांग रहा है और आप उसको यस यस यस यस करे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका कंसेंट दे रहे हो कि हाँ भैया मैं ओपन हूँ, आओ कर लो हैक या आओ ले लो मेरा पूरा डेटा।
1: ठीक है,
0: तो कहीं ना कहीं देखना तो अपन को पड़ेगा कि ये वाली ऐप है इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए।
1: ठीक,
0: कुछ कुछ ऐप्स ऐसी रहती हैं जो मांगती हैं, जिनको मैंडेटरी रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो एक उनके पास डेटा होना जरूरी है कि ये सही आईडी थी कि नहीं थी, ये सही एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम मेल की बात करते हैं तो अगर आपने नोटिस किया हो, आपने कहीं थर्ड कंप्यूटर में आप ही ने लॉग इन किया तो वो मेल आपको आएगा कि आपका ये वाली लोकेशन से हुआ, चाहे आप ही थे कि नहीं थे,
1: आप ही थे कि नहीं थे।
0: अब अगर आपने उसको चेक कर लिया और आपको पता है आप नहीं थे, तो आप तुरंत वहां पे लॉग कर सकते हो कि नहीं है मैं नहीं हूँ, इसको अपन हटा देते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: आप थे तो कोई बात ही नहीं,
1: बात ही नहीं। लेकिन ये अवेयरनेस भी होना चाहिए,
0: ये जानकारी अब आपको बढ़ना आना चाहिए कि ये मेरे को मिला है तो इस समय क्या इस्तेमाल कर सकते।
1: तो मतलब हमारे जितने भी फोन धारक हैं वो अगर कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं और वो अगर कोई जानकारी मांगता है तो बहुत ध्यान से पहले उसे पढ़े, फिर उसको यस कहें और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा इस समय एक शब्द का प्रचलन और चल रहा है, क्योंकि नई चीजें जिंदगी में आई हैं तो नए नए शब्दावली भी आई हैं, वो है एक डिजिटल अरेस्ट।
0: जी,
1: ये क्या चीज है, इसे किस तरह से प्रहार होता है और किस तरह से बचना चाहिए?
0: डिजिटल अरेस्ट इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी बात करें कुछ नहीं होता,
1: कुछ नहीं होता है,
0: लेकिन अब लोगों को डर रहता है। डिजिटल अरेस्ट के अंदर होता यह है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया, ऑनलाइन का जमाना सभी करते हैं, उसी का बेस माध्यम जो हम ज्यादातर केसेस जो डिजिटल अरेस्ट में देखे गए अभी तक उसमें बता रहे हैं, तो उसमें बेस ये होता है कि आपने एक्स जगह से आपने ऑर्डर किया, आपका ऑर्डर आया, इसके अंदर कुछ भी एक अवैध पदार्थ पाया गया है, तो इसके अंदर आप कस्टडी में हो, आप वीडियो कॉल करके आपको बताया जाएगा बकायदा पूरी ड्रेस में कि ये वाला कोट है, ये है, वो है, और उसमें कह देते हैं कि आपके कंप्यूटर डिवाइस या फोन को वीडियो कॉल फुल टाइम चालू रखो, किसी से संपर्क नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते,
1: मतलब वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पे नियंत्रण किया जाता है कुल मिला के। तो ये तो कुछ भी बात नहीं हुई, मनोवैज्ञानिक रूप से एक दबाव हो गया,
0: मेंटल प्रेशर इतना डाल दिया जाता है। हाँ, और कहीं ना कहीं वो चीज आपने ऑर्डर करी ही होती है।
1: हाँ, हाँ,
0: तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलती है।
1: हाँ,
0: तो उसके चक्कर में
1: ऐसे में क्या करना चाहिए?
0: सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है मेरे हिसाब से ऐसे में, तो अगर फोन डिवाइस है तो एयरप्लेन मोड, कंप्यूटर है तो मॉडम बन।
1: अच्छा, ऐसे में पुलिस की कितनी सहायता लेनी चाहिए, क्या सच में बताना चाहिए? कई लोग बता नहीं पाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण की बात करूं, अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में ये बात भी आई थी कि अचानक से आपके पास एक वीडियो कॉल आता है, खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स हो गए या यंगस्टर्स होते थे, तो उनके साथ आया, फिर उन्होंने अश्लील वीडियो दिखाया वहां से, तुरंत वो हो गया कि नहीं, अब इसमें आप आ गए हैं, आप पैसे दीजिए या आप ये करिए तो हम आपका नहीं तो वीडियो लीक कर देंगे। ये जो चीजें हुई हैं ये क्या है, इससे कैसे बचें हमारे श्रोता?
0: जब आपने किया ही नहीं है तो वीडियो वायरल होकर क्या ही होगा?
1: पुलिस की सहायता लेना चाहिए,
0: जरूर लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस करते इसलिए नहीं है जो कि खुद डर जाते हैं कि पुलिस हम पे दबाव डालेगी कि तुमने एक्चुअल में किया, तुरंत पुलिस की सहायता ली जाए, FIR की जाए नजदीकी जो भी साइबर कार्यालय है वहाँ।
1: सबसे पहले तो अपना डिवाइस बंद कर दिया जाए कुल मिला के।
0: नहीं, डिवाइस बंद नहीं करना, जो सामने वाले से वीडियो आए पहले तो उसको ब्लॉक कर दो। अगर उसके पास आपका कुछ डेटा है तो जो भी आपके क्लोज में लोग थे या आपका फ्रेंड सर्कल है उनको सूचित कर दो कि भैया मेरे साथ ये चीज हो रही है, अगर आपके पास कोई पैसे लेने के लिए आता है तो मत देना, ताकि आप खुद को भी सेफ साइड कर लो और सामने वाले को भी सेफ साइड कर लो। और मेरा मानना तो ये है, जो दूसरा साइड है जिसके साथ नहीं हुआ है लेकिन वो क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में है, तो भैया अगर आप इतने अच्छे फ्रेंड सर्कल में हो या क्लोज में हो तो उनके जिसका भी जो भी एरर आ रहा है, जैसे मान ले बहुत सारे वीडियो कॉल्स में देखा जाता है कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है हॉस्पिटल में पैसे सेंड कर दो,
1: जी जी जी,
0: या मेरे को यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया मैं यहाँ पे पैसे नहीं लाया मेरे को पैसे सेंड कर दो
1: जी।
0: तो जो उनका रिलेटिव हो, जैसे मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी को ही फोन लगा के बोल दो आंटी तबीयत खराब है कि नहीं है, मेरे पास ये फोन आया था इसलिए मैं कन्फर्म कर रहा हूँ, अगर है जरूरत है तो आप जरूर सेंड करो, लेकिन जब आंटी ही मना कर दे कि नहीं बेटा मैं तो सस्त हूँ, घर पे हूँ, आ जाओ मिल लो, बहुत दिनों से बात नहीं हुई,
1: तो फिर बिल्कुल तुरंत उस चीज को चेक करें और फिर उसके बाद पहले उस बात पे पूरी तरीके से भरोसा करें, उसकी तहकीकात करें, फिर उसके बाद काम करें। क्या कानूनी जो बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या कुछ इसके लिए बदलाव भी हुए हैं, कुछ नियम कानून बने हैं भारतीय?
0: कानून तो बहुत सारे बने हैं, कॉमन पर्सपेक्टिव से देखें तो उन कानून का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ बैक एंड सपोर्ट नहीं होगा तो फिर आप जो गलत पक्ष है उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दोगे कि हम तो कुछ भी करें, हम पे कोई निगरानी नहीं होगी, हम पे कोई एक्शन नहीं होगा। बहुत सारे लोग अब ओपन हो चुके हैं कि हमारे साथ ये चीज हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में फिर भी हम देखा जाए या एक इमोशनल मेंटल प्रेशर के उसमें देखा जाए, बहुत सारे लोग नहीं बताते अभी भी, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मैं कहूँगा 20-25% चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। अब वो इतनी अच्छी ओपन हो चुकी हैं कि टाइम के साथ धीरे धीरे बाकी चीज़ें भी ओपन होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों पर अब कंट्रोल आया है।
1: ओपन वाईफाई हमने आजकल देखा है कि रेलवे स्टेशन पे हो गया है, सार्वजनिक क्षेत्र
0: पे हो गया है,
1: सब जगह आजकल मिलने लगा है, तो क्या ऐसी जगह से कई लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलिए हमें
0: नेट मिल गया,
1: फ्री नेट मिल रहा है तो उसका उपयोग कर लिया जाए। अगर आप ऐसी जगह पर नेट एक्सेस करते हैं तो किन चीजों की सावधानी बहुत जरूरी है?
0: मेरा तो ये सुझाव रहेगा ऐसी जगह पे नेट का उपयोग ना ही करो।
1: ठीक है,
0: अगर आपके पास मान लेते हैं डिवाइस में नेट खत्म हो गया, अपन को ऑनलाइन किसी चीज की जरूरत है, भैया रिचार्ज करा लो। डेटा सिक्योरिटी बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
0: ये नहीं कह रहा हूँ हर नेटवर्क में वो रहता है कि आपका डेटा हैक हो जाएगा, लेकिन ओपन नेटवर्क में अगर आप चाहो तो कोई भी एक बंदा आपके डिवाइस को चेक कर सकता है कि वो ओपन डिवाइस से कनेक्टेड है, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इन अ सेंस एक व्हाइट हैट और एक रेड हैट हैकर्स होते हैं। मैंने जो कि पूरा कोर्स किया है इस फील्ड में तो मैं बता सकता हूँ, जो हैकिंग फील्ड होती है, हमने एक एक्सपेरिमेंट सर ने कराया था हमारे, उनने अपना वाईफाई ओपन करवा दिया था, और क्योंकि हमारे पूरे बैच में बहुत सारे लोग थे तो कुछ लोगों ने कनेक्ट किया, उनने सबसे सिंपल सा एक चीज बोली, उनने ये डिस्क्लोज नहीं किया था कि ये मेरा वाईफाई नेटवर्क है आप इसको यूज करो, उनने बस नॉर्मल सा कमांड दिया था कि आप आपके क्लोज बंदे को, जो भी आपके क्लास में ही बैठा उसी बंदे को एक पर्टिकुलर ये वाला मैसेज करो। वो मैसेज भी बहुत सिंपल था कि आज मैं इस क्लास में आया हूँ, हमने कल ये सीखा था, नॉर्मल सी समरी थी। जिन लोगों ने उस वाईफाई से कनेक्ट किया था उन लोगों के मैसेज पहुंचे ही नहीं, वो बीच में इंटरप्ट हो गए और उनके पास तीसरा मैसेज पहुंचा जो सिंपल सा एक स्टेटमेंट था, ये गलत है, मुझे नहीं पता मैं एब्सेंट था, सिर्फ मल सा इतना मुझे फंसाया जा रहा है, बस इतनी सी तीन चार लाइनें थी उसमें। तो जो दूसरा वाला था, ये तो मैंने किया नहीं, ये कैसे हुआ, ये सिंपल सा उनने हमें एक बेसिक उनने रन डाउन दिया था कि ये भी हो सकता है अगर आप मेरे ओपन नेटवर्क से कनेक्ट करो। अब क्योंकि मैं हूँ मैं मिसयूज नहीं करूंगा, लेकिन सामने वाला क्या करेगा इसका आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल, एआई से भी अभी बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, इससे किस तरह से बचें और किस तरह से जो हमारे जो श्रोता हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखें?
0: मैम एआई का सबसे बड़ा अभी जो सबसे वो चल रहा है एक तो एआई वॉइस क्लोनिंग, जिसमें आपको परिजन की आवाज में फोन किया जाता है कि हमें एक्स वाई जेड की जरूरत है, कम से कम हेल्प कर दो, कुछ भी कर दो। दूसरा है डीप फेक। डीप फेक में आपको वीडियो कॉल आता है सामने वाले की शक्ल से, जो भी आपका परिजन है उसी की शक्ल आपको वीडियो कॉल में दिखेगी और उन्हीं का आपको वॉइस भी मिलेगी डीप फेक के अंदर, वो आपसे हेल्प मांगते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं बिना चीजें सोच के हम उनकी हेल्प भी कर देते हैं। वही बात है कि क्रॉस चेक करना यहाँ पे भी जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर हम आपको वीडियो कॉल पे या फोन के माध्यम से कोई ऐसी चीजें मांगता है तो कहीं ना कहीं आज की दुनिया में आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत तो बढ़ चुकी है। इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, अगर हम किसी भी साइबर चीज से बचना चाहें तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, या फिर ओटीपी ना शेयर करना हो गया, अननोन लिंक्स पे क्लिक करना ना हो गया, सिक्योर पासवर्ड होना शुरू हो गया। लेकिन एआई से कैसे बचें, तो सबसे बेस्ट इज टू स्टेप वेरिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्रॉस चेकिंग, इन टर्म्स ऑफ नॉट ओटीपी या मेल यहाँ पे भी आएगा वहाँ पे भी आएगा, वो तो अपनी जगह ठीक ही है, लेकिन एआई खुद एक मशीन है और जो आपके पास ओटीपी भेज रहा है वो भी एक मशीन है। वो कहते हैं कि एआई में जो आप नंबर डालोगे वो रैंडम से आएंगे, लेकिन एआई एक मशीन है। बीच में एक दो हफ्ते पहले एक रिसर्च हुई है
1: जी,
0: रिसेंटली रिसर्च है, उसमें ये साबित किया उसने एक सिंपल से कोड से कि एआई जो नंबर जनरेट करता है ये रैंडम नहीं होते, कोई भी इसको रिवर्स इंजीनियर करके एक्चुअल ओटीपी जो आपको गई है वो भी निकाल सकता है. और वायरस और मेलवेयर के चक्कर में जो कि आपके फोन के अंदर जो भी मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं वो तो उसके पास पहुंच ही रहे हैं, तो उसको वो रिवर्स इंजीनियर करने की भी जरूरत नहीं है. आपको बस वो उस लिंक फोटो पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक किया, वायरस आ गया.
1: जो साइबर अपराध करते हैं और जो लोग इस तरह से दिमाग लगाते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं?
0: भैया कम कर दो, सरकार सख्त हो चुकी है.
1: अच्छा.
0: पहले भले ही फ्री रेन थी, हाँ. अब वो फ्री रेन नहीं बची है
1: जी.
0: अब हर सरकार, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल भी हम बात करें,
1: right.
0: तो हर सरकार बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है और बहुत जल्द जल्द एक्शन ले रही है.
1: तो आप भले कितनी ऊंची उड़ान उड़ लें, आपके पर
0: कभी ना कभी तो फंसोगे. डिजिटल फुटप्रिंट अपना हर समय छूट जाता है, भले ही वो हैकर का हो, आपका हो, मेरा हो, डिजिटल फुटप्रिंट हर जगह है.
1: बिल्कुल.
0: अब उस डिजिटल फुटप्रिंट को यूज सामने वाला कैसे करेगा
1: जी?
0: पॉजिटिव में करेगा तो वो उसकी बात अलग है, नेगेटिव में करेगा तो उसकी बात अलग है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट वही है कि एक चोरी के सीन में कुछ ना कुछ सबूत मिलता है. इन टर्म्स ऑफ डिजिटल हम क्राइम की बात करें, साइबर की बात करें, तो डिजिटल फुटप्रिंट आपका कहीं ना कहीं मिल ही जाता है.
1: तो कुल मिलाकर ये कहने की बात है कि जो हमारे जो श्रोता है वो इस बात का ध्यान रखें कि जितने अच्छे तरीके से आप अपने फोन का उपयोग करते हैं, उसको संभाल कर रखते हैं, उतनी ही सतर्कता, उतनी ही जागरूकता भी जरूरी है. वास्तविक बने रहिए. कुछ भी ऐसा लगता तो पहले क्रॉस चेक करें. ज्यादा फेमस होने के चक्कर में अपनी चीजों को डिस्क्लोज ना करें. सेफली रखें, अपने पासवर्ड अच्छे से रखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने और अपनों के साथ रहें.
0: मैम मैं कहना चाहूंगा जितने भी श्रोता हमको सुन रहे हैं, जो भी हैं, कभी भी अपनी ओटीपी या पर्सनल डिटेल, कार्ड का हो गया, सीवीवी हो गया, या कोई भी थर्ड पर्सन आपसे ओटीपी मांगे तो उसको ओटीपी कभी ना दीजिए. सबसे बेस्ट और सिक्योर मेथड अगर रखना है तो वो है ओटीपी का. आप दो ही मत. आपका जो रिस्क है हैक होने का या डेटा जाने का वो बहुत कम हो जाता है. अगर आपसे कोई मांगता है, वैसे तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, भले ही वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, आपसे ओटीपी मांगेगा ही नहीं. सबने अपने अपने डिस्क्लेमर डाल के रखें कि हमारी ओर से ओटीपी नहीं मांगा जाएगा. लेकिन अगर कोई बाई चांस मांगता भी है तो पहले तो आप उससे उसकी आईडी वगैरह ले लीजिए, फिर भी ओटीपी ना दीजिए. आईडी की फोटो लेके पुलिस में कंप्लेंट कर दो, लेकिन ओटीपी ना दो
1: जी.
0: सबसे बेस्ट सिनेरियो ये.
1: नो मतलब नो. बेहद सार्थक और विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: मुझे मौका दिया अपनी पक्ष रखने का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू.
1: ये रही हमारी आज की जानकारी टेक गुरु में कि किस तरह साइबर अपराध हैं, चुनौतियां हैं और उसमें कैसे सुरक्षा हो सकती है. परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुन्नानी का, और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैखवार. तो आज का कार्यक्रम बस यहीं तक, और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए.

आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेक गुरु। बने रहिए हमारे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

जोआओ डी बैरोस ब्रिटिश और बर्मी साम्राज्य के बीच एक पुर्तगाली जमींदार। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय इतिहास के सबसे विस्फोटक शरणार्थी संकटों में से एक को संभालने के लिए पुर्तगाली मूल के एक जमींदार पर भरोसा किया था। ये कहानी है जोआओ डी बैरोस की, जिनकी चटगांव सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित जागीर ब्रिटिश कंपनी और विस्तारवादी बर्मी साम्राज्य के बीच एक उच्च स्तरीय राजनयिक गतिरोध का केंद्र बन गई थी। ये नाटक सन 1785 में शुरू हुआ, जब अराकान पर बर्मी आक्रमण के बाद हजारों शरणार्थी ब्रिटिश कब्जे वाले चटगांव की ओर भागने लगे। इन हताश लोगों में केवूटी जैसे उच्च पदस्थ राजनीतिक विद्रोही और अराकान के दिवंगत राजा का परिवार भी शामिल था। तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर चार्ल्स क्रॉफ्ट्स उलझन में थे। वे इन शरणार्थियों को जिले के कम आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में बसाने के लिए संभावित श्रम शक्ति के रूप में चाहते थे, लेकिन उनके पास उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य संसाधन नहीं थे। लिमिटेड राज की स्थानीय सहयोगियों पर निर्भरता को दर्शाते हुए क्रॉफ्ट्स ने इन शाही शरणार्थियों को जोआओ डी बैरोस के घर में ठहराया। एक पुर्तगाली जमींदार के पास उन्हें रखकर कंपनी डी बैरोस को एक मानव ढाल और प्रशासनिक बफर के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि बर्मी जनरल वानकेचा, जिसने अभी-अभी अराकान जीता था, इस व्यवस्था से नहीं डरा। उसने क्रॉफ्ट्स को धमकी भरे पत्रों की एक श्रृंखला भेजी, जिसमें केवूटी और उनके अनुयायियों को तुरंत सौंपने की मांग की गई। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ जब अंग्रेजों ने बर्मी जनरल की धमकी को हल्के में लिया? क्रॉफ्ट्स ने शुरू में चटगांव बटालियन का एक हिस्सा नाफ नदी के मुहाने पर भेजा, लेकिन प्रांत के सुदूर कोनों में अनिश्चित काल के लिए सेना रखने का खर्च वो नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने जल्द ही उन्हें वापस बुला लिया। कमजोरी के इस संकेत को देखकर वानकेचा ने कंपनी के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और कंपनी की कई बंगाली प्रजा को मार डाला। शरणार्थियों को जल्द ही एहसास हो गया कि जोआओ डी बैरोस की शरण स्थली केवल खोखलेवादों का एक जाल थी। वे पहाड़ियों में भाग गए। केवूटी को अंततः बर्मी लोगों ने पकड़ लिया और मार डाला। अपनी मृत्यु से पहले उसने ब्रिटिश शासन पर एक मार्मिक आरोप लगाया। उसने कहा, जो लोग सुरक्षा के लिए भागे थे, उन्हें वो सुरक्षा और संरक्षा नहीं मिली जिसकी वे अंग्रेजों से उम्मीद कर रहे थे। डी बैरोस की देखरेख में मौजूद लोगों की रक्षा करने में विफलता के विनाशकारी परिणाम हुए। सुरक्षा की उम्मीद खो चुके कई शरणार्थी जीवित रहने के लिए लुटेरे और डाकू बन गए। इसी अराजकता के कारण सन 1787 में एक ब्रिटिश नागरिक जेम्स रवि की कुख्यात हत्या हुई। जोआओ डी बैरोस की कहानी हमें एक दिलचस्प सबक सिखाती है। विचारों के साम्राज्य में जब कोई राज्य अपने सबसे कमजोर मेहमानों की रक्षा करने में विफल रहता है, तो वो केवल अपना सम्मान ही नहीं खोता, वो अपनी सीमाओं पर व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता भी खो देता है। मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। आज हम आपसे चर्चा करेंगे पद्म भूषण से सम्मानित महान चित्रकार कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई के बारे में। साथियों, कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, कला समाज का दर्पण है, समय का दस्तावेज है और परिवर्तन का माध्यम है। और जब हम के शंकर पिल्लई के बारे में बात करते हैं तो केवल एक कलाकार के बारे में नहीं बोल रहे होते। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक युग के बारे में, एक आंदोलन के बारे में।
2: बिल्कुल, 31 जुलाई 1902 को केरल के छोटे से शहर कायमकुलम में जन्मे के शंकर पिल्लई ने अपने जीवन की शुरुआत बेहद साधारण परिस्थितियों में की थी। उनके पिता एक साधारण डाक कर्मचारी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन इस साधारण परिवार के बच्चे में छिपी थी एक असाधारण प्रतिभा, एक ऐसी प्रतिभा जो आगे चलकर भारत की पहचान बनी।
1: के शंकर पिल्लई ने कभी कोई औपचारिक कला शिक्षा नहीं ली, उनके हाथ में कोई महंगा ब्रश नहीं था, कोई विदेशी डिग्री नहीं थी, लेकिन था तो बस एक अटूट जुनून, चित्रकारी का जुनून, अभिव्यक्ति का जुनून, सच बोलने का जुनून। बचपन में वे दीवारों पर कोयले से चित्र बनाते थे, स्कूल की किताबों के हाशिए पर अपने शिक्षकों के कार्टून बनाते थे, और यही शौक, यही जुनून उन्हें मुंबई ले गया, सपनों के शहर में, जहां संघर्ष था, चुनौतियां थीं, लेकिन अवसर भी थे।
2: बिल्कुल, तो आइए आज हम आपको लिए चलते हैं के शंकर पिल्लई की जीवन यात्रा की ओर। एक ऐसी यात्रा जो शुरू होती है केरल के एक छोटे से गांव से और पहुंचती है पूरे भारत के दिलों तक। ऐसी यात्रा जिसमें है संघर्ष के अनगिनत पड़ाव, सपनों की उड़ान, असफलताओं का सामना और अंततः सफलता का वो शिखर जो आज भी हम सबको प्रेरित करता है।
1: केशव शंकर पिल्लई का जन्म 31 जुलाई 1902 को केरल के त्रावणकोर राज्य के कायमकुलम नामक छोटे से शहर में हुआ था। यह स्थान आलप्पुझा जिले में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बैकवाटर्स के लिए प्रसिद्ध है। उनका जन्म एक परंपरागत नायर परिवार में हुआ था, जो केरल की प्रमुख जातियों में से एक है। उनके पिता केशवर नायर एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे, वे डाक विभाग में काम करते थे और परिवार की आय बहुत सीमित थी। माता लक्ष्मी अम्मा एक धार्मिक और संस्कारी महिला थीं, जो घर परिवार की देखभाल करती थीं। परिवार में शंकर के अलावा और भी भाई बहन थे और सभी को एक साथ पालना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण था।
2: केरल उस समय शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी था और शंकर के माता पिता चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। हालांकि आर्थिक तंगी थी, फिर भी उन्होंने शिक्षा पर समझौता नहीं किया। शंकर बचपन से ही बेहद जिज्ञासु और कल्पनाशील थे। कायमकुलम की हरी भरी प्रकृति, नारियल के पेड़, बैकवाटर्स की नावें और स्थानीय बाजार का रंगीन जीवन, ये सब उनकी कल्पना को उड़ान देते थे। वे घंटों बैठकर लोगों को देखते और उनकी विशेषताओं को अपने दिमाग में उतारते रहते थे।
1: उनकी माँ को याद है कि 5-6 साल की उम्र में ही शंकर घर की दीवारों पर कोयले से चित्र बनाते थे। एक बार उन्होंने अपने पिता का चेहरा दीवार पर बना दिया, जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। चेहरे की समानता इतनी सटीक थी कि लोग पहचान गए कि ये किसका चित्र है।
2: बिल्कुल, और माँ अक्सर चिंतित होती थी कि शंकर अपनी पढ़ाई की किताबों में भी चित्र बनाते रहते थे। गणित की किताब के हाशिए पर फूल, पत्ते, चिड़िया और लोगों के चेहरे बने होते थे। कभी कभी तो पूरा पन्ना ही चित्रों से भर जाता था और पाठ पढ़ने के लिए जगह नहीं बचती थी।
1: शंकर की प्रारंभिक शिक्षा कायमकुलम के स्थानीय स्कूल में हुई। वे पढ़ाई में औसत दर्जे के छात्र थे। गणित उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन इतिहास और भूगोल में उनकी रुचि थी, क्योंकि इन विषयों में चित्र और नक्शे होते थे। स्कूल के शिक्षक उनसे परेशान रहते थे क्योंकि वे कक्षा में ध्यान ही नहीं देते थे। एक बार संस्कृत के शिक्षक पाठ पढ़ा रहे थे और शंकर अपनी कॉपी में कुछ बना रहे थे। शिक्षक ने गुस्से में कॉपी छीन ली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शंकर ने उनका ही एक बेहद सटीक कार्टून बनाया है जिसमें वे संस्कृत श्लोक बोलते हुए दिख रहे हैं, तो वे हंसे बिना नहीं रह सके। उस दिन के बाद वे शिक्षक शंकर को प्यार से छोटे चित्रकार कहने लगे।
2: जी हाँ, और स्कूल में शिक्षक के कुछ करीबी दोस्त थे जो उनकी कला के बेहद प्रशंसक थे। वे अक्सर शंकर से अपने चित्र बनवाते और अपने घर ले जाकर रखते थे। धीरे धीरे पूरे स्कूल में शंकर की प्रतिभा की चर्चा होने लगी। दसवीं कक्षा में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। स्कूल में वार्षिक उत्सव था और प्रतियोगिता भी रखी गई थी जिसमें विद्यार्थियों को महात्मा गांधी का चित्र बनाना था। शंकर ने जो चित्र बनाया वो इतना जीवंत था कि देखने वालों को लगा जैसे गांधी जी खुद वहां खड़े हों। उन्हें प्रथम पुरस्कार भी मिला और स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, ये लड़का एक दिन देश का नाम रोशन करेगा।
1: हाई स्कूल पूरा करने के बाद शंकर ने त्रावणकोर के महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया। ये केरल का एक प्रतिष्ठित कॉलेज था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए शंकर को छात्रवृत्ति मिली थी, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं थी और उन्हें बहुत कठिनाई से अपना खर्च चलाना पड़ता था। कॉलेज में शंकर ने बीए में दाखिला लिया, लेकिन उनका मन पढ़ाई में कम और चित्रकारी में ज्यादा लगता था। वे कक्षाओं में बैठकर प्रोफेसरों के कार्टून बनाते रहते। एक बार इतिहास के प्रोफेसर पढ़ा रहे थे और शंकर उनका चित्र बना रहे थे। प्रोफेसर ने पूछा, शंकर मैं क्या पढ़ा रहा हूं? शंकर खड़े हो गए और बोले, सर मुगल साम्राज्य के बारे में। प्रोफेसर ने कहा, अच्छा तो तुम सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? शंकर ने झिझकते हुए अपनी कॉपी दिखाई। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, कला अच्छी है लेकिन परीक्षा में ये नहीं चलेगा।
2: जी हाँ बिल्कुल, कॉलेज के दिनों में शंकर को अपनी आर्थिक स्थिति से भी बहुत जूझना पड़ा था। कई बार उनके पास किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। वे दोस्तों से किताबें उधार लेते और पूरी रात जाग कर पढ़ते थे। खाने पीने में भी कटौती करनी पड़ती थी। कभी कभी तो केवल चाय और बिस्किट से ही उनका दिन गुजरता था। लेकिन इन कठिनाइयों ने शंकर की हिम्मत नहीं तोड़ी। उन्होंने कॉलेज की पत्रिका के लिए चित्र बनाने शुरू कर दिए। कॉलेज के वार्षिक समारोह के पोस्टर भी वे बनाते थे और धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी।
1: एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और कहा, शंकर तुम्हारी कला अद्भुत है लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो डिग्री कैसे मिलेगी? शंकर ने जवाब दिया, सर मुझे लगता है कि कला ही मेरा असली विषय है, मैं इसी में अपना भविष्य बनाना चाहता हूँ। अंततः शंकर ने अपनी डिग्री तो पूरी कर ली, लेकिन उनके मन में स्पष्ट था कि उन्हें एक कलाकार बनना है, किसी ऑफिस में बाबू नहीं। 1920 के दशक के अंत में जब शंकर की उम्र लगभग 25-26 साल की थी, उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने गांव और परिवार को छोड़कर मुंबई जाने का फैसला लिया। उस समय मुंबई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर था और यहाँ अवसरों की कमी नहीं थी।
2: लेकिन ये निर्णय इतना आसान नहीं था। उनके पिता चाहते थे कि शंकर कोई सरकारी नौकरी कर ले और परिवार को आर्थिक सहारा दे। माँ को डर था कि बड़े शहर में उनका भोला भाला बेटा कैसे रहेगा, लेकिन शंकर ने अपने सपनों को पूरा करने की तो ठान ली थी।
3: ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान।
2: मुंबई पहुँचने पर शंकर के पास बहुत कम पैसे थे। वे दादर के एक छोटे से कमरे में रहने लगे जहाँ तीन और लोग रहते थे। कमरा इतना छोटा था कि चारों लोगों के बिस्तर फर्श पर एक के बाद एक लगाने पड़ते थे। शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। शंकर को रोजगार नहीं मिल रहा था। उन्होंने कई जगहों पर अपने चित्र दिखाए लेकिन किसी ने भी उन्हें उस वक्त काम नहीं दिया।
1: एक समय ऐसा आया जब उनके पास खाने के पैसे भी नहीं बचे। उन दिनों की याद करते हुए शंकर ने बाद में कहा था, मुंबई की सड़कों पर मैंने भूख का असली मतलब समझा, लेकिन हर भूखी रात के बाद मुझे लगता था कि अगली सुबह जरूर कुछ बेहतर होगा। जब हालात बहुत बिगड़े तो शंकर को जीवन चलाने के लिए कोई भी काम करना पड़ा। उन्होंने पहले एक कपड़ा मिल में क्लर्क की नौकरी की। काम बहुत नीरस था। रोज लेजर में आंकड़े दर्ज करने होते थे, लेकिन वेतन नियमित मिलता था और कम से कम पेट भर भोजन तो हो ही जाता था।
2: जी हाँ, और मिल में काम करते हुए भी शंकर ने अपनी कला का अभ्यास जारी रखा। शाम को काम के बाद वे अपने छोटे से कमरे में घंटों स्केच बनाते रहते थे। वे मुंबई की सड़कों पर घूमते, लोगों को देखते और उनके चेहरों को अपनी ड्राइंग बुक में उतारते थे। इसके बाद उन्होंने रेलवे में भी कुछ समय काम किया। ये नौकरी थोड़ी बेहतर थी क्योंकि इसमें कभी कभार यात्रा करने का मौका मिलता था। ट्रेन में बैठकर शंकर विभिन्न यात्रियों के चित्र बनाते। किसान, व्यापारी, छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं, हर चेहरे में एक कहानी होती थी और शंकर उस कहानी को पकड़ने की पूरी कोशिश करते थे।
1: 1932 का साल शंकर के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बना। एक दिन उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध अखबार द फ्री प्रेस जर्नल के दफ्तर जाने का साहस किया। उन्होंने अपने कुछ बेहतरीन कार्टून एक फाइल में रखे और संपादक से मिलने की इच्छा जताई।
2: रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन शंकर ने हिम्मत नहीं हारी। वे पूरे दिन वहां बैठे रहे। शाम को जब संपादक बाहर निकले तो शंकर ने उनके सामने अपनी फाइल रख दी। संपादक ने कहा, तुम्हारी कला में दम है, लेकिन कार्टून बनाना सिर्फ अच्छी ड्रॉइंग नहीं है, इसमें समाज को समझना पड़ता है, राजनीति को समझना पड़ता है और सबसे जरूरी व्यंग को समझना पड़ता है। क्या तुम ये कर सकते हो?
1: शंकर ने जवाब दिया, सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। संपादक ने कुछ सोचा और फिर बोले, ठीक है, अगले हफ्ते मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक बैठक है जिसमें पानी की कमी के मुद्दे पर चर्चा होगी, इस पर एक कार्टून बनाकर लाओ। शंकर ने पूरे हफ्ते मेहनत की। उन्होंने अखबार पढ़े, पानी की समस्या को समझा और एक शानदार कार्टून बनाया जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर को प्यासे मुंबई वासियों से घिरे हुए दिखाया गया था, जबकि कमिश्नर खुद नारियल पानी पी रहे थे।
2: क्या बात है। और जब शंकर ये कार्टून लेकर गए तो संपादक बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बधाई हो शंकर, तुम्हारा ये कार्टून कल के अखबार में छपेगा। और अगले दिन जब शंकर ने अपना पहला प्रकाशित कार्टून देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वर्षों के संघर्ष के बाद उनकी मेहनत रंग ला रही थी। द फ्री प्रेस जर्नल में शंकर के कार्टून नियमित रूप से छपने लगे। शुरुआत में उन्हें प्रति कार्टून कुछ रुपए मिलते थे, जो उनकी रेलवे की नौकरी से ज्यादा नहीं थे, लेकिन संतुष्टि उन्हें बहुत मिलती थी।
1: धीरे धीरे शंकर के कार्टून मुंबई में चर्चा का विषय बनने लगे। लोग सुबह अखबार खोलते और सबसे पहले शंकर का कार्टून देखते। उनके कार्टूनों में समाज की विसंगतियां, राजनीतिक पाखंड और ब्रिटिश शासन की नीतियों पर तीखा व्यंग होता था। 1930 के दशक में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। शंकर ने अपनी कला को इस राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। उनके कार्टून ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को उजागर करते थे।
2: जी हाँ, और एक बार तो उन्होंने एक कार्टून बनाया जिसमें ब्रिटिश वायसराय को एक विशाल हाथी के रूप में दिखाया गया था जो भारत के गरीब किसानों को कुचल रहा था। ये कार्टून इतना प्रभावशाली था कि ब्रिटिश अधिकारियों ने अखबार के संपादक को धमकी तक दे दी, लेकिन संपादक ने शंकर का साथ दिया और कहा कि कला की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कॉमन मैन का जन्म एक ऐतिहासिक पल। 1930 के दशक के मध्य में शंकर ने अपने सबसे प्रसिद्ध कार्टून चरित्र कॉमन मैन की रचना की। ये विचार उन्हें कैसे आया, इसके बारे में भी एक बेहद दिलचस्प कहानी है।
1: एक दिन शंकर मुंबई की सड़क पर चल रहे थे। उन्होंने देखा एक साधारण आदमी धोती कुर्ता पहने, चश्मा लगाए, थोड़ा गंजा, बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, न खुशी न गम, बस एक शांत स्वीकृति कि जो होना है वो होगा। शंकर ने सोचा कि ये चेहरा तो करोड़ों भारतीयों का चेहरा है, वो आम आदमी जो हर रोज संघर्ष करता है, सरकारी दफ्तरों में धक्के खाता है, महंगाई से परेशान होता है, राजनेताओं के वादे सुनता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता।
2: बिल्कुल, जब शंकर ने पहली बार इस चरित्र को कार्टून में इस्तेमाल किया तो पाठकों की प्रतिक्रिया अद्भुत थी। लोगों ने लिखा, ये तो मैं हूँ, ये मेरे पिता हैं, और कईयों ने लिखा, ये तो हर भारतीय है। कॉमन मैन भारत के आम आदमी का प्रतीक बन गया। शंकर के हर कार्टून में ये चरित्र किसी न किसी रूप में दिखाई देता। कभी महंगाई से परेशान, कभी भ्रष्ट नेताओं से पिसता, कभी सरकारी योजनाओं का इंतजार करता और कभी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में डूबा हुआ।
1: आज 80 साल बाद भी कॉमन मैन भारतीय कार्टून का सबसे पहचाना जाने वाला चरित्र है। जैसे जैसे शंकर की ख्याति बढ़ी, अन्य अखबारों ने भी उन्हें काम के लिए बुलाया। 1948 से पहले शंकर ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी काम करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कार्टून बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके कार्टून बहुत चर्चित रहे। हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल सभी शंकर के कार्टूनों में नजर आते थे।
2: बिल्कुल, लेकिन शंकर का असली फोकस भारत की समस्याओं पर था। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सब उनके कार्टूनों के विषय थे। लेकिन उनके कार्टून कभी नकारात्मक नहीं होते थे। उनमें हमेशा एक आशा की किरण होती थी, एक विश्वास की भारत बेहतर होगा। 1940 के दशक में जब भारत स्वतंत्रता के करीब पहुंच रहा था, शंकर के कार्टून और भी तीखे और प्रभावशाली हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके कार्टून ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मौन लेकिन शक्तिशाली हथियार बन गए थे।
1: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेता शंकर के कार्टूनों की सराहना करते थे। गांधी जी ने एक बार कहा था, शंकर का कार्टून हजार शब्दों से ज्यादा प्रभावी है।
2: और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ये शंकर के जीवन का भी एक नया अध्याय था। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अपनी एक पत्रिका शुरू करनी चाहिए जो पूरी तरह से कार्टून और व्यंग पर आधारित हो। इसके लिए पैसों की जरूरत थी। शंकर ने अपनी कुछ जमा पूंजी लगाई और कुछ मित्रों से उधार ले लिया। 1948 में उन्होंने शंकर्स वीकली नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत कर दी। पहला अंक छपा तो शंकर की धड़कनें और तेज हो गईं। क्या लोग इसे पसंद करेंगे? क्या ये बिकेगी? उनकी सारी पूंजी दांव पर लगी थी।
1: लेकिन उनकी चिंता निराधार निकली। पहला अंक हाथों हाथ बिक गया। लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की। अखबारों में समीक्षाएं छपी। एक नई तरह की पत्रिका, व्यंग का अद्भुत नमूना। शंकर ने भारतीय पत्रकारिता में नया अध्याय जोड़ा। शंकर्स वीकली जल्दी ही भारत की सबसे लोकप्रिय पत्रिकाओं में से एक बन गई। हर सप्ताह लाखों लोग इसका इंतजार करते थे। पत्रिका केवल कार्टून नहीं थी, इसमें राजनीतिक व्यंग, सामाजिक टिप्पणी, कहानियां, कविताएं और बच्चों के लिए एक अलग ही सेक्शन होता था।
2: और पत्रिका का एक विशेष आकर्षण यू सेड इट कॉलम था, जिसमें प्रसिद्ध लोगों के विरोधाभासी बयानों को एक साथ रखकर व्यंग किया जाता था। राजनेता जो आज कुछ कहते थे और कल उसके उलट बोलते थे, उनके दोनों बयान को एक साथ छापा जाता था। ये बेहद लोकप्रिय था और राजनेताओं को सावधान रहने पर मजबूर भी करता था। पत्रिका में नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मुरारजी देसाई सभी के कार्टून छपते थे। लेकिन शंकर का व्यंग कभी व्यक्तिगत नहीं होता था। वे नीतियों और कार्यों पर टिप्पणी करते थे, व्यक्तियों पर हमला नहीं करते थे।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू और शंकर पिल्लई के बीच एक अनोखा रिश्ता था। नेहरू शंकर के कार्टूनों के बड़े प्रशंसक थे, हालांकि उनमें अक्सर खुद नेहरू का मजाक बनाया जाता था। एक बार शंकर ने एक कार्टून बनाया जिसमें नेहरू को दिखाया गया था कि वे एक साथ बहुत सारी चीजें संभालने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ उनके हाथ से गिर रहा है। ये उनकी अति व्यस्तता पर व्यंग था। जब ये कार्टून छपा तो नेहरू के कुछ करीबी सहयोगियों ने उन्हें शिकायत की कि शंकर बहुत ज्यादा आजादी ले रहे हैं। लेकिन नेहरू ने हंसते हुए कहा, शंकर बिल्कुल सही कह रहा है, मैं वाकई बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका कार्टून मुझे याद दिलाता है कि मुझे प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए।
2: जी हाँ, और एक और दिलचस्प किस्सा है। एक बार नेहरू ने शंकर को 3 मूर्ति भवन प्रधानमंत्री निवास में बुलाया। शंकर घबराए हुए थे कि शायद किसी कार्टून पर आपत्ति होगी, लेकिन नेहरू ने मुस्कुराते हुए कहा, शंकर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारे कुछ कार्टून बहुत पसंद आए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी मूल प्रतियां मुझे दे दो। मैं उन्हें अपने कमरे में लगाना चाहता हूँ। क्या था, शंकर हैरान रह गए। प्रधानमंत्री अपने ही मजाक उड़ाने वाले कार्टून अपने कमरे में लगाना चाहते हैं। नेहरू ने समझाया, ये कार्टून मुझे याद दिलाते हैं कि मैं भी एक साधारण इंसान हूँ और आम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
1: शंकर भी नेहरू के विजन की सराहना करते थे, हालांकि उनके कार्टूनों में नेहरू की आलोचना जारी रहती थी। नेहरू जी की मृत्यु के बाद शंकर ने एक बहुत मार्मिक कार्टून बनाया जिसमें कॉमन मैन नेहरू की तस्वीर के सामने सिर झुकाए खड़ा था और आंखों में आंसू थे। कैप्शन था, गुरु चला गया। ये कार्टून देखकर करोड़ों भारतीयों की आंखें नम हो गईं।
2: शंकर ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो बच्चों के लिए सस्ती और अच्छी किताबें प्रकाशित करे। साल 1957 में उन्होंने चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट CBT की स्थापना की। शुरुआत में काफी मुश्किलें आईं। प्रकाशक कहते थे कि बच्चों की किताबों में पैसा नहीं है, लेकिन शंकर ने तब भी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पैसा लगाया और पहले किताबें प्रकाशित की।
1: CBT की किताबें रंगीन और आकर्षक होती थीं। कहानियां भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित होती थी। कीमत इतनी कम रखी जाती थी कि मध्यम वर्ग का बच्चा भी खरीद सके। धीरे धीरे CBT की किताबें लोकप्रिय हो गईं। आज CBT ने 3000 से ज्यादा किताबें प्रकाशित की हैं और करोड़ों बच्चों तक पहुंची हैं।
2: शंकर खुद भी बच्चों के लिए कहानियां लिखते थे और चित्र बनाते थे, लेकिन शंकर का सबसे बड़ा सपना था बच्चों के लिए एक ऐसी जगह बनाना जहां वे अपनी रचनात्मकता को खुलकर अभिव्यक्त कर सकें, जहां वे कला, संगीत, नृत्य, थिएटर सीख सकें, जहां कोई परीक्षा ना हो, कोई नंबर ना हो, बस सीखने का आनंद हो।
1: 1 नवंबर 1961 को बाल भवन का उद्घाटन हुआ। नेहरू खुद इस कार्यक्रम में आए। उन्होंने अपने भाषण में कहा, शंकर ने जो काम किया है वो केवल एक इमारत बनाना नहीं है, उन्होंने बच्चों के सपनों के लिए एक घर बनाया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा एक बेहतर इंसान बनेगा।
2: बिल्कुल। और बाल भवन में विभिन्न विभाग थे, आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, साइंस और फोटोग्राफी। बच्चे शाम को स्कूल के बाद यहाँ आते और अपनी रुचि की चीजें सीखते थे। शंकर खुद अक्सर बाल भवन आते थे। वे बच्चों से बातचीत करते, उनके चित्र देखते और उन्हें प्रोत्साहित करते। कई बच्चे जो आज सफल कलाकार हैं, उन्हें याद है कि कैसे शंकर अंकल ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा था, बहुत अच्छा बनाया है, ऐसे ही बनाते रहो। बाल भवन की ये सफलता के बाद देश भर में 25 से ज्यादा शहरों में बाल भवन खोले गए। आज भी ये संस्थाएं लाखों बच्चों को कला और शिक्षा दे रही हैं।
1: शंकर ने एक और महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 14 नवंबर को नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का विचार दिया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 में शंकर ने सुझाव दिया, क्योंकि नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और तब से हर साल 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में विशेष कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
2: शंकर्स वीकली में हर साल बाल दिवस पर एक विशेष अंक निकलता था जिसमें बच्चों की रचनाएं, कहानियां, चित्र छापे जाते थे। देश भर के बच्चे अपनी रचनाएं भेजते थे और चुनी गई रचनाएं पत्रिका में प्रकाशित होती थीं। किसी बच्चे के लिए शंकर्स वीकली में छपना बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। शंकर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वे अपने निजी जीवन को मीडिया से दूर रखते थे। उनका विवाह केरल की एक शिक्षित महिला से हुआ था। उनकी पत्नी बहुत संयमी और समझदार थी, जो शंकर के काम को समझती थी।
1: उनकी बेटियों को याद है कि कैसे पिता रविवार की शाम को उनके साथ बैठते और उन्हें चित्र बनाना सिखाते थे। वे बच्चों को कभी दबाव नहीं डालते थे कि वे भी कलाकार बने, बल्कि उन्हें अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनने की आजादी देते थे। एक रोचक बात, शंकर घर पर बहुत सादा जीवन जीते थे। उनके पास महंगी गाड़ी नहीं थी, ना ही बड़ा बंगला। वे दिल्ली के एक साधारण इलाके में मध्यम आकार के घर में रहते थे। उनकी पत्नी रसोई में खुद ही खाना बनाती थीं।
2: शंकर अक्सर देर रात तक काम करते थे और सुबह देर से उठते थे। उनकी पत्नी को ये आदत बहुत परेशान करती थी, लेकिन वो जानती थी कि रात का वो समय जब घर में शांति होती थी, शंकर के लिए सबसे रचनात्मक समय था। शंकर केवल एक कलाकार नहीं थे, वे एक सामाजिक चिंतक भी थे। उन्हें समाज की समस्याओं की गहरी समझ थी। उन्होंने कॉमन मैन को सरकारी दफ्तरों में धक्के खाते हुए अनगिनत बार देखा था और दिखाया भी था।
1: शंकर जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए दंगों ने उन्हें बहुत दुखी किया। उन्होंने कई मार्मिक कार्टून बनाए। महिला सशक्तिकरण में भी उनका विश्वास था। उनकी कार्टूनों में महिलाएं कमजोर नहीं दिखाई जाती थी। उन्होंने कई बार समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर कार्टून बनाए।
2: व्यक्तिगत रूप से शंकर बेहद विनम्र और सरल इंसान थे। उन्हें कोई अहंकार नहीं था। युवा कलाकार जब उनसे मिलने आते तो वे बहुत प्यार से मिलते और उन्हें मार्गदर्शन देते। 1960 और 70 के दशक में शंकर ने विभिन्न देशों की यात्राएं भी की। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय कार्टूनिस्ट सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया भी जाता था।
1: उन्होंने अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों का दौरा किया। हर जगह उनके कार्टूनों की प्रदर्शनी लगाई गई। विदेशी कलाकार उनकी शैली से बहुत प्रभावित होते थे। एक बार लंदन में एक प्रदर्शनी के दौरान एक अंग्रेज कार्टूनिस्ट ने शंकर से कहा, तुम्हारे कार्टून में जो गर्माहट और मानवीयता है वो पश्चिमी कार्टूनों में नहीं होती। तुम लोगों पर व्यंग करते हो लेकिन नफरत नहीं फैलाते।
2: तब शंकर ने जवाब दिया था, ये भारतीय संस्कृति का असर है। हम समस्याओं को दिखाते हैं लेकिन व्यक्तियों से नफरत नहीं करते। हमारा मकसद सुधार लाना है, ना कि किसी को नीचा दिखाना। विदेश यात्राओं के दौरान शंकर ने कई प्रसिद्ध हस्तियों से मुलाकात भी की। उन्होंने ब्रिटेन की महारानी, अमेरिकी राष्ट्रपति, विभिन्न प्रधानमंत्रियों और कई प्रसिद्ध कलाकारों से मुलाकात की। लेकिन इन मुलाकातों के बावजूद उनमें कोई अहंकार कभी नहीं आया।
1: एक दिलचस्प घटना है। 1965 में उन्हें मॉस्को में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्टून प्रतियोगिता में जूरी सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया। वहां दुनिया भर के 50 देशों से कार्टूनिस्ट आए थे। शंकर भारत के प्रतिनिधि थे। प्रतियोगिता में एक युवा रूसी कार्टूनिस्ट ने बहुत प्रभावशाली काम प्रस्तुत किया। जब पुरस्कार की घोषणा हुई तो कुछ पश्चिमी जजों ने उस रूसी कलाकार को पुरस्कार देने में आपत्ति जताई, क्योंकि वे सोवियत यूनियन के थे और शीत युद्ध का दौर था। बाद में उस कलाकार ने शंकर से मिलकर कहा, आपने मेरे लिए न्याय किया, मैं आपका आभारी हूं। शंकर ने जवाब दिया, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ सही किया।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में शंकर ने भारतीय राजनीति पर लगातार व्यंग किए। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आपातकाल तक हर महत्वपूर्ण घटना पर उनके कार्टून छपते थे। 1962 के चीनी आक्रमण पर उनके कार्टून बेहद प्रभावित

0: बढ़े थे। लक्ष्मण अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, शंकर मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे सिखाया कि कार्टून केवल मजाक नहीं है, ये समाज का दर्पण है। अब्बू अब्राहम, मारियो मिरांडा जैसे कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों ने शंकर से प्रेरणा ली। शंकर का स्टूडियो युवा कलाकारों के लिए हमेशा खुला रहता था, कोई भी आकर अपना काम वहां दिखा सकता था।
1: शंकर अक्सर कहते थे, प्रतिभा तो बहुत लोगों में होती है, लेकिन मेहनत और निरंतरता से ही सफलता मिलती है, और सबसे जरूरी है ईमानदारी, अपनी कला के प्रति ईमानदार रहो। शंकर को उनके जीवन काल में कई सम्मान मिले, लेकिन वे इन सम्मानों को अपनी उपलब्धि नहीं बल्कि कला की महत्ता के रूप में देखते थे। 1966 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया, ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शंकर से कहा, आपने कला के माध्यम से समाज को दर्पण दिखाया है, यह सम्मान केवल आपकी कला के लिए नहीं बल्कि आपके सामाजिक योगदान के लिए भी है।
0: और तब शंकर ने विनम्रता से जवाब दिया, महोदय ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, ये उन करोड़ों कॉमन मैन का है जिनकी आवाज में अपने कार्टून के जरिए उठाने की कोशिश करता हूँ। साल 1974 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हालांकि उन्हें ये पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन नामांकन ही उनकी प्रतिष्ठा का प्रमाण था।
1: 1980 के दशक में शंकर की उम्र 80 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ था। वे अभी भी नियमित रूप से कार्टून बनाते थे, बाल भवन जाते थे और युवा कलाकारों से मिलते थे। हालांकि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। 1989 में उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन अस्पताल में भी वे अपनी स्केच बुक साथ में रखते। एक बार उनके डॉक्टर ने उनसे कहा, आप अब आराम कीजिए, इतनी उम्र में भी आप काम कर रहे हैं। शंकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, कला करना मेरे लिए काम नहीं है, ये मेरी सांस है, जब तक सांस है तब तक कला रहेगी।
0: और वो दिन 26 दिसंबर 1989 की शाम जब शंकर ने अपनी अंतिम सांस ली, उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अखबारों में श्रद्धांजलि छपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश भर के लोगों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा, शंकर जी ने अपनी कला से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया, उनका कॉमन मैन हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि सरकार किसके लिए है। आज देश भर में 25 से ज्यादा शहरों में बाल भवन है जो लाखों बच्चों को कला की शिक्षा दे रहे हैं। दिल्ली का बाल भवन आज भी सक्रिय है और हर साल हजारों बच्चे वहां आते रहते हैं।
1: CBT आज भी बच्चों के लिए किताबें प्रकाशित कर रहा है। 60 साल में इसने 3000 से ज्यादा किताबें प्रकाशित की हैं, जो 100 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। हालांकि शंकर्स वीकली अब प्रकाशित नहीं होती, लेकिन इसने भारतीय व्यंग पत्रकारिता की नींव रखी। आज के कई व्यंग कार्यक्रम और पत्रिकाएं शंकर्स वीकली से प्रेरित है।
0: आज के कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शंकर को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हैं। उनकी शैली, सरल रेखाएं, गहरा संदेश और मानवीय स्पर्श आज भी कलाकारों को बेहद प्रभावित करता है।
1: के शंकर पिल्लई का जीवन एक साधारण केरल के लड़के से लेकर भारत के सबसे प्रतिष्ठित कार्टूनिस्ट और समाज सेवक बनने की अद्भुत यात्रा है। उन्होंने साबित किया कि कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने और बदलाव लाने का शक्तिशाली माध्यम है। बचपन में दीवारों पर कोयले से चित्र बनाने वाला वो बच्चा जिसकी मां चिंतित रहती थी कि ये शौक पढ़ाई में बाधा ना बन जाए, आखिरकार देश का गौरव बन गया।
0: जी हाँ, मुंबई की सड़कों पर भूखे पेट घूमने वाला वो युवक जिसने कभी हार नहीं मानी, आजाद भारत की आवाज बन गया। वो कलाकार जिसने अपने कॉमन मैन के जरिए करोड़ों भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया, आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। शंकर पिल्लई केवल एक कार्टूनिस्ट नहीं थे, वे एक दूरदर्शी, एक शिक्षक, एक समाज सुधारक और सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान थे जो अपने देश और उसके लोगों से बेइंतहा प्यार करते थे।
1: उनका जीवन हमें सिखाता है कि सपने देखो मेहनत करो, अपनी प्रतिभा को समाज की सेवा में लगाओ और कभी भी अपने मूल्यों से समझौता मत करो। आज भी जब हम कॉमन मैन को देखते हैं, हमें शंकर की याद आती है, वो महान कलाकार जिसने अपनी कला से लाखों दिलों को छुआ और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया। कला जीवन का दर्पण है और कलाकार समाज का प्रहरी। के शंकर पिल्लई। श्रोताओं, तो आज हमने प्रस्तुत कार्यक्रम भारत विभूति में चर्चा की के शंकर पिल्लई जी के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखक अखिलेश कुमार वर्मा और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा।
0: मैं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार भारती।
1: तो दोस्तों, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार।
0: भारत विभूति। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। आज की इस सभा में आपके साथ हूँ मैं सुनीता सिंह। फिलहाल आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ कुछ देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कुछ देशभक्ति रचनाएं। उम्मीद है आज के ये गीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

करके देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गुंजन।
1: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं तप की शांति से दमकती हैं। श्रोताओं, बीते एपिसोड में हमने रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग के भाग 5, 6 और 7 के साथ उस गहन भाव भूमि को महसूस किया जहां शब्द केवल कथा नहीं कहते, वे भीतर उतरकर आत्मा को स्पर्श करते हैं। वहां कर्ण के स्वर में केवल प्रतिरोध नहीं था बल्कि व्यवस्था से टकराता हुआ एक सच था। जहां ज्ञान उपेक्षित था और जन्म की दीवारें पुरुषार्थ के मार्ग में खड़ी थी। फिर हमने उस मौन साधना को देखा जहां गुरु के स्नेह और शिष्य के समर्पण के बीच कर्ण स्वयं को तपाता है और अंततः वो क्षण भी जब पीड़ा उसकी जांघ में धसती जाती है पर उसका संकल्प तनिक भी नहीं डिगता। ये वही बिंदु है जहां कर्ण की महानता दिखाई नहीं देती, वो महसूस होती है उसकी निस्तब्धता में, उसके धैर्य में और उसके भीतर जलते हुए उस अग्निकुंड में जो उसे साधारण से असाधारण बनाता है।
3: हाँ श्रोताओं, यह यात्रा अब और भी भीतर उतरती जा रही है जहां प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभवों में मिलते हैं। कर्ण का जीवन अब केवल घटनाओं का क्रम नहीं रह गया, वह एक ऐसी साधना बन चुका है जिसमें हर क्षण उसे खुद से ही जूझना है। यहाँ पीड़ा भी शिक्षक है और मौन भी मार्गदर्शक। उस विषदंश की वेदना केवल शरीर तक सीमित नहीं, वह उस व्यवस्था की चुभन है जो मनुष्य को बार बार उसकी सीमा का बोध कराती है। अब कथा उस दहलीज पर खड़ी है जहां भावनाएं और भी तीव्र होंगी, निर्णय और भी कठोर होंगे और कर्ण का पथ नई चुनौतियों से भर उठेगा। यह वह चरण है जहां भीतर सुलगती हुई अग्नि अब धीरे धीरे प्रकाश बनने को है, पर उस प्रकाश तक पहुंचने से पहले उसे और अंधेरों से गुजरना होगा। आइए श्रोताओं, अब इस प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं उस अगले विस्तार की ओर जहां कर्ण की कथा और गहरी होती है, उसके संकल्प की धार और पहनी हो जाती है और जीवन उसे ऐसे मोड़ों से परिचित कराता है जिनसे गुजरकर ही कोई व्यक्तित्व अमिट बन पाता है। अब सुनते हैं द्वितीय सर्ग के भाग 8, 9 और 10 को। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की, भक्तिपूर्ण वह वल छाती। सोचा उसने, अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने क्षत में से उंगली देकर। परशुराम बोले,
4: शिव शिव, तूने यह की मूर्खता पड़ी, सहता रहा चल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी।
3: तनिक लजाकर कहा कर्ण ने,
5: नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच ये कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर ये तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसीलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया।
3: परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में, दांत पीस कर आंखें तरेर कर बोले,
4: कौन छली है तू? ब्राह्मण है क्या? किसी और अभिजन का पुत्र बलि है तू?
3: यहीं से कथा निर्णायक मोड़ लेती है, गुरु के मन में शंका जन्म लेती है। भक्ति और विश्वास के बीच अब सत्य का प्रश्न खड़ा हो गया है। यही वह क्षण है जहां करुणा से कथा क्रोध और नीति की दिशा में मुड़ती है। श्रोताओं, यह काव्य संवाद सुनकर मन सचमुच भर आता है। यह केवल एक कीट दंश की कथा नहीं, यह विश्वास की अग्नि परीक्षा है जहां शिष्य अपनी पीड़ा से अधिक गुरु की नींद की रक्षा करता है। ऐसा प्रेम, ऐसी निष्ठा, ऐसा मौन त्याग आज कहां देखने को मिलता है? तब संयम और समर्पण ये शब्द जैसे हमारे जीवन से सरक कर केवल ग्रंथों और कथाओं में सिमटते जा रहे हैं। कर्ण ने जिस वेदना को सहा वह केवल शरीर की पीड़ा नहीं थी, वह भाग्य की विडंबना भी थी जो कभी जन्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर उसके मार्ग में दीवारें खड़ी करती रहीं। लगता है समय भी जैसे उसी के धैर्य की परीक्षा लेने पर तुला हो, और यही इस प्रसंग को साधारण कथा से उठाकर अमर कर देता है। सांच को आँच नहीं, पर आँच पहले उसी पर आती है। कर्ण की देह तो अब तक पत्थर बनी रही, पर अब बारी है उसकी असली पहचान की, जहां दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जन्म और कर्म आमने सामने खड़े हैं, गुरु का रोष अग्नि सा धधक रहा है और शिष्य का हृदय हथेली पर रखा है। आइए सुनते हैं द्वितीय सर्ग का भाग 9, जहां सत्य की धार किसी खड्ग से कम तीखी नहीं है।
4: सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी ना जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता किसी दशा में भी स्वभाव अपना वो कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा।
3: क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कापने लगे भय से थर थर।
5: सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं, जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो ये काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्त वीर्य के जेता का, तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का, पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। पता सका मैं नहीं इसी से, हे प्रभु जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और ना थी कोई खोटी, पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूं, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूं, अपने आप मरा सा जाता हूं।
3: श्रोताओं, यह दृश्य मानो वज्र और कमल का एक साथ टूटना है। कर्ण का सिर गुरु के चरणों में झुका हुआ है, जैसे आंधी में झुकता कोई अशोक वृक्ष टूटता नहीं पर भीतर से चिर जाता है। उसकी वाणी में वह कपकपी है जो केवल भय की नहीं आत्मग्लानि की होती है। ज्ञान पाने की प्यास उसके लिए गंगा थी, पर जन्म की रेत ने बार बार उसका मार्ग रोक लिया। आज वह स्वयं को अपराधी की तरह प्रस्तुत कर रहा है, जबकि उसका दोष केवल इतना ही है कि उसने ऊंचा उड़ने का स्वप्न देखा।
2: श्रोताओं, गुरु की आंखों में दहकती ज्वाला है और शिष्य का मन जैसे राख से ढका अंगार। परशुराम का क्रोध आकाश चीरता धूम केतु सा प्रखर है, तो कर्ण की विनती संध्या की अंतिम लौ कंपित, किंतु अभी भी उजास बचाए हुए शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रहे, वे बाण हैं और सत्य नंगी धार की तरह चमक रहा है।
3: और उस करुण क्षण को दिनकर की लेखनी ने ऐसे छुआ मानो सूर्य स्वयं अपने ही अंश की पीड़ा लिख रहा हो। एक तपता तेज जिसे संसार ने नाम देने से पहले ही ठुकरा दिया। श्रोताओं, करुणा की इस गहन घटा के बाद अब शब्दों का आकाश फिर खुलने जा रहा है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि मनुष्य केवल जन्म से नहीं अपने चुनावों और अपने व्रतों से पहचाना जाता है, कि सम्मान छल से नहीं सत्य की अग्नि से तपकर मिलता है, और यह भी कि महत्वाकांक्षा जब मर्यादा से टकराती है तो आत्मा स्वयं अपना न्यायालय बन जाती है।
2: आइए इसी सीख को हृदय में संजोए हम द्वितीय सर्ग के भाग 10 में प्रवेश करें, जहां कर्ण शाप से नहीं अपने अधूरे स्वप्नों से जूझता दिखाई देगा, जहां गुरु और शिष्य के बीच केवल दंड नहीं एक गहरी पहचान का प्रकाश भी फूटेगा। सुनते हैं रश्मि रथी का भाग 10।
5: छल से पाना मान जगत में किलविश है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच ये छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बली होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करें भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई, नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। ये तृष्णा ये विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मर कर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं दे शाप, किंतु अंतिम सुख तो ये पाने दे। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गवाने दें। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गवाने दें।
3: लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले,
2: हाय कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धार्त राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया, कभी नहीं मैंने पाया।
3: श्रोताओं, यह प्रसंग किसी साधारण स्वीकारोक्ति का नहीं है, आत्मा के दरबार में खड़े एक मनुष्य के नग्न सत्य का है। कर्ण यहाँ केवल अपने गुरु के सामने नहीं, अपने ही अंतःकरण के कटघरे में खड़ा है, जहाँ ना कोई आड़ है ना कोई तर्क। छल से पाया मान उसके लिए मान नहीं, मानो अंगार है जो भीतर ही भीतर उसे दग्ध कर रहा है। यह दृश्य मानो तपते मरुस्थल पर अचानक फूट पड़ी जलधारा हो। एक और कर्ण है जो शाप को भी प्रसाद की तरह हथेली पर धरने को तैयार खड़ा है, और दूसरी ओर गुरु है जिनकी कठोर दृष्टि के कोनों से करुणा ओस की बूंद बनकर ढलक रही है। यह क्षण केवल अपराध और दंड का नहीं, हृदयों के पिघलने का है, जहां शिष्य की निष्ठा और गुरु की करुणा मिलकर समय की शिला पर अमिट रेखा खींच देती है।
2: श्रोताओं, उसकी पीड़ा केवल अपने अपराध की नहीं बल्कि अधूरी रह गई आकांक्षाओं की भी है। अर्जुन को परास्त करने की इच्छा, दुर्योधन के प्रति उसका अटूट संबंध और अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की जिद, वो दो दिशाओं के बीच खड़ा है। एक ओर धर्म का आह्वान, दूसरी ओर मित्रता का बंधन। कर्ण भली भांति जानता है कि वचन और उपकार दोनों मनुष्य को बांध लेते हैं, और वही बंधन उसे अपने निर्णयों में स्वतंत्र नहीं रहने देते। फिर भी वो अपने जीवन की याचना नहीं करता, बल्कि दंड को भी स्वीकार करने के लिए तत्पर है। यही उसकी महानता है कि वो अपने दोष से भागता नहीं, उसे स्वीकार कर उससे ऊपर उठना चाहता है।
3: श्रोताओं, दिनकर जी मूलतः वीर रस के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताएं समाज में सकारात्मक ऊर्जा भरती हैं और जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण देती हैं। पर देखिए, उसी वीर रस के कवि ने कर्ण की करुणा को भी उतनी ही गहराई से उकेरा है। यही उनकी लेखनी की शक्ति है। वह हमें साहस भी देती है और संवेदना भी सिखाती है। आज की पीढ़ी के लिए यह संदेश स्पष्ट है, संघर्ष से घबराना नहीं, अपने लक्ष्य ऊंचे रखना, पर सत्य और आत्मसम्मान को कभी ना त्यागना। कर्ण ने भले ही असत्य का सहारा लिया हो, पर उसकी साधना और जिज्ञासा इतनी सच्ची थी कि गुरु का मन द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता।
2: तो श्रोताओं, इसी गहन भाव विस्फोट, आत्म स्वीकृति और गुरु शिष्य के इस अद्वितीय प्रसंग के साथ आज की ये काव्य यात्रा यहीं एक मधुर विराम लेती है। कर्ण का अंतर्द्वंद, उसकी पीड़ा, उसका स्वाभिमान और उसका टूट संकल्प, ये सब मिलकर हमें सोचने पर विवश करते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के अंतिम भाग 11, 12 और 13 का काव्य पाठ और चर्चा, जहां कर्ण की यात्रा एक नए निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। लेकिन जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति लेखन दीपक नेमा, और इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी संदीप शर्मा ने,
3: मैंने यानी भगवती सक्सेना ने,
6: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
2: तो इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं विराम लेती है। फिर मिलेंगे एक नए अंक में। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
0: काव्य गुंजन, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: यह है रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz और आप ध्रुव संगारी बिलाल चिश्ती को इस पे सुन रहे हैं। रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz देश का चैनल देश के लिए।
1: और श्रोताओं, अब हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं ये देशगान।

0: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: श्रोताओं, रेडियो आज़ाद हिंद की इस प्रसारण सभा में आगे बहुत कुछ है खास आपके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। अगला कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक, इंतजार कीजिएगा बस कुछ पलों का।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, यह रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है हमारे वैज्ञानिक। आपके साथ मैं हूं नूपुर शर्मा
2: और मैं वेणु बालन। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी। एक चिकित्सक, एक समाज सेविका और परिवार नियोजन आंदोलन की अग्रणी आवाज।
1: नाम है डॉक्टर बानू जहांगीर कोया जी।
2: तो आइए सुनते हैं उनकी यह प्रेरणादायक जीवन गाथा।
1: आज हम आपको एक ऐसी महिला की विस्तृत जीवन गाथा सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी।
2: एक संपन्न पारसी परिवार में जन्मी ये लड़की आगे चलकर पुणे के एक छोटे से अस्पताल को और महाराष्ट्र के सैकड़ों गांवों को हमेशा के लिए बदल देगी।
1: नाम था डॉक्टर बानू जहांगीर कोया जी। एक चिकित्सक, एक समाज सेविका और परिवार नियोजन आंदोलन की एक अग्रणी आवाज।
2: आज की इस कड़ी में हम उनके जन्म से लेकर निधन तक की पूरी यात्रा को विस्तार से जानेंगे। उनका परिवार, उनकी शिक्षा, उनका संघर्ष, उनकी उपलब्धियां और उनकी विरासत।
1: इस कहानी को समझने से पहले हमें उस सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना होगा जिसमें बानू का जन्म हुआ।
2: पारसी समुदाय मूलतः प्राचीन ईरान से आकर भारत के पश्चिमी तट पर बसा एक छोटा सा समुदाय है, पर शिक्षा, व्यापार और समाज सुधार में इनका योगदान अपने आकार से कहीं बड़ा रहा है।
1: जमशेद जी टाटा से लेकर दादा भाई नौरोजी तक इस समुदाय ने भारत के आधुनिकीकरण में एक केंद्रीय भूमिका निभाई।
2: बानू का जन्म भी इसी परंपरा की कड़ी था। उनके परिवार में शिक्षा को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था और लड़कियों की शिक्षा को लेकर भी उनका नजरिया उस दौर के औसत भारतीय परिवार से कहीं आगे था।
1: एक दिलचस्प बात यह भी है कि जहां अधिकांश पारसी परिवार ब्रिटिश शासन के प्रति सहानुभूति रखते थे, वहीं बानू का अपना परिवार राष्ट्रवादी विचारधारा से गहराई से प्रभावित था।
2: यही पारिवारिक संस्कार आगे चलकर बानू के भीतर विकसित हुई सेवा भावना और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध की नींव बना।
1: सात सितंबर 1917 मुंबई शहर, एक संपन्न पारसी परिवार में एक बेटी का जन्म होता है। नाम रखा जाता है बानू पेस्तनजी कापड़िया।
2: उनके पिता पेस्तनजी कापड़िया एक जाने माने सिविल इंजीनियर थे और माता का नाम था बापा माई। बानू अपने माता पिता की इकलौती संतान थी।
1: जब स्कूल जाने की उम्र आई तो माँ ने बानू को पुणे भेज दिया, नाना नानी के घर। वहाँ एक बड़ा भरा पूरा संयुक्त परिवार था, मामा, मौसी, चचेरे, ममेरे, भाई बहन।
2: माता पिता का बार बार आना जाना भी बना रहा, इसलिए बानू को कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उन्होंने खुद कहा है कि उनका बचपन एक बेहद संतोषप्रद और भरापूरा अनुभव था।
1: दौलत तो थी ही, पर अनुशासन भी उतना ही जरूरी माना जाता था। यही अनुशासन आगे चलकर बानू के पूरे जीवन का आधार बना।
2: और हाँ, एक दिलचस्प बात, बानू का पालन पोषण पूरी तरह अंग्रेजी माहौल में हुआ। घर में गुजराती बोली जाती पर उसमें अंग्रेजी शब्दों की भरमार होती,
1: इतनी ज्यादा कि बड़े होकर बानू को मराठी सीखने के लिए एक अलग शिक्षक रखना पड़ा। वही मराठी जिस भाषा में आगे चलकर वे हजारों ग्रामीण महिलाओं से बात करने वाली थीं।
2: कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में उन्होंने बैले नृत्य सीखा, फ्रेंच भाषा पढ़ी और नाना के घर रखे पियानो पर पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की तालीम ली।
1: इतनी अच्छी तालीम कि उन्होंने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक के परीक्षकों के सामने भी अपनी प्रस्तुति दी। 5-6 साल तक वे गर्ल्स गाइड से भी जुड़ी रहीं।
2: यह सांस्कृतिक द्वंद बड़ा दिलचस्प है। पश्चिमी माहौल में पली बड़ी एक लड़की आगे चलकर भारत के सबसे दूर दराज गांवों की सच्चाई में गहराई से उतर जाती है।
1: यह दिखाता है कि सच्ची सेवा भावना किसी सांस्कृतिक सीमा की मोहताज नहीं होती।
2: सेंट विंसेंट हाई स्कूल मूलतः लड़कों का स्कूल, पर बानू वहां से मैट्रिकुलेशन पास करने वाली पहली लड़की बनी।
1: यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उस दौर में लड़कियों का ऐसे स्कूल में दाखिला ही असामान्य माना जाता था।
2: आगे कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में भी वे अक्सर कक्षा में पहला स्थान पाती रहीं और सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा में तो 5 विषयों में विशेष योग्यता हासिल की। उस दौर के लिए यह एक दुर्लभ उपलब्धि थी।
1: 16 साल की उम्र में बानू ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्री मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। उस दौर में एक लड़की का डॉक्टर बनने की राह चुनना आसान बात नहीं थी। चिकित्सा को तब मुख्यतः पुरुषों का ही क्षेत्र माना जाता था।
2: इसके बाद ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित चिकित्सा महाविद्यालयों में से एक, जिसने भारत में पश्चिमी चिकित्सा शिक्षा के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई।
1: वहां से 1940 में उन्होंने MD की डिग्री हासिल की।
2: पढ़ाई के दौरान ही उनकी दिलचस्पी बनी प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान में। यह चुनाव इत्तेफाक नहीं था।
1: उस दौर के भारत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बेहद ऊंची थी। प्रसूति विज्ञान का क्षेत्र सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद अहम माना जाता था।
2: बानू ने इस क्षेत्र को चुनकर बिना जाने समझे भी वह राह चुन ली जो आगे चलकर लाखों महिलाओं और नवजातों की जिंदगी बदलने वाली थी।
1: आगे उन्होंने प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर VN शिरोडकर के मार्गदर्शन में रेजिडेंसी की। डॉक्टर शिरोडकर उस दौर के सबसे सम्मानित प्रसूति विशेषज्ञों में गिने जाते थे।
2: ऐसे काबिल गुरु के मार्गदर्शन में सीखना बानू के लिए एक अनमोल अनुभव साबित हुआ।
1: 1937 महाबलेश्वर की पहाड़ियां पुणे और मुंबई के संपन्न परिवारों का प्रिय गर्मियों का ठिकाना।
2: यहीं बानू की मुलाकात हुई जहांगीर कोयाजी से। यह मुलाकात करवाई थी डॉक्टर एडुलजी कोयाजी ने, जो बानू के पारिवारिक चिकित्सक भी थे और जहांगीर के बड़े भाई भी।
1: जहांगीर पेशे से इंजीनियर थे और अमेरिका के पर्ड्यू विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके अभी अभी लौटे थे।
2: 5 साल की प्रणय गाथा के बाद 24 फरवरी 1941 को दोनों का विवाह हुआ।
1: यह विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, यह दो प्रतिष्ठित परिवारों का संगम भी था जिसने बानू के आगे के जीवन पथ को गहराई से प्रभावित किया।
2: 1943 में बानू पुणे लौट आईं, जहां जहांगीर पहले से रहते थे। यही दोनों ने अपना घर बसाया।
1: पुणे में बानू ने डॉक्टर एडुलजी कोयाजी के साथ सामान्य चिकित्सा अभ्यास में काम शुरू किया, भले ही उनके पास स्त्री रोग विज्ञान की विशेष डिग्री थी।
2: यह फैसला दिखाता है कि बानू ने अपनी विशेषज्ञता के बावजूद विनम्रता से शुरुआत की और एक अनुभवी वरिष्ठ से सीखना बेहतर समझा।
1: डॉक्टर एडुलजी की एक खासियत थी, वे गरीब और अमीर दोनों तरह के मरीजों का एक जैसे समर्पण से इलाज करते थे बिना किसी भेदभाव के।
2: यही मूल्य आगे चलकर बानू के अपने पूरे करियर का सिद्धांत बना, चाहे पुणे के संपन्न मरीज हों या वाड़ू गांव की महिलाएं।
1: अप्रैल 1944 एक मोड़ आता है। सरदार मुदलियार डॉक्टर एडुलजी से आग्रह करते हैं कि किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल के लिए किसी काबिल चिकित्सक की सिफारिश करें।
2: यह अस्पताल पुणे में स्थित था। 1912 में पुणे के प्रमुख नागरिकों द्वारा स्थापित एक छोटा सा चैरिटेबल अस्पताल जो माँ और नवजात की देखभाल के लिए बना था।
1: ध्यान रहे, यह मुंबई के ज्यादा मशहूर KEM अस्पताल से अलग एक स्वतंत्र संस्था थी, भले ही दोनों का नाम ब्रिटिश सम्राट किंग एडवर्ड सप्तम की याद में रखा गया था।
2: उस दौर में भारत में मातृ स्वास्थ्य सेवा बेहद सीमित थी। ज्यादातर प्रसव घर पर ही या बिना प्रशिक्षित दाइयों की देखरेख में होते, इसलिए मातृ मृत्यु दर बेहद डरावनी थी।
1: डॉक्टर एडुलजी ने इस पद के लिए एक ही नाम सुझाया, बानू जहांगीर कोयाजी। 6 महीने के भीतर बानू इस अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी बन गईं।
2: उस वक्त अस्पताल में सिर्फ 40 बिस्तर थे, एक बैरक जैसी इमारत, कोई खास सुविधा नहीं, स्टाफ की कमी, आधुनिक उपकरणों का अभाव।
1: यहीं से शुरू हुई 55 साल लंबी एक असाधारण सेवा यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसने न सिर्फ एक अस्पताल बल्कि पूरे इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्था का कायाकल्प कर दिया।
2: 55 साल यही वह समय था जिसमें बानू ने KEM अस्पताल की पूरी तस्वीर बदल दी।
1: 1999 तक अस्पताल में 550 बिस्तर हो चुके थे, यानी शुरुआत से करीब 13 गुना ज्यादा।
2: पर यह सिर्फ इमारत बढ़ाने की बात नहीं थी, बानू ने इस संस्था के हर पहलू में गुणात्मक सुधार किया।
1: उन्होंने इसे सिर्फ एक इलाज केंद्र नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे BJ मेडिकल कॉलेज से जोड़ा, पुणे के एक प्रमुख सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से।
2: इस जुड़ाव ने KEM को चिकित्सा शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बना दिया, जहां नई पीढ़ी के डॉक्टर तैयार होने लगे और साथ ही अस्पताल को युवा ऊर्जावान चिकित्सकों की लगातार आपूर्ति मिलती रही।
1: यहीं के शोधकर्ताओं ने ग्रामीण स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों पर वैज्ञानिक ढंग से काम किया। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और अन्य स्वास्थ्य संकेतकों में आ रहे बदलावों को बारीकी से दर्ज किया गया।
2: यह आंकड़ा आधारित नजरिया उस दौर में असामान्य था। ज्यादातर सामाजिक सेवा परियोजनाएं सिर्फ भावनात्मक प्रेरणा पर टिकी होती, बिना किसी ठोस मूल्यांकन तंत्र के।
1: पर बानू ने अपने चिकित्सा वैज्ञानिक ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी परियोजना को एक साक्ष्य आधारित मॉडल बना दिया, जो आगे चलकर बाकी परियोजनाओं से अलग खड़ा हुआ।
2: एक बात और, इतनी बड़ी धर्मार्थ संस्था को इस पैमाने पर बढ़ाने के लिए सिर्फ मेडिकल ज्ञान काफी नहीं था, इसके लिए चाहिए था वित्तीय प्रबंधन, दानदाताओं से संपर्क, सरकारी अनुदान और स्टाफ का प्रबंधन।
1: और इन सभी में बानू ने असाधारण दक्षता दिखाई। यही वजह है कि KEM एक छोटी चैरिटी संस्था से एक बड़े आधुनिक चिकित्सा संस्थान में तब्दील हो सका।
2: पर बानू सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रही, उन्होंने महसूस किया पुणे शहर और उसके आसपास के सूखाग्रस्त गांवों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की खाई बहुत गहरी है।
1: भारत के बाकी हिस्सों की तरह महाराष्ट्र के गांवों में भी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का घोर अभाव था।
2: ग्रामीण भारत की महिलाएं दोहरी मार झेल रही थीं। एक तरफ गरीबी और दूरी, दूसरी तरफ समाज में उनकी दोयम दर्जे की हैसियत,
1: ये दोनों मिलकर उनके स्वास्थ्य और भलाई की राह में गंभीर रुकावटें खड़ी कर रहे थे।
2: 1972 पुणे से करीब 40 किलोमीटर दूर गांव वाड़ू में बानू ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला।
1: ये फैसला उस दौर में बेहद साहसी और दूरदर्शी था, क्योंकि ज्यादातर शहरी चिकित्सा संस्थान अपने संसाधन गाँव में लगाने से बचते थे।
2: पर बानू ने साफ समझ लिया था, अगर सच में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है तो शहर की चार दीवारी से बाहर निकलना ही होगा।
1: यही केंद्र आगे चलकर बना शिरडी साई बाबा ग्रामीण अस्पताल, जो आज भी आसपास के गांवों की सेवा कर रहा है। बानू का बोया गया ये बीज सिर्फ उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रहा।
2: 1977 बानू एक और बड़ा कदम उठाती है, वाड़ू ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना।
1: महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से गांव-गांव से करीब 600 लड़कियों को चुना गया और प्रशिक्षित किया गया सामुदायिक स्वास्थ्य के मार्गदर्शक के रूप में।
2: यह परियोजना अपने डिजाइन में बेहद सोच समझकर बनाई गई थी। बाहरी विशेषज्ञों को गांव भेजने के बजाय बानू ने स्थानीय महिला को ही प्रशिक्षित करने का रास्ता चुना,
1: क्योंकि स्थानीय महिलाएं अपने समुदाय की भाषा, संस्कृति और आपसी रिश्तों को बेहतर समझती थी। वे स्थायी रूप से गांव में रह सकती थीं, जबकि बाहरी विशेषज्ञ सिर्फ कभी कभार आते थे।
2: और सबसे बड़ी बात, इस प्रशिक्षण ने इन महिलाओं को खुद सशक्त बना दिया। इससे उन्हें कमाई मिली, सम्मान मिला और समाज में एक नई पहचान मिली।
1: ये लड़कियां अपने ही गांव में जाकर स्वच्छता, पोषण और परिवार नियोजन की बातें समझाती। गंभीर मामलों को वार्डो के केंद्र या पुणे के KEM अस्पताल में भेज दिया जाता।
2: समय समय पर स्वास्थ्य शिविर भी लगते। KEM के डॉक्टर बच्चों का टीकाकरण करते, कान नाक गले की बीमारियों और मोतियाबिंद जैसे समस्याओं का इलाज करते।
1: इन शिविरों का आयोजन बड़े सुव्यवस्थित तरीके से होता था। स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पहले ही मरीजों की पहचान कर लेती, ताकि शिविर वाले दिन डॉक्टरों का समय बर्बाद ना हो।
2: और हर बार आंकड़े जुटाए जाते, नतीजों को परखा जाता। शिशु मृत्यु दर में आई भारी गिरावट इसका एक बड़ा सबूत बना।
1: यह मॉडल इतना कामयाब रहा कि कई और विकासशील देशों ने इसे अपनाने की कोशिश की।
2: बानू का मानना था निजी संस्थाओं को सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी छोटी सफलताओं का फायदा बड़े पैमाने पर आम लोगों तक पहुंच सकता है।
1: यह सोच निजी पहल और सरकारी सहयोग का मेल आज भी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का एक अहम सिद्धांत माना जाता है।
2: बानू का ज्यादातर काम परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के इर्द गिर्द रहा।
1: भारत ने 1952 में दुनिया के पहले राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, पर इसके बावजूद यह विषय दशकों तक भारतीय समाज में बेहद संवेदनशील और वर्जित माना जाता रहा।
2: सामाजिक रूढ़ियां, धार्मिक मान्यताएं, शिक्षा की कमी, ये सब मिलकर परिवार नियोजन के प्रसार में रुकावट बनते।
1: ऐसे माहौल में बानू ने इसे खुलकर स्वास्थ्य शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के दायरे में ला खड़ा किया। उस दौर के लिए ये एक बड़ा साहसिक कदम था।
2: बानू का मानना था भारत की महिलाओं का जागरण ही एक बेहतर और अधिक मानवीय समाज की कुंजी है।
1: वे अक्सर कहा करती थी उनका सपना एक ऐसे कल का है जिसमें महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलें और उन्हीं की गति से आगे बढ़ें।
2: यह सिर्फ एक आदर्शवादी बात नहीं थी, यह उनके पूरे काम का मार्गदर्शक सिद्धांत था।
1: बानू ने यह भी समझा कि परिवार नियोजन सिर्फ गर्भ निरोधक बांटने तक सीमित नहीं हो सकता है, इसके लिए चाहिए व्यापक स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण की जागरूकता और समाज की सहमति।
2: यही वजह है कि उनकी परियोजनाओं में परिवार नियोजन को हमेशा स्वच्छता और सामान्य स्वास्थ्य देखभाल के साथ जोड़कर पेश किया गया, अलग से नहीं।
1: 80 के दशक के बीचों बीच बानू ने अपने काम की समीक्षा की और एक बड़ी कमी को पकड़ा। किशोरियों और युवा लड़कियों की जरूरतों पर ध्यान बहुत कम गया था।
2: गरीबी और लड़की होने की दोहरी मार झेलती ये लड़कियां बिना पढ़ाई और बिना जानकारी के माँ और कमाने वाले की भूमिका में उतर जाती थी।
1: 1988 में शुरू हुई युवा महिला स्वास्थ्य एवं विकास परियोजना 11 गांवों में सामुदायिक कार्यकर्ता तैनात किए गए।
2: सिलाई कढ़ाई जैसे हुनर सिखाए गए, सेहत की जानकारी दी गई और जाति लिंग जैसे संवेदनशील विषयों पर खुलकर बात करने का माहौल बनाया गया।
1: गीतों, खेलों और त्योहारों के जरिए औपचारिक कक्षाओं को रोचक और सहज बनाया गया ताकि किशोरियां सहजता से इनमें भाग ले सके।
2: यह परियोजना दिखाती है कि बानू एक बार की सफलता से संतुष्ट होकर बैठी नहीं, उन्होंने लगातार अपने कार्यक्रमों को परखा और नई जरूरतों के हिसाब से उन्हें आगे बढ़ाया।
1: बानू की काबिलियत और उनका काम जल्द ही पुणे और महाराष्ट्र की सीमाओं से आगे बढ़ गया।
2: वे केंद्र सरकार की सलाहकार बनी और दुनिया भर में एक जानी मानी विशेषज्ञ के तौर पर उभरी।
1: दुनिया भर की कई स्वास्थ्य एजेंसियां विकासशील देशों में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता मॉडल की तलाश में थी, ऐसे मॉडल जो सीमित संसाधनों में भी ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके।
2: बानू की वाडू परियोजना इस दिशा में एक मिसाल बनकर सामने आई, यह दिखाते हुए कि कैसे एक शहरी अस्पताल अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल कर गांव में स्थायी बदलाव ला सकता है।
1: इसके अलावा बानू पुणे विश्वविद्यालय की प्रबंधन परिषद की सदस्य रही और वहाँ प्रोफेसर एमेरिट्स भी रही। उनका योगदान सिर्फ अस्पताल प्रशासन तक सीमित नहीं था, शिक्षा नीति में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही।
2: चिकित्सा और समाज सेवा से परे बानू का व्यक्तित्व साहित्य और कला के गहरे प्रेम से भी भरा था, यह उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था।
1: इसी लगाव के चलते वे सकाल समूह के अखबारों से जुड़ी। महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली मराठी समाचार पत्र समूहों में से एक और 30 साल तक वे इस समूह की निदेशक रहीं।
2: इतने लंबे अरसे तक इस तरह के प्रभावशाली संस्थान से जुड़े रहना यह दिखाता है कि बानू सिर्फ चिकित्सा में ही नहीं, मीडिया और सार्वजनिक विमर्श में भी एक सम्मानित नाम मानी जाती थी।
1: 1994 में उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय और SNDT विश्वविद्यालय दोनों से साहित्य में मानद उपाधियां मिली। एक ही साल में दो अलग अलग विश्वविद्यालयों से यह सम्मान उनके व्यापक प्रभाव का सबूत है।
2: और संगीत कॉन्वेंट में सीखा गया पश्चिमी शास्त्रीय संगीत, नाना के घर का पियानो, लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज की परीक्षा, यह सब उनकी बहुमुखी प्रतिभा का हिस्सा रहा।
1: और अपने पति जहांगीर के साथ बाल रूम डांस करना भी उन्हें बेहद पसंद था। काम के भारी बोझ के बीच भी जिंदगी में यह हल्कापन उन्होंने हमेशा बचा कर रखा।
2: 1993 एक बड़ा सम्मान, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, वो भी लोक सेवा श्रेणी में।
1: यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में स्थापित है और इसे एशिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। कई बार इसे एशियाई नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है।
2: पुरस्कार समिति ने अपने प्रशस्ति पत्र में साफ लिखा कि बानू ने एक आधुनिक शहरी अस्पताल के संसाधनों को जोड़कर महाराष्ट्र की ग्रामीण महिलाओं और उनके परिवार के लिए बेहतर सेहत और नई उम्मीदें दी।
1: अपने स्वीकृति भाषण में बानू ने बड़े विनम्रता से इस सम्मान के लिए आभार जताया, जो उनके सीधे साधे व्यक्तित्व को भी दर्शाता है।
2: और इसके बाद आया भारत सरकार का सम्मान पद्म भूषण, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, जो कला, समाज सेवा, चिकित्सा, विज्ञान और लोक प्रशासन जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए हर साल गणतंत्र दिवस पर घोषित किया जाता है।
1: बानू का नाम भारत की उन गिनी चुनी महिलाओं में शामिल हो गया जिन्होंने चिकित्सा और समाज सेवा में ये सम्मान अर्जित किया।
2: इनके अलावा भी बानू को अपने जीवन में कई और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, जो उनके बहुआयामी योगदान की व्यापक स्वीकृति को दर्शाते हैं।
1: 70 पार करने के बाद भी बानू KEM अस्पताल और अपनी बाकी परियोजनाओं की देखरेख में जुटी रहती थी।
2: उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी, शहर के आधुनिक अस्पताल और गांव की मिट्टी, दोनों से वे बराबर जुड़ी रही, कभी किसी को नजरअंदाज नहीं किया।
1: वे सत्ता को अपने हाथ में समेट कर नहीं रखती थी, बल्कि गांव की महिलाओं को ही प्रशिक्षित करके उन्हीं को सशक्त बनाती थी। यही उनका असली तरीका था।
2: यह विकेंद्रीकृत सोच, जिसमें बाहरी विशेषज्ञ स्थानीय क्षमता निर्माण पर जोर देता है, न कि लगातार बाहरी दखल पर, आज के विकास अध्ययन में एक स्थापित सिद्धांत माना जाता है।
1: पर बानू ने इसे दशकों पहले ही व्यावहारिक रूप में लागू करके दिखा दिया था।
2: आजादी के बाद भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया और परिवार नियोजन कार्यक्रम इस नीति का एक अहम स्तंभ बना।
1: पर सरकारी कार्यक्रमों की एक बड़ी सीमा ये थी कि वे अक्सर ऊपर से नीचे की तरफ चलते थे, जिसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी बहुत सीमित रहती थी।
2: बानू का योगदान इसी वजह से खास है। उन्होंने एक ऐसा मॉडल दिया जिसमें स्थानीय समुदाय, खासकर महिलाएं, खुद बदलाव की वाहक बनी।
1: यह नीचे से ऊपर वाला नजरिया सरकारी कार्यक्रमों की सीमाओं को पार करते हुए ज्यादा स्थायी और असरदार नतीजे देने में कामयाब रहा।
2: और आज जब निजी सरकारी भागीदारी की जरूरत पर जोर दिया जाता है, बानू का यह नजरिया और भी प्रासंगिक लगता है।
1: 15 जुलाई 2004, 86 साल की उम्र में डॉक्टर बानू जहांगीर कोया जी का निधन हो गया।
2: अपने आखिरी दिनों तक वे अपने काम से जुड़ी रहीं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, समाज सुधार, उनकी सक्रियता में कभी कोई कमी नहीं आई।
1: टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबारों ने उन्हें एक सच्ची समाज सेविका के रूप में श्रद्धांजलि दी, जिनका पूरा जीवन सार्वजनिक सेवा को समर्पित रहा।
2: उनके निधन की खबर सिर्फ पुणे और महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि हर उस जगह शोक का विषय बनी जहां उनके काम और उनकी प्रेरणा का असर पड़ा था।
1: KEM अस्पताल आज भी पुणे के सबसे बड़े चिकित्सा और शिक्षण संस्थानों में गिना जाता है। हर साल हजारों मरीज, सैकड़ों नए डॉक्टर, यही बानू की देन है।
2: वाडू का वह छोटा सा केंद्र आज शिरडी साईं बाबा ग्रामीण अस्पताल बनकर अब भी आसपास के गांवों की सेवा कर रहा है।
1: और वह मॉडल गांव की महिलाओं को ही प्रशिक्षित करके स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाना, आज भारत की आशा कार्यकर्ता जैसी योजनाओं में भी वही सोच झलकती है जिसे बानू ने दशकों पहले वाडू में लागू किया था।
2: उनकी कहानी आज भी उन युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रख रही हैं।
1: उनका जीवन ये दिखाता है, चाहे कोई कितने भी संपन्न परिवार से क्यों न आया हो, वह अपनी विशेषज्ञता और समर्पण का इस्तेमाल समाज के सबसे वंचित वर्गों की सेवा के लिए भी कर सकता है।
2: डॉक्टर बानू जहांगीर कोया जी, एक डॉक्टर, एक समाज सेविका और एक ऐसी प्रेरणा जो पीढ़ियों तक याद रहेगी।
1: पद्म भूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जैसे सम्मान उनकी उपलब्धियों के प्रतीक भर हैं। उनकी असली विरासत उन हजारों महिलाओं और बच्चों की जिंदगी में झलकती है जिन्हें उनके प्रयासों से बेहतर सेहत और नए मौके मिले।
2: उनका जीवन इस बात का सबूत है कि जब असाधारण काबिलियत गहरी करुणा और अटूट संकल्प के साथ जुड़ती है तो एक इंसान भी लाखों जिंदगियों में स्थायी बदलाव ला सकता है।
1: यही समाप्त होती है आज की ये विस्तृत गाथा। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग था सतीश बाथम का, लेखक अखिलेश कुमार वर्मा, और आपके साथ थी मैं नूपुर शर्मा
2: और मैं वेणु बालन।
1: आज दीजिए अनुमति और 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। ये प्रसारण आप तक पहुंचा रेडियो आजाद हिंद के माध्यम से। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
4: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपने जाना कि धर्म महासभा के बाद स्वामी जी का तूफानी दौरा चल रहा था। कई शहरों में व्याख्यान देकर और लोगों पर अपना प्रभाव जमाकर वे अमेरिका के उत्तर की ओर डिट्रॉयट नगर में आए। इरी झील के तट पर शिकागो के उत्तर में स्थित डिट्रॉयट नगर अब अमेरिका तथा विश्व का एक बड़ा औद्योगिक महानगर बन चुका है। आजकल वह मोटर गाड़ी बनाने का प्रसिद्ध केंद्र है। स्वामी जी जब वहाँ गए थे तब मोटर नहीं बनते थे, पर अन्य अनेक उद्योग वहाँ स्थापित थे।
1: जैसा दूसरे नगरों का हाल था, वैसे ही वहाँ भी प्राचीन और नवीन विचारों का घात प्रतिघात चल रहा था। डिट्रॉयट में स्वामी जी के दिन विशेष रूप से स्मरणीय हैं, क्योंकि वहाँ भी उनके अनेकों मित्र तथा विरोधी पैदा हो गए थे, पर अंततः विजय टीका उन्हीं के माथे पर सुशोभित हुआ।
0: महासभा के दिनों में अनेक विरोधी उनके विरुद्ध ज्यादा खुल करके बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें महासभा की मर्यादा और औपचारिकता का ध्यान रखना पड़ता था। वे कहते थे,
2: जब तक स्वामी विवेकानंद महासभा में थे तब तक हमारे अतिथि थे, परंतु अब तो महासभा समाप्त हो गई है, अतः अब उनके तथा उनके मतों के विरुद्ध उत्साह पूर्वक आक्रमण चलाना हमारा कर्तव्य है।
0: डिट्रॉयट में विरोधियों का आक्रमण सुनियोजित ढंग से शुरू हुआ, पर स्वामी जी इन विरोधों के सामने सिर ऊंचा करके खड़े हो गए। उनका संकल्प और दृढ़ हो गया।
1: 13 फरवरी 1894 को जब स्वामी जी डिट्रॉयट स्टेशन पर उतरे, वहां बर्फानी तूफान चल रहा था। मित्रों ने उनका प्रेम पूर्वक स्वागत किया। डिट्रॉयट के समाज में सुसम्मानित, सुशिक्षित, कुलीन तथा मिशिगन राज्य के भूतपूर्व गवर्नर की पत्नी श्रीमती जॉन जे वागले उन्हें अपने घर ले गई। धर्म महासभा के दौरान स्वामी जी इनसे परिचित हुए थे। दूसरे ही दिन श्रीमती वागले ने स्वामी जी के सम्मान में एक भव्य प्रीति भोज का आयोजन किया, जिसमें नगर के सभी प्रतिष्ठित लोग उपस्थित हुए। उनमें शहर के मेयर, वकील, व्यापारी, प्राध्यापक, विभिन्न संप्रदायों के पादरी आदि समाज के शीर्ष स्थानीय लोग थे। परंतु उस भव्य सभा में एक बेसुरी आवाज सुनाई पड़ी। दूसरे दिन अखबार में छपा,
3: अत्यंत लज्जा के साथ कहना पड़ता है कि लोगों के सम्मुख स्वामी जी ने एक शब्द भी उच्चारण करने के पूर्व ही जिस घर में स्वामी जी निमंत्रित होकर आए थे उसी में बैठकर एक निर्लज्ज महिला स्वामी जी के सम्मुख ही उन पर आक्रमण करते हुए निष्ठिरता पूर्वक उनकी निंदा करने लगी।
0: स्वामी जी ने साहस पूर्वक सभी प्रश्नों का जवाब देकर के इस आक्रमण का सामना किया और उन्हें आभास हो गया कि अब उन्हें इसी प्रकार के आक्रमणों का सामना करना पड़ेगा। कई लोग पादरियों के डर से उनसे मिलते तक नहीं थे, पर वागले परिवार के रुतबे के कारण विरोधी बहुत ज्यादा हंगामा नहीं मचा सके। श्रीमती वागले ने उन्हें अपनी छत्र छाया में संभाल कर रखा था। स्वामी जी ने उनके बारे में कहा था,
4: श्रीमती वागले अनेक गुणों से संपन्न थी। वे विविध विद्वत सभाओं की सदस्य थी, अनेक धर्म शिक्षालयों की संचालिका थी, बहुत से सेवा संस्थान उनके दान से चलते थे, और जब उनके पति गवर्नर थे तब वे अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के लिए विख्यात हो गई थी। शिकागो विश्व मेले की महिला व्यवस्थिकाओं में से वे एक थी और इसी से उनके साथ मेरा परिचय हुआ था। उन्होंने बहुत भ्रमण किया था और फलस्वरूप उनकी मनोवृत्ति अत्यंत उदार हो गई थी। 1894 ईस्वी में संभवतः उनकी आयु 61 वर्ष की हो गई थी।
1: स्वामी जी के आगमन के पूर्व ही डिट्रॉयट फ्री प्रेस नामक समाचार पत्र में प्रकाशित घोषणा में लिखा था,
3: विश्व मेले में सर्वाधिक लोकप्रिय हिंदू प्रतिनिधियों में एक थे स्वामी विवेकानंद। पहले वे एक उच्च वर्ग के ब्राह्मण थे, परंतु सन्यासी संघ में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने अपना ये पद त्याग दिया, क्योंकि सन्यासियों के लिए ये पहला नियम है कि अहंकार से मुक्त होने के लिए उन्हें अपने ब्राह्मणोचित विशेष अधिकार आदि छोड़ने होंगे। महासभा में बिना किसी नोट की सहायता से विशुद्ध अंग्रेजी भाषा में बोलकर उन्होंने अपने श्रेष्ठतम वक्ताओं में से अन्यतम प्रमाणित किया। उनका उच्चारण इतना मधुर होता था कि अनेक श्रोताओं के मतानुसार यदि उनका अर्थ नहीं भी समझ में आए तो भी संगीत के रूप में उनका रस स्वादन किया जा सकता है। महासभा के पश्चात उन्होंने अनेक नगरों तथा महानगरों में विराट जनसभाओं को संबोधित किया है और उनकी आकर्षक शक्ति तथा किसी भी विषय को प्राणवत एवं आलोकित कर देने की पद्धति की सभी श्रोता एक मत से प्रशंसा करते हैं। महान समस्याओं पर उनके विचार उन्हीं के समान पृथ्वी के दूसरे गोलार्ध से आने के कारण स्वाभाविक रूप से ही अमेरिका वासियों की प्रेरणा तथा नवलोक प्रदान करते हैं। जब श्याम वर्ण के काले बालों वाले भव्य पुरुष अपने गाढ़े पीले रंग की पोशाक में खड़े होते हैं और अमरीकी वासियों की भाषा में ही विशुद्ध स्पष्ट तथा धारा प्रवाह बोलते हुए अपनी बात रखते हैं तो श्रोतागण आनंद पूर्ण विस्मय में खो जाते हैं।
0: स्वामी जी के आगमन के दूसरे ही दिन उसी पत्रकार ने स्वामी जी के पास आकर के पूछा,
3: आपके यहाँ आने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आप हमारे धर्म और हमारे धर्म में क्या फर्क या समानता देखते हैं, जरा समझाइए।
0: स्वामी जी ने हंसकर कहा कि उनका उद्देश्य है
4: एक ऐसी मानव जाति को गढ़ना जिसमें पार्थिव शक्ति के साथ ही आध्यात्मिक शक्ति का भी सम्मिश्रण होगा, जिनके जीवन में सिंह से पराक्रम के साथ मेष सुलभ निरीहता का सम्मिलन होगा और जो प्राच्य तथा पाश्चात्य के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। संभव है कि मेरा मार्ग मेरे पाश्चात्य पड़ोसी के लिए अनुकूल न हो। हमारे प्रयास के बिना ही हिंदू धर्म के अनेक तत्व दूर दूर तक फैल रहे हैं और इनकी अभिव्यक्ति क्रिश्चियन साइंस थियोसोफी तथा एडविन अर्नोल्ड के लाइट ऑफ एशिया में दिख पड़ती है। ईसाई धर्म सीधा हिंदू धर्म से ही उत्पन्न हुआ है। कैथोलिक मत भी अपने सभी कर्मकांड जैसे पाप स्वीकार का कक्ष संतों में श्रद्धा आदि हमसे ही प्राप्त करता है।
0: धर्मांतरण का प्रसंग उठने पर स्वामी जी ने अशोक के शिलालेखों में से पढ़कर के सुनाया कि सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा प्रदर्शन करनी चाहिए।
1: स्वामी जी डिट्रॉइट में 13 फरवरी से 23 फरवरी और दूसरी बार 9 से 30 मार्च तक रहे। उन दिनों उनके कुल 8 व्याख्यान हुए थे। इनके अतिरिक्त वे लगभग प्रतिदिन घरों में आयोजित गोष्ठियों में भी भाषण देते थे। डिट्रॉइट में उनके साथ एक भक्त महिला भगनी क्रिस्टीन से परिचय हुआ, जिन्होंने बाद में स्वामी जी से दीक्षा ली थी। वे उन दिनों प्रतिदिन स्वामी जी के व्याख्यान सुना करती थी। उन्होंने लिखा था,
5: उनके रहस्यमय व्यक्तित्व से जो दैवीय शक्ति प्रवाहित होती इतनी प्रबल थी कि उनके संपर्क में आने वाले संतुष्ट हो जाते थे। वो मानो बिल्कुल अभिभूत कर डालती थी।
0: डिट्रॉइट के एक विद्यालय में जर्मन भाषा की शिक्षिका मिस मार्ग राइट्स को कहती हैं कि स्वामी जी का एक ही व्याख्यान सुनने के बाद जीवन में पहली बार मिस कुक के मन में वक्ता को धन्यवाद देने की इच्छा हुई। स्वामी जी थोड़ी देर उनका हाथ पकड़े रहे। उस समय की अनुभूति के बारे में मिस कुक ने कहा,
6: उनकी महानता तथा पवित्रता के बारे में मेरे मन में ऐसी छाप पड़ी कि 3 दिनों तक मैं अपने वो हाथ धोने की कल्पना तक नहीं कर पाई थी। स्वामी जी की इस अदम्य शक्ति के प्रभाव से अगर महानगर के उनके शत्रु तथा मित्रों में भयानक तूफान उत्पन्न होता है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। इन व्याख्यानों को सुनकर अनुभव करना और फिर भी पहले के समान रह जाना क्या संभव था? श्रोताओं की समस्त धारणाएं बदल जाती थी। आध्यात्मिकता का बीज पौधा बनकर जीवन भर तब तक विकसित होता रहता जब तक कि फलदायी नहीं हो जाता।
1: डिट्रॉइट में स्वामी जी का पहला व्याख्यान हुआ 14 फरवरी को यूनिटेरियन चर्च में। श्रीमती फंकी ने लिखा है,
7: अब भी वो दृश्य मेरी आंखों के सामने है। एक राजा के समान उनकी भव्य प्राणवंत ओजस्वनी और शक्तिशाली आकृति किस प्रकार सभा मंच जाकर आरूढ़ हुई। और जो ही उनका प्रथम शब्द उच्चरित हुआ, वो संगीतमय स्वर जो कभी वीणा के समान मृदु तो कभी गंभीर झनकारमय और सुदूर प्रसारी था, त्यों ही सब कुछ निस्तब्ध हो गया। चारों ओर ऐसी शांति व्याप गई जिसका स्पष्ट अनुभव किया जा सकता था। सब सांस रोककर सुन रहे थे।
0: उसी व्याख्यान के दौरान वहां के बिशप निंडे ने कई विरूप मंतव्य किए थे, जिसे स्वामी जी ने कहा,
4: नीति के मामले में भारतवासी अन्य सभी जातियों की अपेक्षा अति उच्च है। ऐसे देश में मिशनरियों का जाकर कुछ नए विचार फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हिंदू का धर्म मनुष्य को भद्र, विनयी और भगवान के रचे अन्य सभी जीवों के प्रति सहानुभूतिशील तथा प्रीतिपूर्ण बनाता है। मिशनरियों को चाहिए कि वे उस देश में जाकर वहां के पवित्र जल का पान करें और देखें कि वहां सहस्त्रों महात्माओं का जीवन एक विराट समाज पर कितना मनोरम प्रभाव डालता है।
0: बिशप निंडे एक अत्यंत प्रतिभाशाली धर्म प्रचारक थे। वे कहा करते थे कि पूर्वी देशों में जो भी सुधार हुआ है वह ईसाइयों की वजह से हुआ है, उनकी अपनी चेतना से नहीं। स्वामी जी ने कहा,
4: बिशप ने यदि प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा तो वे जानते होंगे कि यह बात मिथ्या है। बुद्ध, कन्फ्यूशियस तथा अन्य नैतिक सुधारकों के मूलभूत आचार व मत ईसा के आगमन के काफी पूर्व से ही वहां सुविदित थे। युगों पूर्व वहां विश्व बंधुत्व तथा मानव का दिव्यत्व प्रचारित हुआ था। यदि बिशप निंडे एक सच्चे मिशनरी के रूप में प्राच्य देशों में जाना चाहते हैं तो शांति और प्रेम के आनंदमय संदेश का ठीक ठाक प्रचार करने के लिए मानव का दिव्यत्व विषयक मुख्य पाठ उन्हें पहले सीख लेना होगा।
1: उन दिनों विदेशी समाज में और भी एक बड़ा भ्रम फैला हुआ था कि हिंदू योगीगण विविध प्रकार के अलौकिक और चमत्कारिक घटनाएं दिखा सकते हैं। हिंदू धर्म को उन दिनों एक वास्तविक जीवन दर्शन नहीं बल्कि चमत्कारों का एक भंडार माना जाता था, और उनकी दृष्टि में सच्चा तो एकमात्र ईसाई धर्म ही था। स्वामी जी को बड़ी ही स्पष्ट भाषा में इस मनोभाव का खंडन करना पड़ा, और बारंबार अनुरोध किए जाने पर भी उन्होंने अपने मत के प्रचार हेतु चमत्कार का सहारा नहीं लिया।
0: इस तरह वाद प्रतिवाद की सहायता से डिट्रॉयट का वातावरण काफी कुछ स्वच्छ और स्वामी जी के अनुकूल हुआ। इसके बाद 17 फरवरी को जब उन्होंने यूनिटेरियन चर्च में मनुष्य का दिव्यत्व विषय पर भाषण दिया तो अनेक समाचार पत्रों को उनके मतवाद को दबा रखने की अथवा उनके विरोध में कुछ लिखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। इस व्याख्यान का विवरण देते हुए 18 तारीख को फ्री प्रेस में लिखा गया,
8: मौसम खराब होने के बावजूद हमारे पूर्वी बंधु यही संबोधन उन्हें पसंद है कि आगमन के आधा घंटा पूर्व ही दरवाजे तक लोगों से भर गया था। उस श्रोताओं में सभी पेशों तथा सभी श्रेणियों के लोग उपस्थित थे। उनमें थे वकील, जज, धर्म प्रचारक, व्यवसायी और महिलाओं का तो कहना ही क्या, क्योंकि ये लोग बारंबार अपने व्याख्यानों में उपस्थित रहकर तथा अत्यंत मनोयोग पूर्ण उन्हें सुनकर ये जता रहे थी कि अवशेष अतिथियों के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करने को वे अति उत्सुक है। उनका घरेलू गोष्ठियों में ही उतना ही आकर्षण है जितना कि व्याख्यान के मंच पर। पिछली रात का भाषण पहले के भाषणों के समान उतना वर्णात्मक नहीं था। लगभग 2 घंटे तक विवेकानंद मानवीय तथा दैवी तत्वों का एक दार्शनिक ताना बाना बुनते रहे, और वो इतना तर्कसंगत था कि उन्होंने विज्ञान को भी समान ज्ञान जैसा सहज बोध और रंगीन कर डाला था, जितना कि उनके देशवासियों के हाथ का बना हुआ रंग बिरंगा वस्त्र होता है। वे प्राच्य की लुभावनी सुगंध से भी ओतप्रोत था। वो सावला व्यक्ति कविताओं का, उदाहरणों का वैसा ही प्रयोग करते हैं जैसे कि एक चित्रकार रंगों का, और रंग वही भरे जाते हैं जहाँ वे उपयुक्त। इसका परिणाम विचित्र परंतु अति आकर्षण होता है।
3: तीव्र गति से निस्तृत होने वाले तार्किक निष्कर्ष मनोरंजन से और उस कुशल वक्ता को अपने परिश्रम का फल बीच बीच में उत्साहपूर्वक करतल ध्वनि के रूप में प्राप्त हुआ।
0: शनिवार का अंतिम व्याख्यान मानव का दिव्यत्व के बारे में अगले रविवार को कुछ बोलने का मौका न पाकर के विपक्षी पादरी पहले के दो व्याख्यानों का ब्योरा देकर के काफी हंगामा खड़ा कर दिया था। इसके प्रतिवाद स्वरूप किसी ने जस्टिसिया के छद्म नाम से 13 फरवरी को फ्री प्रेस में समझाने का प्रयास करते हुए लिखा,
9: तथाकथित चिन्ह सांप्रदायिकता, संकीर्णता, अंधविश्वास तथा कट्टरता के द्वारा हमारा धर्म अनवत होता है और जिस असत्यता, निष्ठुरता, परधर्म, असहिष्णुता तथा चरम स्वार्थपरता ने हमारे सामाजिक तथा व्यवसायिक जीवन को छा लिया है, केवल उन्हीं की उन्होंने निंदा की है। इस नगर के प्रायः हर डाक में उन्हें अनेक अपमानजनक पात्र मिला है। हमारे कानूनों तथा रीति नीतियों से अपरिचित होने के कारण उनके व्याख्यानों के आयोजन आदि के मामले में उन्हें ठगा गया है और जितना भी हो सका उनका व्यवसायिक लाभ उठाया गया है। हमारे अनेक कट्टर चर्चों की वेदी से उनके विरुद्ध अत्यंत असभ्य भाषा में प्रचार किया गया है और ये सब करने वाले वे पादरी लोग थे जिनके पास उनके बारे में जानने का समाचार पत्रों के अधूरे तथा भ्रामक विवरणों के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं था। ऐसे लोग उनके मुख की बातें सुने बिना उनकी आलोचना करने का साहस भी भला कैसे कर पाते हैं? यदि स्वयं आलोचना से बचना चाहते हो तो दूसरों की निंदा मत करो। मेरा मत है कि हमें और भी कानन चाहिए, कम नहीं, ताकि हम जान सके कि दूसरे लोग हमें किस दृष्टि से देखता है।
1: समाचार पत्रों के माध्यम से ये वाद विवाद पूरे फरवरी के महीने में चला था, जिससे ये प्रमाणित हुआ कि एक ओर जैसे उन्होंने नीली नाक वाले कठोर खोल वाले तथा नरम खोल वाले कट्टर ईसाइयों को नाराज कर दिया था, दूसरी ओर उनके अनेक मित्र भी आकर उनसे जुड़ गए थे। बहुत से लोग उनसे मिलने आते थे, चाय या भोज में आमंत्रित करते थे। डिट्रॉइट जर्नल में छपा था,
3: वे स्वीकार करते हैं कि भारत की जनता अत्यंत निर्धन, अति अशिक्षित और ऐसे अनेक संप्रदायों में विभक्त है जिसकी उपासना प्रणाली में निम्न स्तरीय मूर्ति पूजा से लेकर चरम उदार तथा व्यापक दिव्य धारणाओं पर आधारित विश्व बंधुत्व तथा एकेश्वरवाद की धारणा विद्यमान है। उनका उद्देश्य धर्मांतरित करना या अपना मतानुगामी बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसे महाविद्यालय के लिए अर्थ संग्रह करना है जिसमें शिक्षित होकर शिक्षक गण आम जनता के बीच जाकर उनसे प्रचलित अनेक दोषों का सुधार कर सके। वो कहते हैं कि भारत में पुरोहितों का चरम प्रावधान है और पुरोहित ही सत्य के विकृत कर अज्ञानता को बनाए रखते हैं। उन्हें मूर्ति पूजा में भी अच्छाई दिख पड़ती है। वे सरल भाव में स्वीकार करते हैं कि पादरियों के अधिकार से हम पाश्चात्य लोगों की प्रगति भी अवरुद्ध है। स्वामी जी का इस देश में दो उल्लेखनीय वस्तुओं पर ध्यान गया है। प्रथमतः सामाजिक मर्यादा तथा बौद्धिक उत्कर्ष के क्षेत्र में हमारी नारियों का प्रभाव और द्वितीय निर्धनों के लिए हमारी दान व्यवस्था तथा आचरण केवल इतना ही नहीं, हमारी परिश्रम बचाने वाली मशीनों की ओर भी उनका ध्यान गया है। परंतु हमारी भौतिक प्रगति पर वे बिल्कुल भी मुग्ध नहीं है, क्योंकि ये मानव जीवन को बेहतर नहीं बना सकता है।
1: डिट्रॉइट में तीन व्याख्यान देकर ही स्वामी जी का वहां से विदा लेने का विचार था, परंतु मित्रों के अनुरोध पर 20 फरवरी को उन्हें ईश्वर प्रेम विषय पर व्याख्यान देना पड़ा। इस सभा में श्रोताओं की संख्या सर्वाधिक थी। यहां उन्होंने कहा था,
4: प्रेम केवल देता है, वो कभी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता। एक शासक अथवा पिता के रूप में ईश्वर का चिंतन किया जा सकता है, परंतु उसमें भय का भाव भी रहता है। भारत में ईश्वर का स्नेहमयी माँ के रूप में चिंतन किया जाता है।
0: 21 फरवरी वे यात्रा के लिए प्रस्तुत रहने के बाद भी न जा सके। अंततः 23 फरवरी को वे शिकागो के लिए रवाना हुए।
1: स्वामी जी के डिट्रॉइट छोड़कर चले जाने पर भी डिट्रॉइट स्वामी जी को छोड़ नहीं पाया। उन्होंने अपने अल्प प्रवास के दिनों में ही वहाँ के कट्टरवादी समाज में तूफान ला दिया था। उनमें से किसी ने सीधे तो किसी ने घुमा फिरा कर आक्रमण किया था और कोई कोई तो गाली गलौज पर उतर आए थे। मिशनरियों के लिए स्वामी जी उस समय परम त्याज्य एक भयंकर प्राणी के समान हो गए थे। ये सब देखकर स्वामी जी ने लिखा था,
4: आजकल यहाँ के कट्टरपंथी आत्मरक्षा के उपाय खोज रहे हैं और वे मुझे यम जैसा समझते हैं और कहते हैं, बाप रे क्या भयंकर प्राणी है, हजारों हजार नर नारी से मानते हैं, ये कट्टरता को निर्मूल ही करके छोड़ेगा।
0: स्वामी जी के डिट्रॉइट से जाते ही 28 फरवरी से 4 मार्च तक उस नगर में छात्र स्वयंसेवक मिशनरी आंदोलन शुरू हुआ। शायद यह शिकागो धर्म महासभा के प्रतिवाद के रूप में बुलाया गया था, परंतु यह स्वामी विवेकानंद विरोधी था। यह बात क्रिश्चियन एडवोकेट में लिखित संपादकीय से स्पष्ट हो जाती है।
9: यह सम्मेलन विवेकानंद और उनके व्याख्यानों का ही प्रतिवाद था। विवेकानंद ने बड़े ही रोचक तर्क का जाल फैलाया था और जो वीर अधर्म के विरुद्ध खड़े होकर अब तक युद्ध करने वाले रहे हैं, उनमें सुदृढ़ विश्वास तथा सजीव अनुभवों के सम्मुख ये प्रतिवाद कोहरे के समान उड़ गए।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह। ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, सभा समापन का समय हो चला है, लेकिन आपसे हम विदा लें उसके पहले कल सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको परिचित करवा दें। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ। अक्षय निधि का प्रसारण होगा 7:10 पर। 7:20 पर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। वतन का राग कार्यक्रम में कल सुबह 8 बजे हम बात करेंगे शहीद बूटा सिंह की। सुबह 8:30 बच्चों के साथ शामिल होइएगा बाल सभा में। कल आप सुनेंगे कान्हा की बाल लीला पर केंद्रित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे प्रसारित होगा। 9:30 हमारे विशेष कार्यक्रम में सुनिएगा मार्च शैली में नाटक शहीद भगत सिंह का दूसरा भाग देश के संस्थान। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे आप सुन सकते हैं। कल का ये कार्यक्रम ADA पर केंद्रित होगा। याद करो कुर्बानी कार्यक्रम में हम कल बात करेंगे वासुदेव बलवंत सिंह गोगटे की। प्रसारण का समय सुबह 10:30। 11 बजे नगर की सामाजिक साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा। और सुबह 11:30 सुनिए धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद की 41वीं कड़ी। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय कल सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हमारी आज की सांध्यकालीन प्रसारण सभा अब संपन्न होती है। कल सुबह ठीक 7 बजे आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभरात्रि, जय हिंद। सभा का समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम से।